मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 7वीं तिथि, तदनुसार 28 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 48 सेकंड हुए हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। सुबह का आगमन सूर्योदय के साथ हो चुका है। सुबह की निर्मल शीतल वायु शरीर में नव ऊर्जा तरंगों का संचार भर रही है। मन नव संभावनाओं का अनूठा प्रवाह लिए लक्ष्य की ओर बढ़ने को तत्पर है। प्रातः की अनूठी आभा देख मन प्रसन्न हो रहा है और नव चेतना के साथ नए दिन की शुरुआत के लिए तैयार होने का संदेश दे रहा है। हम भी आ चुके हैं स्टूडियो लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम। नमस्ते लखनऊ, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमारे श्रोता 747 किलोहर्ट्ज़ पर अपने रेडियो सेट को ऑन कर चुके हैं और उन्हें इंतजार है देश दुनिया की खबरों को जानने का। तो चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, सुन लेते हैं समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर था उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि

0: सारे सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम ने और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुई संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। 747 किलो हर्ट्स के अलावा आप आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। समय है कृषि चर्चा कार्यक्रम का। आज की कृषि चर्चा में आइए सुनते हैं धान रोपाई में आवश्यक सावधानियां विषय पर डॉक्टर चंद्रमणि त्रिपाठी से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां खरीफ में धान उत्पादन की योजना है तो धान उत्पादन और खास करके धान की रोपाई में कौन कौन सी आवश्यक सावधानियां हैं, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोपाल ग्राम गोंडा से वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रमणि त्रिपाठी साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, धान उत्पादन और खास करके धान की रोपाई में कौन कौन सी खास बातें हैं जिसको किसान भाई बहन ध्यान में रखें?
3: सर्वप्रथम किसान भाइयों को हमारा राम राम। धान की रोपाई में मुख्य रूप से बीज के चयन से खेत की तैयारी से लेकर के और कटाई मड़ाई और मार्केटिंग तक बहुत सी ऐसी सावधानियां हैं जिसको किसानों भाइयों को ध्यान में रखना चाहिए। सर्वप्रथम हम प्रजाति की बात करेंगे कि कौन सी प्रजातियों का हमको चयन करना चाहिए, सिंचित अवस्था में है या असिंचित अवस्था में है, देर से पकने वाली है मध्यम, इसका चयन हमको करना चाहिए। जैसे शीघ्र और सिंचित पकने वाली जो प्रजातियां हैं 100 से 110 दिन में जो है उसमें पूसा बासमती है 2511 है, नरेंद्र 80 है, सुगंधा 5 है, रत्ना गोविंद, इस तरह की प्रजातियाँ हैं। मध्यम अवधि में 120 से 140 दिन की जो प्रजातियाँ हैं उसमें पंत धान 4 है, 10 है, 12 है, IR 50 है, देर से पकने वाली प्रजातियां और कुछ समय तक बारिश वहां पे रुकती है, खेत में पानी भरा रहता है, ऐसे क्षेत्रों में जो है नरेंद्र धान 2026, 2064, 2065, नरेंद्र 359, सांभा मसूरी इत्यादि का प्रचलन हमको करना चाहिए। दूसरा, जल भराव जहां पे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है तो वहां पे हमको चकिया 61 है, मधुकर है, जलमग्न है, नरेंद्र की जो है 2064 प्रजातियां हैं, इसको हमको चयन करना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, ये तो रही प्रजातियों की बात, बहुत जगह किसान भाई बहन नर्सरी डाल चुके हैं तो नर्सरी की देखभाल में कौन सी आवश्यक सावधानियां हैं?
3: अब नर्सरी यदि किसान भाइयों ने डाल रखा है तो उसमें

0: कुछ पीलापन या दिखाई देता है या सफेद उसमें से पत्तियां कुछ दिखाई देती हैं, तो उसके लिए हमको कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जिसके कारण ये समस्या आती है। तो
1: जैसे
0: जैसे उसमें सफेद होता है, लोहा की कमी हो गई या जिंक की कमी हो गई, तो किसान भाइयों को इसमें 10-11 दिन की अवस्था पे नर्सरी जब हमारी हो जाए तो उसमें हमको जिंक और फेरस सल्फेट का जो है
1: पानी
0: छिड़काव
1: छिड़काव।
0: का पर्णीय छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे ये समस्या हमारे पास जो है खत्म हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, जिस खेत में धान की रोपाई करनी है उसकी तैयारी भी महत्वपूर्ण है।
0: जी, तैयारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। खेत की अच्छी तरह से जुताई हमको कर लेना चाहिए, खेत अच्छी तरह से तैयार हो जाए, खरपतवार भी रीत हो जाए, तब हमको रोपाई करना चाहिए। और दूसरा एक पद्धति और रहता है कि हम डायरेक्ट सीडेड राइट्स, कि मैंने धान की सीधी बुआई भी हम बिना पलेवा लगाए भी खेत में कर सकते हैं। और एक और पद्धति आती है कि बीज को हम अंकुरित कर लें और खेत अच्छी तरह से तैयार कर लें, हम उसमें बीज को डाल दें,
1: यानी ड्रम सीडर के
0: ड्रम
1: माध्यम से।
0: सीडर के माध्यम से ही हम उसकी बुआई उस खेत में कर सकते हैं।
1: लेकिन आज हम लोग धान रोपाई में आवश्यक सावधानियों की चर्चा कर रहे हैं, तो पलेवा करने में कौन कौन सी बारीकी करनी है?
0: अब पलेवा पानी समुचित मात्रा में रहना चाहिए खेत में, और अच्छी तरह से खेत को जुताई कर दें, जो भी चारा खरपतवार है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए, और पानी हमारा जो स्थिर हो जाए तो उस अवस्था में हमको बीज डालना चाहिए, कि जिससे हमारा बीज जो है नर्सरी के लिए डाला है जमीन के अंदर न जाने पाए, ऐसा सावधानी बरतना चाहिए।
1: और जैसे नर्सरी से पौध उखाड़ करके रोपाई में,
0: रोपाई करते समय भी खेत में थोड़ा नमी होना चाहिए, प्रॉपर नमी होना चाहिए, और उस अवस्था में हम खेत को उखाड़ें, लगभग 15-20 दिन के बाद जो है नर्सरी तैयार हो जाती है और हम उसको रोपाई के लिए खेत में लगा सकते हैं।
1: जैसे जो धान की नर्सरी है उसको उखाड़ने के बाद रोपाई के पहले क्या पौध जड़ उपचार भी कर सकते हैं?
0: जी, जड़ उपचार उसको करना चाहिए, और यदि हम उसको उपचारित कर लेंगे तो हमारी जो फसल में जो बीज में समस्या आती है वो उससे निजात हो जाएगी। जैसे बायो फर्टिलाइजर है, जेक्टोबैक्टर है या फंजीसाइड बायोस्टिन है,
1: जी
0: इससे हमको जो है उसको सीडलिंग को उपचारित करके फिर खेत में लगाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे धान रोपाई में आवश्यक सावधानियों के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी, 820-88-73-126, 8208-73126, 820-88-73-126।
1: डॉक्टर चंद्रमणि त्रिपाठी साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और धान रोपाई में आवश्यक सावधानियां कौन कौन सी हैं इनके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धान रोपाई में आवश्यक सावधानियां, इस विषय पर अभी हमारे किसान भाई जानकारी प्राप्त कर रहे थे डॉक्टर चंद्रमणि त्रिपाठी से की गई भेंट वार्ता द्वारा। भेंट करता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमें अपने अनुभवों, विचारों और कर्मों का गहराई से विश्लेषण करके ही जीवन के वास्तविक सत्य और अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों की गलतियों पर विचार करने से मन अशांत होता है, लेकिन जब हम अपनी गलतियों पर विचार करते हैं तो आत्म सुधार का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए सुनते हैं आज का सुविचार।
3: अक्सर लोगों को कहते सुना है कि अच्छे से अच्छा काम करने पर भी बुराइयां सामने आती हैं, चाहे समाज सेवा का कार्य हो अथवा बड़ा से बड़ा धार्मिक आयोजन हो, और चाहे जितने निस्वार्थ भाव से कार्य किया जाए फिर भी आलोचनाएं और बुराइयां बाधाएं अवश्य आती हैं, और बहुधा अच्छा कार्य करने वाले निराश हो जाते हैं। वे ये नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। वास्तव में प्रकृति का नियम ही है कि जीवन मंथन के प्रारंभ में विष ही मिलता है। हमारी पौराणिक गाथाओं में समुद्र मंथन का वर्णन आता है। जब असुरों ने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब देवताओं को अमृत पिलाकर अमर बनाने के उद्देश्य से समुद्र मंथन किया गया। मंदराचल पर्वत को मथानी और बासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। साक्षात ईश्वर ने कछुए का अवतार लेकर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। देव और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से सबसे पहले विष बाहर आया, बाद में अमृत। साक्षात ईश्वर के आदेश से किए गए समुद्र मंथन में पहले विष ही निकला। संदेश मिलता है कि मंदराचल रूपी मन को ईश्वर के आधार पर स्थिर करके पास

0: की नाग रूपी प्रेम की डोर से मंथन करोगे तो भी पहले विष ही निकलेगा, और अगर विष को सहलोगे तो बाद में अमृत भी मिलेगा। समुद्र मंथन की तरह जीवन का मंथन भी 16वें वर्ष में प्रारंभ होता है, जिसमें पहले विषय रूपी विष आते हैं। चाहे कोई कितना ही महान क्यों न हो, उसके जीवन में विविध कष्टों के रूप में विष आते हैं। महापुरुष हंसते हंसते विष का पान करते हैं, अर्थात कष्टों को सहन करते हैं, और बाद में उन्हें अमृत के रूप में ज्ञान का अमृत मिल जाता है। जीवन में हर अच्छे कार्य में जो बुराइयां मिलती हैं वे ही विष हैं, परंतु विष को कैसे सहन किया जाए इसका उत्तर भी समुद्र मंथन की कथा में स्पष्ट किया गया है। जो ही समुद्र से विष बाहर निकला, देवता घबरा गए। विष की दुर्गंध उनसे सहन न हुई तो प्रभु ने विषपान हेतु शंकर जी को बुलाया। जिसके सिर पर ज्ञान की गंगा होती है वो विष को पचा सकता है। इस संसार में निंदा और कर्कश वाणी का विष सभी को सताता है, परंतु ज्ञानियों को नहीं। जब शिव जी से विष पीने के लिए कहा गया तब वे मान गए, क्योंकि जो दूसरों को सुखी करने के लिए दुख सहता है वही शिव है, तथा जो दूसरों को दुख देता है वो जीव है। अतः शिव ने विष का पान किया, परंतु एक महानतम सूत्र दे दिया कि विष को गले में धारण करना है, पेट में नहीं ले जाना है और बाहर भी नहीं लाना है। आशय स्पष्ट है कि कर्कश वाणी एवं निंदा आदि का जो विष है उसका स्थान गला होना चाहिए। अगर वो पेट में गया तो मृत्यु हो जाएगी, और बाहर निकला तो संघर्ष होगा। समुद्र मंथन का पौराणिक वर्णन अनेक सूत्रों का प्रतिपादन करता है, जो जीवन के लिए प्रेरणादायी ही नहीं मार्गदर्शक सिद्धांत भी है। समुद्र मंथन में दूसरे नंबर पर गौ माता कामधेनु निकली। कामधेनु को ऋषि मुनियों और तपस्वियों को दे दिया गया, अर्थात जीवन में जब भी प्रथम संपत्ति मिले उसी पर उपकार में लगाओ। तीसरे नंबर पर उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला, जो कीर्ति का प्रतीक है। सद्गुणी को कीर्ति से बचना चाहिए, क्योंकि इससे अहंकार आता है, अतः घोड़ा राक्षसों को दे दिया गया। चौथे नंबर पर निकला ऐरावत हाथी। इसकी आंखें छोटी होती हैं, जो सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है, अतः ऐरावत हाथी देवताओं को दे दिया गया। पांचवें नंबर पर पारिजात का वृक्ष और अप्सरा निकली, जिन्हें सद्गुणों के प्रतीक देवों को दिया गया। छठे नंबर पर लक्ष्मी जी निकली, वे सर्वगुण संपन्न नारायण का वर्णन करती हैं। लक्ष्मी जी ऋषियों के क्रोधी स्वभाव, देवों के कामी स्वभाव, परशुराम के निष्ठल स्वभाव, मार्कंडेय ऋषि के अनाशक्त भाव तथा शिव के अमंगल वेश के कारण उनकी तरफ नहीं जाती, अर्थात जीवन मंथन में लक्ष्मी उन्हीं के पास आती है जो धीर वीर गंभीर सदाचारी होते हैं। मंथन की क्रिया में सातवें नंबर पर मदिरा आती है, वो राक्षसों को तथा अंत में अमृत कलश लेकर धन्वंतरी जी प्रकट होते हैं। समुद्र मंथन की कथा में विष से अमृत प्राप्त होने का क्रम अत्यंत सांकेतिक है। लक्ष्मी अर्थात धन प्राप्त करना है तो कर्म करते ही कुबेर का खजाना नहीं मिलेगा, कार्य प्रारंभ करते ही विष रूपी कष्ट प्रारंभ होंगे। विष को धारण करने के बाद छठवें नंबर पर लक्ष्मी जी आएंगी, और लक्ष्मी जी भी सीधे आपकी तिजोरी में तब तक नहीं जाएंगी जब तक आपका तिजोरी रूपी मन साफ स्वच्छ और परोपकारी नहीं है। रातों रात अमीर बनने वाले लोग भले ही नकली नोट छापकर या डकैती लूट हत्या या नकली माल बेचकर पैसा कमा लें, परंतु वो लक्ष्मी उनके पास टिकने वाली नहीं है। अतः अमृत मंथन के आध्यात्मिक चिंतन से धैर्य के साथ मेहनत करते हुए ज्ञान का अमृत पाने हेतु अपने जीवन का मंथन करना चाहिए। हमें विश्वास रखना होगा सत्कर्म का मंथन चलता रहे, और एक दिन अमृत अर्थात उद्देश्य लक्ष्य और सफलता की पूर्ति में कोई संदेह नहीं होगा।
1: जीवन मंथन, ये विषय था आज के सुविचार का। संसार में रहते हुए यदि मन प्रभु के चरणों में जुड़ा रहे तो जीवन सरल शांत और सार्थक हो जाता है। आइए मन को प्रभु स्मरण में लगाएं। सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

भक्त और भगवान के बीच प्रेम का जो संबंध होता है अटूट विश्वास और समर्पण का होता है। सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है, जहां भक्त अपने अहंकार को मिटाकर प्रभु की शरण में परम शांति और आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है।

माँ की शरण में सारा जग सुकून पाता है। ममता की छांव है माँ, दुआओं का गांव है माँ। जितना कहें उतना कम है, अनमोल वरदान है माँ।

कभी कभी भक्ति समर्पण बन जाती है, जब भक्त कह उठता है, अब सब कुछ तुम्हारे हवाले है प्रभु। और यही भाव, यही समर्पण ही ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति है, सच्चा प्रेम है।

747 किलोहर्ट्ज पर अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। और अब आइए करते हैं प्रभु श्री राम की भक्ति, सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनेंगे भाग 215 में चित्रकूट में वनवासियों का प्रभु श्री राम के प्रति स्नेह और अयोध्या वासियों की सेवा और सत्कार का प्रसंग।

था। पिता के स्वर्गारोहण का समाचार सुन श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण शोक सागर में डूब जाते हैं। गुरु वशिष्ठ द्वारा बताई गई विधि से ज्येष्ठ पुत्र श्री राम एक बार फिर पिता की क्रिया आदि करके अयोध्या वासियों से वापस नगर लौट जाने का अनुरोध करते हैं। पुरवासियों का दुख गुरु वशिष्ठ भली भांति समझते हैं और श्री राम के निकट वहां दो दिन रहकर शांति प्राप्त करने का परामर्श देते हैं। वन के निवासी कोल, भील, किरात आदि यथा सामर्थ्य अयोध्या वासियों का आदर सत्कार करते हैं। उनसे अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, कंदमूल और फल प्राप्त करके नगर निवासी उन वस्तुओं का मोल चुकाना चाहते हैं, किंतु वनवासी राम की दुहाई देते हुए दाम वापस कर देते हैं। प्रेम सनी वाणी में कहते हैं, साधुजन प्रेम पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। आप साधुजन हैं, अतः हमारे प्रेम का मूल्य चुकाकर उसका तिरस्कार करना आपको शोभा नहीं देता।

0: श्रोताओं नमस्कार।
1: श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के लिए भरत जी के साथ गुरुजन तथा पुरवासियों का एक बड़ा समूह चित्रकूट पहुंचा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे रंजना जोंगलकर और श्रीकांत पारगांवकर। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक सतीश भाटिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे।

0: ये सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। ४४७ किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी लखनऊ से आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। कुछ ही पलों में प्रातः के 6:55 होने वाले हैं, सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्यास्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 35th संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ताविभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणम् आकाशवाण्या क्षेत्रीय भाषासु अपि भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सहयोगस्य पूर्णव्याप्तेः समीक्षां करिष्यतः तथा च परस्परस्य क्षेत्रीयान्तराष्ट्रिय विषयेषु मतानाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। अद्य प्रधानमंत्री श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रीय सभां संबोधयिष्यति। भारतीय प्रवासी सदस्यैः सह संवादमपि विधास्यति। पश्चात् प्रधानमंत्री रोश कैमन इत्यत्र राष्ट्रीय दिवस समारोहे भागं भजिष्यति। मंत्रालयेन उक्तं यत् भारतीय रक्षाबलानां एकेन दलेन सह भारतीय नौसेनायाः द्वाभ्यां नौकाभ्यां सह श्रीमोदी उत्सवे भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमंत्री श्रीमोदी ह्यः सेशेल्स देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां विक्टोरिया नगरं सम्प्राप्तवान्। विमानस्थानके सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन तस्य भव्यं स्वागतं विहितम्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः भारतीय समवाय विशेषान् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार संधेः सीईटीए इत्यस्यान्तर्गतम् उदयोन्मुखावसरान् सुस्थिर व्यापार वृद्धौ परिवर्तयितुं यूके देशस्य समकक्षैः सह सम्पर्कं सुदृढं कर्तुं प्रार्थयत्। लंदन नगरे भारत यूके प्रगति व्यापार पूर्ण सम्मेलने सहभागिनां नेतृत्वावधौ मंत्रिणा इदमुक्तम्। दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्तावर्या सावधानं कृतवती यत् यानि कोचिंग इति प्रशिक्षण केन्द्राणि अनिवार्य सुरक्षा मानदंडानां पालनं न करिष्यन्ति तानि दिल्ल्यां कार्यं कर्तुं नानुमन्यन्ते। एकस्मिन् वीडियो संदेश श्रीमती गुप्ता अवदत् यत् दिल्ली सर्वकारः शीघ्रमेव कठोरं निरीक्षणं बृहत्तरं उत्तरदायित्वं छात्राणां सुरक्षां च सुनिश्चेतुं दृढं विनियामक विधिं प्रावर्तयिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रदेशेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। बिहार छत्तीसगढ़ कर्नाटक कोंकण गोवा ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना विदर्भ लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीपेषु अपि आगामी दिनद्वयोः कृते विभागेन संचेतना प्रसारिता अस्ति। ऋतुविभागेन ख्यापितं यत् श्वः दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ उत्तरप्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरं

0: अङ्गस्य स्थितिं भविष्यति। फीफा विश्वकप क्रीडायां इंग्लैंड देशेन अद्य प्रातः अमेरिका देशस्य न्यूजर्सी क्रीडांगणे स्वस्य ग्रुप एल क्रीडायां पनामा देशं 2-0 इत्यंकैः पराजितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति इति वार्ताः।
1: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 747 किलो हर्ट्ज पर। समय हुआ है सुबह के 7 बजे का और ये समय होता है स्वास्थ्य चर्चा सेगमेंट का। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही पानी की हर एक घूंट शरीर को ऊर्जा और नया जीवन देती है। आज की स्वास्थ्य चर्चा में आइए सुनते हैं जानकारी जीवन का आधार जल विषय पर। जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।
2: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में मैं हूं नीना सोनकर और एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारी जिंदगी का आधार है, यानी जल। पानी न सिर्फ हमारे शरीर के हर अंग के लिए आवश्यक है, बल्कि ये हमारी सेहत को भी संपूर्ण रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी को पीने के सही तरीके क्या हैं और इसके क्या क्या स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं? तो आज विस्तार से हम इसी बात की चर्चा करेंगे। सबसे पहले करते हैं, पानी हमारे शरीर के लिए क्यों है इतना महत्वपूर्ण। हमारा शरीर लगभग 60% पानी से बना होता है और हर अंग हर कोशिका को सुचारू रूप से काम करने के लिए पानी की जरूरत होती है। पानी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, पाचन को बेहतर बनाता है और शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। जब हम पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो हमारे शरीर के सभी अंग अच्छे से काम करते हैं और हम ताजगी से भरे रहते हैं। अब बात करेंगे पाचन तंत्र की। पानी का सबसे बड़ा लाभ यही है कि ये हमारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। अगर आप खाने से पहले या खाने के दौरान थोड़ा सा पानी पीते हैं तो इससे आपका खाना आसानी से पचता है। इसके अलावा गुनगुना पानी पीने से पाचन में सुधार होता है और पेट की समस्याएं जैसे गैस और कब्ज दूर रहती हैं। त्वचा के लिए भी पानी पीना बेहद फायदेमंद है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहे तो पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी त्वचा को अंदर से हाइड्रेट करता है और उसे नमी प्रदान करता है। अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो त्वचा रूखी और बेजान हो सकती है। पानी का नियमित सेवन त्वचा में चमक बनाए रखता है और उसे स्वस्थ बनाता है। वजन घटाने के लिए भी पानी का सेवन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो पानी आपका सबसे अच्छा साथी हो सकता है। खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी पीने से भूख कम हो जाती है और हम अतिरिक्त कैलोरी से बच सकते हैं। इसके अलावा पानी शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, जिससे फैट बर्निंग की प्रक्रिया तेज होती है। अब बात करेंगे इम्यूनिटी की। पानी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। पानी का सेवन शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बेहतर होती है और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। अगर आपको कभी गले में खराश या सर्दी जुकाम हो रहा हो तो गर्म पानी पीने से गले को आराम मिलता है और हमारा सिस्टम भी मजबूत बनता है। सिरदर्द से बचने में भी पानी बहुत मददगार होता है। अक्सर सिरदर्द की समस्या पानी की कमी के कारण भी हो सकती है। अगर आप दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो सिरदर्द हो सकता है और शरीर में थकान भी महसूस हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो और आप ताजगी महसूस करें। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि पानी पीने के सही तरीके क्या हैं। सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप सुबह उठते ही खाली पेट 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं। इससे शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं और पाचन तंत्र को ऊर्जा मिलती है। दिन भर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पिएं, ताकि शरीर में पानी का संतुलन बना रहे। एक साथ बहुत सारा पानी पीने से बचें, क्योंकि इससे पाचन तंत्र पर दबाव पड़ सकता है।

0: सकता है। इसके अलावा कोशिश करें कि आप बैठकर पानी पिएं, खड़े होकर नहीं। बैठकर पानी पीने से पानी का प्रभाव शरीर पर बेहतर होता है और पाचन तंत्र को भी फायदा मिलता है। पानी को धीरे धीरे घूंट घूंट करके पिएं ताकि शरीर उसे अच्छे से अवशोषित कर सके। और हाँ, बहुत ठंडा पानी पीने से बचें क्योंकि ये पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बजाय गुनगुना या सामान्य तापमान वाला पानी पीना सबसे अच्छा होता है। श्रोताओं, पानी का महत्व तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसे सही तरीके और पर्याप्त मात्रा में पीना ही असली कुंजी है। पानी हमारे शरीर की सेहत के लिए बहुत आवश्यक है और इसके बिना हमारा शरीर अच्छे से काम नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान रखें कि आप रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखें। कल फिर इसी समय किसी नए विषय के साथ हम हाजिर होंगे। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: तो जल ही जीवन का आधार है, ये तो आप जान ही गए होंगे, और स्वच्छ जल ही अच्छे स्वास्थ्य की सच्ची पहचान है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जानकारी दे रही थी जीवन का आधार जल के बारे में नीना सोनकर। और अब आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आज पूर्वाह्न 11 बजे से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रेडियो पर साझा करेंगे मन की बात। मन की बात के प्रसारण के बाद आप सुनेंगे इसका उर्दू अनुवाद। आईसीसी विमेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे आज शाम 6:30 से मैच की समाप्ति तक। मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 9:15 पर सामयिक चर्चा में सुनिए उत्तर प्रदेश में मॉनसून पिछड़ने के कारणों और बारिश के पूर्वानुमान पर लखनऊ मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह से तनवीर फातिमा की बातचीत। सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम में आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश के तहत सुनिएगा खत के लिए शुक्रिया कार्यक्रम। मेजबानी सुरेंद्र राजेश्वरी और शाजिया खान की होगी, पेशकश आसिफ इकबाल की। दिन में 3:15 पर सुनना ना भूलें डॉक्टर अनुज चौबे की संस्कृत वार्ता वाल्मीकि रामायणे ज्योतिष तत्वम। फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का प्रसारण समय होगा दिन में 3:30। आज इस कार्यक्रम में विषय है श्वसन संबंधी विभिन्न विकार, कारण, लक्षण और बचाव। विशेषज्ञ होंगे प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार वर्मा, विभागाध्यक्ष श्वसन रोग विभाग, राम मनोहर लोहिया, लखनऊ। संचालन सुभाष खन्ना का होगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर सुनिएगा पंडित भजन सोपोरी का राग नट भैरव में संतूर वादन। आपकी पसंद के लोकगीत सुनवाए जाएंगे सुबह 10 बजे से, और दोपहर 12 बजे हमारे नन्हे मुन्ने सुनेंगे कार्यक्रम बाल गोपाल। आज इस कार्यक्रम में गौरी शंकर वैश्य की कहानी सुनवाई जाएगी खिलौनन की दुनिया। आज इतवार है में दिन में 1:15 पर सुनना ना भूलें इरफान ह्यूमन की लिखी झलकी यादों की सवारी। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग कीर्ति श्रीवास्तव का, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता होंगे अतिश कुमार श्रीवास्तव। दिन में 1:30 पर अक्षवट कार्यक्रम में डॉक्टर दिविता श्रीवास्तव, होम्योपैथिक फिजिशियन से की गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी बढ़ती उम्र और होम्योपैथी सुरक्षित और सहज उपाय विषय पर। भेंट करता होंगी डॉक्टर अलका चौधरी। खरीफ में तिलहन उत्पादन सुनिए डॉक्टर आनंद कुमार श्रीवास्तव से की गई भेंटवार्ता। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 4 बजे संकल्प कार्यक्रम में सुनना ना भूलें दृष्टिबाधित दिव्यांग बालिकाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और जागरूकता विषय पर संतोष कुमारी गुप्ता प्राचार्य स्पर्श बालिका विद्यालय से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे देवाशीष।

शाम 5:10 पर युवा तरंग कार्यक्रम में हमारे युवा साथी सुनेंगे डॉक्टर अनूप कुमार भारती से की गई भेंटवार्ता युवा और नशे का दलदल। इस विषय पर बातचीत करेंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर अर्बन चौपाल क्रम में ओबी आधारित जानकारी का विषय होगा महानगरों के मानसिक तनाव और मन की तलाश। सुरेश प्रसाद कुशवाहा और साथी के गाए भोजपुरी लोकगीत सुनवाए जाएंगे लोक झंकार कार्यक्रम में शाम 4:30 पर। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की, जिन्हें आप सुन सकेंगे 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी लखनऊ से। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। हाजिर होते हैं श्रोताओं बस कुछ ही पलों में कार्यक्रम विविधा के साथ।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आज की विविधा में। आप सभी को वैशाली का प्यार भरा नमस्कार। कभी सोचा है कि इंसान को सबसे ज्यादा ताकत किस चीज से मिलती है? पैसे से, पद से, शरीर की शक्ति से, या फिर किसी बड़े सहारे से? दोस्तों, असली ताकत मिलती है ज्ञान से, क्योंकि धन छीना जा सकता है, पद बदल सकता है, हमारा शरीर भी कमजोर हो सकता है, लेकिन सही ज्ञान अगर एक बार भीतर उतर जाए तो वो इंसान को अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था, नहि ज्ञानिन सदृशम पवित्र मिहि विद्यते, अर्थात ज्ञान मनुष्य को भीतर से शुद्ध करता है। ये केवल एक श्लोक नहीं है, इस एक पंक्ति में समाया है पूरा ब्रह्मांड, और आज की विविधा में बात इसके भीतर छिपे उस रहस्य की, जो हजारों सालों से इंसान को बदलता आया है, चाहे वो राजा हो, फकीर हो, वैज्ञानिक हो या एक आम इंसान। बात नहीं ज्ञानेन सदृशम की, ये वो ज्ञान है जो हमें समझाता है क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, और मैं वास्तव में कौन हूँ। ये बताता है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में लिखी बात नहीं, बल्कि वो रोशनी है जो मनुष्य के विचार, व्यवहार, निर्णय और जीवन की दिशा बदल देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जब इंसान के भीतर ये समझ आ जाती है, तब उसके जीवन में अंधकार कम होने लगता है। जैसे एक कमरे में वर्षों से अंधेरा हो और कोई एक दीपक जला दे तो अंधेरा अपने आप भाग जाता है, उसी तरह जीवन में सच्चा ज्ञान आते ही भ्रम, डर, लालच, क्रोध और मोह धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जब ज्ञान आता है तो इंसान समझता है कि हर परिस्थिति में धैर्य, विवेक और कर्म सबसे जरूरी है। एलन मस्क ने रॉकेट साइंस खुद पढ़ी जब उनके पास स्पेस एक्स के लिए इंजीनियर्स नहीं थे। एपीजे अब्दुल कलाम मछुआरे के बेटे थे, कोई नेटवर्क नहीं था, कोई पैसा नहीं था, लेकिन ज्ञान था, और वही ज्ञान उन्हें राष्ट्रपति भवन तक ले गया। दोस्तों, धन लूट सकता है, पद जा सकता है, स्वास्थ्य छीन सकता है, लेकिन ज्ञान कोई नहीं छीन सकता।

लेकिन हमारा ज्ञान कोई भी नहीं छीन सकता। आज के समय में मोबाइल खोलते ही हजारों बातें, हर जानकारी हमारे सामने है, हर सवाल का जवाब इंटरनेट पर मिल जाता है, लेकिन क्या हर जानकारी ज्ञान है? नहीं, सूचना का मतलब है कोई बात जान लेना, लेकिन ज्ञान का मतलब है उस बात को समझना और जीवन में सही स्थान पर लागू करना। उदाहरण के लिए, सभी जानते हैं कि समय की कीमत होती है, ये सूचना है, लेकिन जो व्यक्ति सच में समय का सदुपयोग करता है वो ज्ञानवान है। सभी जानते हैं कि क्रोध नुकसान पहुंचाता है, ये सूचना है, लेकिन जो व्यक्ति क्रोध आने पर भी स्वयं को संभाल ले वो ज्ञानवान है। हम सभी जानते हैं कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये सूचना है। जो व्यक्ति अपने व्यवहार में सम्मान दिखाता है वो ज्ञानवान है। यानी ज्ञान वो है जो चरित्र में हमारे व्यवहार में नजर आए।

महाभारत युद्ध भूमि में जब अर्जुन के सामने अपने ही लोग खड़े थे, गुरु पितामह, संबंधी, मित्र, वो धर्म संकट में पड़ गए थे। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि जीवन में केवल भावुकता से निर्णय नहीं लिए जाते, धर्म, कर्तव्य, सत्य और न्याय को समझकर निर्णय लेना पड़ता है, और यही ज्ञान उन्हें कर्तव्य के मार्ग पर लौटाता है। ज्ञान इंसान को सही और गलत में फर्क करना सिखाता है। ज्ञान केवल पढ़ाई का विषय नहीं, जीवन जीने की कला है। सच्चे ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान होती है दोस्तों विनम्रता, जो हमें सिखाता है कि हम हर दिन बेहतर हो सकते हैं। आज के टेक्नोलॉजी युग में जहां साधन और सुविधाएं बढ़ रहे हैं, वहीं तनाव, भ्रम, तुलना, गुस्सा और बेचैनी भी बढ़ रही है। ऐसे में न ही ज्ञानिन सदृशम और भी जरूरी हो जाता है। आज हम इंसान के पास सूचना बहुत है, लेकिन शांति कम है। बोलने के साधन बहुत हैं, पर समझ कहीं कम है। दिखावा बहुत है, आत्मचिंतन कम है। आज आवश्यकता बाहरी ज्ञान की नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान की भी है। हमें ये समझना होगा कि सफलता के साथ संतुलन कैसे रखा जाए, प्रतिस्पर्धा के साथ करुणा कैसे रखी जाए, और आधुनिकता के साथ संस्कार कैसे बचाए जाए। नहीं ज्ञानेन सदृश्यम, ज्ञान सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी ताकत है। और जब मनुष्य ज्ञान के प्रकाश में चलता है, तो उसका जीवन केवल सफल नहीं होता, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। तो दीजिए अनुमति विविधा से वैशाली को। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है, सुनेंगे गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में, कृपया प्रतीक्षा।
1: कहा था अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
2: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
2: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
2: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: वृद्धों का सम्मान करें,

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। मासिक रेडियो कार्यक्रम की श्रृंखला में 135वें एपिसोड का होगा सीधा प्रसारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में 2,478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में प्रदेश बन रहा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ स्वीकार। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा, दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा है हिसाब किताब। और गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई हिस्सों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गौतम बुद्ध नगर में नोएडा प्राधिकरण के नवनिर्मित मुख्य प्रशासनिक भवन समेत 2,478 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में दो बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब बन रहा है। ये निवेश, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति प्रदान करेगा।
1: सेमीकंडक्टर यानी यह आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत का केंद्र बिंदु या क्षेत्र बने और आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नए हब के रूप में इस क्षेत्र को स्थापित करने के लिए जो चीज दुनिया से हम आयात करते हैं वह हमारे यहाँ बने।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत पहले PCB सर्किट आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी जिन्होंने एक ऐसा विजन दिया कि प्रधानमंत्री जी के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को आज उत्तर प्रदेश में जेवर में ले आए,
3: तो अब सेमीकंडक्टर के बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा सेंटर जेवर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि दिल्ली से लखनऊ, वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलेगी। लखनऊ से जेवर तक का सफर 1 घंटा 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम में अपने संबोधन में भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग की इकाइयां लगने से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल नोएडा में UP इंटरनेशनल ट्रेड

0: शो के चौथे संस्करण की कर्टन रेजर सेरेमनी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 96 लाख से अधिक MSME इकाइयां कार्य कर रही हैं, जिनमें 3 करोड़ से अधिक लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना तभी साकार होगी जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकाई मजबूत होगी।
1: कोई भी बड़ा उद्योग का आधार बनता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। बड़ा

0: कहा है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। बड़ा उद्यम तभी सफल हो सकता है जब हमारे पास आधार होगी, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। विकसित भारत की संकल्पना तब पूरी होगी जब खुशहाल किसान भी होगा, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर को भी उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें।
1: कार्यक्रम को प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने भी संबोधित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा आज सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास का प्रतीक बनी है।
2: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नयन का जो आधार है और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रखकर के बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। इस पूरे अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ते हुए इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य आदर्श ये संस्कार समाहित हो सके, इसको ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण महाअभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और XHandle AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कल इस मामले में बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान में दी गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या में राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने यह भी पुष्टि की कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंची। इस अवसर पर राज्यपाल ने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत अयोध्या धाम क्षेत्र में ब्रह्मा कुंड गुरुद्वारे के निकट नवनिर्मित 2 आंगनबाड़ी केंद्रों और स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बच्चों के समुचित शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए प्रारंभिक अवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संतुलित पोषण अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पहुंचकर विकास कार्यों और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत आज से होगी। प्रदेश के सभी जनपदों में बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। कुशीनगर में कल दोपहर एक तेज रफ्तार कार और बाइक में हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। कसिया क्षेत्राधिकारी ने बताया कि यह हादसा अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के हाटा पिपराइच मार्ग पर सोनबरसा पट्टन के पास हुई। गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई हिस्सों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जारी चेतावनी के अनुसार प्रदेश के जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, उन्नाव, लखनऊ, रामपुर, बांदा, संभल, मुरादाबाद, बुलंदशहर और अमरोहा समेत आसपास के जनपदों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार।

चार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। मासिक रेडियो कार्यक्रम की श्रृंखला में 135वें एपिसोड का होगा सीधा प्रसारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में प्रदेश बन रहा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ स्वीकार। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा, दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा है हिसाब किताब। और गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई हिस्सों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए या धीमेह से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का। ये लखनऊ केंद्र है और प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ वैशाली आप सबके साथ और वक्त है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित भजन सोपोरी का राग नट भैरव में संतूर वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित भजन सोपोरी का राग नट भैरव में संतूर वादन। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आकाशवाणी लखनऊ से, जिसे वाइंड अप करने का वक्त हो चला है, तो दीजिए अनुमति कार्यक्रम से वैशाली को नमस्कार। सुनते रहिए आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र 700

0: किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में प्रातः के 8 बजने वाले हैं, सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदाम्बी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
3: Today we have a new national health policy.
4: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
3: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
5: महाराष्ट्र में जो टीईटी की एग्जाम होने वाली है उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के डीसीपी जोन 2 पवन बंसोड इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले टीईटी के

0: चार पेपर जब्त किए हैं, आगे की जांच हमारी चल रही है।
1: इस घटना के बाद आज होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
4: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
5: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाग अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत। आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है।

0: इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप ए में ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं बाल श्रोताओं का साप्ताहिक कार्यक्रम अंकुर।

0: सभी नन्हे मुन्ने बाल दोस्तों को आपकी अपनी नाज़बा दीदी का प्यार भरा नमस्कार। और आज है हमारे साथ, अंकुर प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे, गजेंद्र भैया। नमस्कार भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार दीदी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे बाल साथियों, हो जाइए तैयार, क्योंकि आज है रविवार। आज के कार्यक्रम में याद करेंगे हम बचपन के सुनहरे पल और स्कूल के मस्ती भरे दिन।
0: तो चलिए भैया, हम भी थोड़ा पुरानी यादों को ताजा करते हुए लौट चलते हैं अपने बचपन की ओर। जी हाँ बाल साथियों, जिंदगी का ऐसा दौर है और हर किसी के जीवन का सबसे प्यारा समय होता है, और वो है बचपन। बचपन जीवन का वो सुनहरा दौर है जिसमें ना कोई चिंता होती है और ना कोई बड़ा बोझ, बस होती है अपनी बात मनवाने की जिद, छोटी छोटी खुशियां, दोस्तों और सहेलियों के साथ खेलना कूदना, स्कूल की शरारतें, माँ की डांट में छिपा प्यार, भाई बहनों के साथ खिलौनों के लिए खींचतान मचाना और फिर शिकायतें मम्मी पापा से करना, छुट्टियों में नाना नानी या दादा जी के गांव जाना और वहां पर बीच आंगन में रात को लेटकर कहानियां सुनना, ये सभी यादें हमेशा हमारे मन में बसी रहती है ना भैया?
1: बिल्कुल। और दीदी, एक बात आपको बताएं।
0: जी बताइए।
1: आपने बचपन की यादों के बारे में जो बात की है
0: जी,
1: तो कई बार मुझे भी आज ऐसा लग रहा है
0: जी,
1: अब से कुछ एक दशक पहले
0: जी,
1: ये अंकुर कार्यक्रम जब प्रस्तुत करते थे हम, तो सच में बच्चों के साथ बच्चों जैसा ही बनना पड़ता है और वो जो बचपना है
0: जी,
1: कभी खत्म नहीं होता। और बताएं बच्चों, बचपन जीवन का वो सुनहरा दौर है जहां रोज नई नई शैतानियां करना, तितलियों के पीछे भागना, मिट्टी में खेलना और बारिश के पानी में कागज की नाव चलाना। छुपन छुपाई खेले हैं कभी आप?
0: हाँ बिल्कुल खेले हैं भैया हम, और नाव चलाई आपने?
1: हाँ बिल्कुल। और सच मानिए, जब नाव को बहते पानी के साथ छोड़ा जाता था ना, फिर वो इतनी तेजी से तैरती हुई भागती थी आगे को, पकड़ना मुश्किल पड़ जाता
0: अच्छा,
1: था।
0: ऐसा नहीं लगता था कि जो हमने नाव बनाई है तो मन करी कि इसमें बैठ जाए और हम भी तैरते रहे।
1: हाँ सच में, ऐसी कल्पनाओं का कोई अंत नहीं होता है बचपन में। और कई बार तो जो हमारे दोस्त रेडियो सुन रहे हैं, हम लोग जब बचपन में रेडियो सुनते थे तो सोचते थे कि जो बोलने वाले हैं ना, इसके अंदर बैठे हुए हैं और अपना सब कुछ साज बाज जो गाने वगैरह सुनाते हैं वो सब ऐसे ही सुनाते हैं। लेकिन एक चीज और भी है, कभी कभी कभी अपने सगे साथियों से छोटी छोटी बात पर काफी देर तक हंसते रहना, यही तो बचपन की असली खुशी है। बच्चों इसे कभी ना भूलना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बच्चों बचपन की गलियों में खुशियों का बसेरा है, हंसी और मुस्कान का प्यारा सा सवेरा है, ये अनमोल पल खो ना जाए कहीं, बचपन के दिन खो ना जाए कहीं। और फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं भैया, तो हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं, लेकिन हमें अपने बचपन की मासूमियत, सच्चाई और खुश मिजाजी को कभी नहीं भूलना चाहिए, है ना? ताकि जीवन में उत्साह और आनंद बना रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: ठीक कहा। और ये जो बचपन की बातें हैं, इनमें
1: और
0: बहुत सारी सीख की बातें भी
1: बिल्कुल
0: होती
1: सही कहा
0: हैं।
1: आपने। और साथ ही हमें भैया ये भी याद रखना चाहिए कि बच्चों के जो माता पिता हमें सीख मिलती है, शिक्षकों द्वारा बताई गई बातें होती हैं, और वो अच्छे संस्कार जो हमें देते हैं वो भी अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि बच्चों बचपन की सीखी हुई अच्छी आदतों से ही हमारे भविष्य की मजबूत नींव बनती है।
0: बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। आज की जो रफ्तार है वो बहुत तेज रफ्तार वाली दुनिया है,
1: जी
0: और इसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ तकनीकी चीजों से जुड़ना
1: जुड़े
0: पड़ता है
1: जी
0: और जुड़े हुए भी हैं। लेकिन हमें खुले मैदान में खेलना यानी आउटडोर गेम्स में भी
1: जुड़े रहना
0: सहभाग
1: चाहिए
0: करना चाहिए,
1: जी
0: जुड़ना चाहिए, और किताबों से भी ज्ञान पाते रहना चाहिए, और अपने किस बिजी जो शेड्यूल है उसे अपने परिवार के लिए भी समय जरूर निकालें।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताती है। तो प्यारे बच्चों, अपने बचपन को हर पल की खुशी से यानी कि बहुत अच्छे से जिएं, नए सपने देखें और हमेशा सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलें, क्योंकि बचपन एक ऐसा खजाना है जो फिर हमें नहीं मिलता, लेकिन बचपन की मीठी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं, क्योंकि

0: और अब हमारे बीच उपस्थित हैं बच्चों सुविज्ञानंद गुप्त जी, जो बच्चों को सुनाएंगे प्यारी प्यारी कविताएं। आइए सुनते हैं।
1: मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, साथ ही सभी आदरणीय श्रोताओं, आप सभी को मेरा सादर अभिवादन, वंदे मातरम। यदि आज आपके लिए आकाशवाणी परिवार बरेली के माध्यम से मेरे गीत, मनोरंजन तथा शिक्षा के साथ संस्कारों की प्रेरणा दे सकें, तो यह मेरे सृजन की सार्थकता होगी। बहरहाल, लाडले बेटा बेटियों, आइए और मेरे साथ मेरे गीत गुनगुनाइए। ये गीत

हे प्रीत, और ये इस गीत के माध्यम से आपके लिए हम एक सीख दे रहे हैं या शिक्षा प्रदीय कुछ पंक्तियां गीत की कि प्रभु का वंदन रोजी करो, दांत में मंजन रोजी करो। प्रभु का वंदन रोजी करो, दांत में मंजन रोजी करो। प्रातः काल नहाओ उठकर, आंख में अंजन रोजी करो और नाक में

भी न डालो। और समय का बहुत महत्व है जीवन में। प्रति क्षण हमारे जीवन के लिए वरदान होता है, यदि हम उसे कहीं ना कहीं सदुपयोग करते हैं। तो कुछ पंक्तियां गीत की है आपके लिए कि व्यर्थ न अपना समय गवाओ, व्यर्थ न अपना समय गवाओ, सदा समय पर काम करो फिर जीवन पथ पर बढ़ते जाओ। व्यर्थ न अपना समय गवाओ, व्यर्थ न अपना समय गवाओ, भारत वीरों की धरती है, साहस से दुनिया डरती है, जो समय का आदर

जीवन पथ पर बढ़ते जाओ, जीवन पथ पर बढ़ते जाओ, जीवन पथ पर बढ़ते जाओ। अब इस समय गर्मी का मौसम है और गर्मी का मौसम आप सबको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि छुट्टी यहाँ आपको इस समय भरपूर मिलती हैं और आपको बहुत ही कहीं ना कहीं आकर्षित करती हैं, आपको आनंदित करती हैं। तो गर्मी के मौसम पर एक ये गीत। अब गर्मी का मौसम आया, सूरज ने रूप प्रचंड दिखाया। अब गर्मी का मौसम आया, सूरज ने रूप प्रचंड दिखाया। तेज धूप तो बदन जलाती, बड़े जोर की प्यास जगाती। सबने भारी कपड़े छोड़े, गर्म चीज ना मन को भाती। छोटे पौधे भी कुमला आए, लू ने सारा तन झुलसाया। अब गर्मी का मौसम आया, अब गर्मी का मौसम आया। खरबूजा खीरा ककड़ी तरबूज सभी ऐसे में खाते। हरे भरे पेड़ों की छाया में सभी बैठ कर है सुस्ताते। कुल्फी आइसक्रीम लस्सी ने सब पर अपना रंग जमाया। अब गर्मी का मौसम आया, अब गर्मी का मौसम आया। मई जून की प्रिय छुट्टियां याद आ गए नाना नानी। खुलकर मौज मनाने के दिन खेले कूदे कहे कहानी। सूख न पाता तनिक पसीना, कूलर फ्रिज काम है आया। अब गर्मी का मौसम आया, अब गर्मी का मौसम आया। ये गीत आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी भी होगा और आपको संभवतः नया भी लगेगा कि इसमें हमने आप सभी को पशु पक्षियों की कुछ मुख्य बोलियां गीत के माध्यम से दी हैं। इन्हें पढ़ें भी, गाएं भी, गुनगुनाएं और सीख

करने का भी प्रयास करें। माँ से प्यारा रामू बोला, माँ से प्यारा रामू बोला, कांधे पर लटकाए झोला, कविता याद करूं तब जाना, मैडम जी को मुझे सुनाना। मम्मी ने जब पुस्तक खोली, मिली लिखी पशु पक्षी बोली, मम्मी बोली आओ समझाएं, तुमको कविता याद कराएं, कुत्ता करता है भौं भौं, बंदर घुड़की देता खो खो, चिड़िया बोले चू चू चू, मुर्गा करता कुकड़ू

जाऊं मेंढक टर्राता टर टर, उड़ती है तितली फर फर, भौंरा गाता है गुनगुन, शोर मचाती।

है। और प्यारे बच्चों, आज के समय में हमें अच्छा बनना है, आदर्श बनना है और अपने राष्ट्र और धर्म का आगे मान बढ़ाना है, सम्मान बढ़ाना है। और वो कैसे, जब हम एक अच्छे बच्चे बनेंगे तभी हम अपने भारत के भविष्य के निर्माता और सच्चे करदार कहलाएंगे और अपने राष्ट्र और धर्म का अपने देश दुनिया में फैलाते हुए हम एक जो है श्रेष्ठ नागरिक बन सकेंगे। तो ये गीत है, अच्छे बच्चे कहलाते हैं, अच्छे बच्चे कहलाते हैं, अच्छे बच्चे कहलाते हैं, आदर सदा बड़ों का करते, रोज सवेरे जग जाते हैं, करते काम समय पर पूरा, कभी नहीं जो अलसाते हैं, सत्य मधुर बोल।

हैं। माति पिता की बात मानते, ठीक समय विद्यालय जाते, पढ़ते लिखते ध्यान लगाकर, गुरुजनों को शिष्य नवाते, मिलजुल रहते मित्रों संग, आपस में प्यार बढ़ाते हैं, अच्छे बच्चे कहलाते हैं, अच्छे बच्चे कहलाते हैं, अच्छे बच्चे कहलाते हैं, अच्छे बच्चे कहलाते हैं। और अंत में कि खेल कूद में आगे रहते, कभी व्यर्थ ना समय गमाते, दून दुखी की सेवा करते, हंस हंस

0: इसी के साथ आप सभी को हमारी ओर से जय हिंद, जय भारत।
1: क्या बात है
0: जी भाई,
1: जी,
0: वाह
1: बहुत अच्छी कविताएं थीं। और सच मानिए
0: जी,
1: उनकी जो कविता में स्वज्ञानंद गुप्त जी ने जो अभी कविताएं
0: सुनाई
1: साझा
0: जी।
1: की, चाहे पशु पक्षियों की बातें हो, बोली की बातें हो, छुट्टियों की बातें हो, खाने पानी खाने पीने की जो चीजें हैं गर्मियों में
0: ककड़ी
1: उनकी
0: और
1: बातें
0: तरबूज, सभी बातें आ गई
1: हो।
0: हैं गजेंद्र भैया
1: हाँ, हम तो खो गए थे सच
0: जी।
1: में।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम लोग हंस भी रहे थे, काफी एंजॉय कर रहे थे
1: हाँ,
0: इनकी कविताओं को।
1: ये तो है। अच्छा, एक चीज और है,
0: जी
1: बेसाख्ता हंसी अगर कहीं देखने को मिलती है तो वो
0: हाँ,
1: बचपन में ही होती
0: बिल्कुल सही कहा
1: है ना।
0: आपने जी। और आपको अपने बचपन के दिन कुछ याद है तो बताइए हमें
1: अरे, ये जो अभी कविताएं सुनी, इसमें
0: जी।
1: किसी की बोली कर्कश है तो किसी की बहुत सुरीली है।
0: हाँ

0: हमारे बहुत सारे बाल दोस्त हैं जो ग्रामीण अंचल में रहते हैं, उन्हें पता होगा कि मई जून में जब आम के बागों में आम आते हैं
1: जी,
0: उस समय एक कोयल
1: कूकती
0: पक्षी
1: है।
0: हाँ, वो कूक करती है
1: जी।
0: तो उसकी नकल करते थे बचपन में।
1: अच्छा।
0: पता है एक बार हमने उसने किया
1: कू
0: और
1: अच्छा।
0: हमने भी की दिया कू,
1: तो उधर से आवाज आ रही है
0: फिर
1: कू, कू, कू, कू।
0: और फिर उसके बाद
1: यानी कि वो जवाब दे रही है लगातार, है ना।
0: तो ऐसा लगता था ना
1: जी, बिल्कुल
0: कि ये बिल्कुल हमारी नकल कर रही है जबकि हम उसकी नकल कर रहे होते थे।
1: बिल्कुल सही। और बच्चों अब हम आपको बता दें कि छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और शुरू होने वाले हैं स्कूल के मस्ती भरे दिन, है ना। वाकई में ये दिन हमेशा याद रह जाने वाले होते हैं भैया, है ना।
0: बिल्कुल।
1: सुबह स्कूल की घंटी बजते ही बच्चों की चहकती आवाजें पूरे विद्यालय में गूंज उठती हैं। फिर प्रार्थना सभा में सभी का एक साथ खड़े होकर प्रार्थना करना, फिर कक्षा में बैठना और फिर अपने अध्यापकों की बातों को ध्यान से सुनना, पढ़ाई के साथ साथ दोस्ती, अनुशासन, खेलकूद, संस्कार और जीवन के अनमोल पाठ सीखते हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। स्कूल की जो मस्ती है वो हमेशा याद रहती है और शरारतों के लिए कोई निश्चित जगह नहीं होती है ना, जहाँ मतलब अनुशासन भी होता है, अध्यापकों का डर भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल में भी शरारतें की जाती
1: है, रहती है ना।
0: प्यारे बाल साथियों, स्कूल के मस्ती भरे दिन केवल किताबों तक सीमित नहीं होते बल्कि हंसी, शरारत, खेलकूद, प्रतियोगिताओं और यादगार पलों से भरे होते हैं, क्योंकि स्कूल में बिताया गया हर पल खुशियों से भरा हुआ और आने वाला कल होता है। बच्चों, स्कूल जाने से कभी जी ना चुराएं।
1: हाँ, लेकिन क्या होता है ना गजेंद्र भैया, बहुत से बच्चे कहते हैं भाई हम आज नहीं जाएंगे, आज मन नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: दीदी एक बात बताइए
1: जी,
0: स्कूल न जाने का सबसे बड़ा एक प्रमुख बहाना बताइए।
1: कभी कह देते हैं हमारे सर में दर्द हो रहा है, कभी हमें जाना है कहीं पर, बच्चे ऐसे बहाने लेकर बैठ जाते हैं
0: ना, मम्मा मेरे पेट में बहुत ही दर्द है, मैं नहीं जाऊंगा।
1: सुबह ही उठते ही है ना।
0: हाँ। अच्छा एक चीज और भी है, जिस दिन बच्चे का स्कूल जाने का मन ना हो उस दिन सुबह आप देखेंगे उठते ही उनका जो स्वभाव है ना वो एकदम परिवर्तित हो जाता है।
1: हाँ। और जैसे स्कूल का टाइम खत्म हो जाएगा,
0: हाँ,
1: फिर वो देखिए सही और मस्ती में अपने खेल रहे, कूद रहे हैं, तो माता पिता को इन बातों में ना आना चाहिए।
0: अच्छा एक चीज और है, तो ये जो बात है ना आपकी स्कूल ना जाने की आदत वैसे तो बहुत गलत होती है, लेकिन बहाने बनाने की आदत धीरे धीरे सबकी समझ में आ भी जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: हाँ दोस्तों एक बात बताएं बाल दोस्तों, क्योंकि स्कूल में हम केवल पढ़ना लिखना ही नहीं सीखते बल्कि शिक्षकों द्वारा किया गया हमारा मार्गदर्शन, बड़ों का सम्मान, समय का महत्व, अनुशासन, ईमानदारी और एक दूसरे के साथ सहयोग करना भी हम सीखते हैं।
1: बहुत अच्छी बात बता दी आपने ये गजेंद्र भैया। बच्चों स्कूल हर दिन जाया करें क्योंकि हर दिन नया जानने को और सीखने को मिलता है। आपको बताएं बच्चों, स्कूल में समय समय पर जो गतिविधियां होती हैं, वार्षिक उत्सव होते हैं, खेलकूद और प्रतियोगिताएं होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, इनसे ज़रूर से आप पार्टिसिपेट किया करें क्योंकि इनमें भाग लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है और नए अनुभव मिलते हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना भी सीखते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताइए। अच्छा आपने कुछ प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट किया है अपने स्कूल
0: बार?
1: में? अच्छा कौन कौन से?
0: जितने भी कार्यक्रम स्कूल में हुआ करते थे, चाहे वो हमारे जो राष्ट्रीय दिवस हैं उन पर होते थे, राष्ट्रीय पर्वों पर, तो सभी में कभी नाटक में भाग लिया। अच्छा। कभी मंच का संचालन किया, कभी कविताएं सुनाई तो कभी गीत सुनाई। और अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने डांस भी किया है।
1: अच्छा डांस भी किया है?
0: बिल्कुल,
1: बहुत अच्छे। और हम आपको बता दें हमने भी किया है गजेंद्र भैया, और स्टेज पे बहुत सारे प्रोग्राम भी हमने किए हैं। और बताएं हम आपको कि सुबह की जो प्रेयर होती थी वो हम ही पढ़ाते थे स्टेज पर जाकर।
0: क्या बात है, क्या बात
1: और,
0: है।
1: और जब तक हम स्टेज पर नहीं गए बड़ा डरते थे कि पता नहीं ये कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, बड़ी झिझक सी बनी रहती थी।
0: ये तो होता है, हाँ, लेकिन शुरुआत में होता है
1: जी जी, लेकिन मन में जब ये सोच लिया कि हमें भी जाना है, हमें भी पढ़ना है, तो फिर ऐसी बात कुछ भी नहीं रही। और पता है क्या, जब प्रेयर में खड़े होते थे तो चोटी खींच लिया करते थे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना।
0: सही, हाँ बिल्कुल। अच्छा ये जो आपने अपनी शरारत की बात की ना, ऐसे ही हमें भी याद आता है कि बचपन में जब ग्रामीण क्षेत्र थे और वहाँ स्कूल में हमें फर्श पर नीचे एक टाट का फर्श हुआ करता था, उस पर बैठना, हाँ
1: पट्टी कहते हैं,
0: उस पर बैठना पड़ता था
1: जी। तो फिफ्थ क्लास हमने ऐसे ही पट्टी पर बैठकर ही किया
0: जी, तो उसमें क्या होता था, उसका एक धागा टूटा हुआ होता था। अब पता चला कि आगे

0: मित्र हैं हमारे जो बैठे हैं क्लास में, उनकी पैंट में एक बेल्ट डालने के लिए लुपी होती
1: हाँ
0: है,
1: होती है,
0: बस
1: ठीक
0: वो धागा उठाया, वो एक तरफ तो उसमें
1: बांध दिया।
0: पट्टी में बंधा हुआ है
1: हाँ हाँ
0: और दूसरी तरफ उनकी लुप्पी
1: लुपी
0: में
1: में।
0: बांध दिया। अब आए हमारे क्लास टीचर, उनके अभिवादन में हम खड़े होते थे और पता चला हम सब खड़े हो गए, लेकिन वो बेचारे आधे खड़े होकर गिर गए और फिर पनिश किया जाता था। हाय, तो जो जिनकी लुप्पी बांधी है उनके एक तो इधर वाले और एक इधर वाले और उनके पीछे के तीन,
1: अच्छा
0: ऐसे छात्रों की सजा दी जाती थी अध्यापक के द्वारा।
1: तो भाई देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिवादन के लिए हम खड़े हो रहे हैं, सम्मान के लिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन
0: जी
1: हाँ बीच में कभी कर सकते हैं भाई, ये तो बचपन है और शरारतें तो लगी रहती हैं, लेकिन किसी को नुकसान ना पहुंचे, बस इस बात का ध्यान
0: किसी के
1: रखें।
0: टिफिन का खाना उनको बिना बताए खा लिया, फिर इंटरवल में पता चला कि वो बड़ा मायूस बैठे हैं तो फिर अपना टिफिन उनको दे
1: एक
0: दिया।
1: बार याद आया इसी बात से हमें
0: हाँ
1: कि हम मम्मी से बहुत मज़ेदार चीज़ बनाकर लेकर गए थे, और हमारी सहेलियों ने, इधर क्लास चल रही है, चुपके चुपके चुपके वो टिफ़िन हमारा फिनिश कर दिया। अब जब लंच टाइम हुआ तो हमने वो जब टिफ़िन खोला तो उसमें कुछ भी नहीं। अब हमें बड़ा गुस्सा, क्योंकि हमें तो अंदर से भूख लग रही है और हमारे टिफ़िन में कुछ भी नहीं। तो फिर हमारी सहेलियाँ बोली कि हमने खा लिया, और ये देखो हमने आपके लिए बचा के रखा है।
0: ये भी
1: तो
0: सही।
1: फिर और उन्होंने हमें अपना टिफ़िन खिलाया
0: अच्छा,
1: फिर।
0: बिना बिना बिना बताए जो टिफिन फिनिश किया जाता था दोस्तों का, तो एक और थोड़ा मुंह में डाल लिया है और बस वो देख रहा है तो उसकी तरफ देख के मुस्कुरा दिए, उन्हें यही नहीं बताया कि उन्हीं का खाना खाया जा रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा, वाकई में बचपन में हम भी एकदम खो गए और पुरानी यादें ताज़ा होने लगी हैं बच्चों। और देखिए ना, ऐसे ही समय बीत जाता है ना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, समय बीत जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन स्कूल की यादें कभी पुरानी नहीं होती।
1: बिल्कुल सही
0: जब भी
1: कहा।
0: हम अपने स्कूल दोस्तों और सहेलियों और उनकी बातें याद करते हैं तो वो हमारे चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती
1: और
0: है।
1: देखिए आज भी हम मुस्कुरा रहे हैं और हंस रहे हैं ना।
0: बिल्कुल, इंटरवल के वो दिन जब सब साथियों के साथ टिफिन साझा करते थे और एक दूसरे का खाना खाते थे और जिसका लंच मजेदार होता था उनका पूरा टिफिन चट कर जाते थे।
1: बिल्कुल सही कहा बच्चों, स्कूल के दिन हंसते हंसते कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता, और समय के साथ कब बड़े होकर अपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं, और अंत में फिर यही कहते हैं कि भाई वाह, वो दिन भी स्कूल के क्या मस्ती भरे दिन थे। तो बच्चों आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां,
1: खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह।
0: क्या बात है। अच्छा, कुछ ऐसे वाक्य हुआ करते थे पहले, कविताएं भी हुआ करती थी, जिन्हें अगर हम बोलते हैं तो सही बोल ही नहीं पाते। हाँ। बहुत अभ्यास करना पड़ता है।
1: जैसे कि कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, जरा बोल के दिखाइए जल्दी।
0: पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़।
1: हाँ, इसी के साथ एक नन्ही बालिका और है हमारे साथ, आइए सुनते हैं। भाई वाह, क्या कहने हैं। और स्टूडियो में बाहर आ चुकी है एक ननी मनी बालिका हमारे साथ बैठी हुई है, जिन्होंने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी है, ब्लू कलर की जीन्स पहन रखी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अंकुर कार्यक्रम में। आपका क्या नाम है?
2: मेरा नाम अर्पिता मिश्रा है।
1: और आपकी मम्मी जी का?
2: मेरी मॉम का नाम रश्मि मिश्रा है।
1: और पापा जी का नाम?
2: मेरे पापा जी का नाम मिस्टर प्रदीप मिश्रा है।
1: अच्छा, आप कहाँ रहती हैं?
2: मैं फरीदपुर में रहती हूँ।
1: तो बरेली क्या आप छुट्टियों में आई हुई हैं?
2: हाँ, इस समय मैं अपनी नानी हाउस आई हूँ।
1: आहा, नानी के घर आई हुई है, भाई क्या बात है। तो नानी के घर आके कुछ सीखा आपने नाना नानी से?
2: हाँ जी।
1: क्या सीखा बताइए?
2: मैंने नानी से किचन गार्डनिंग सीखी है। उसमें मेरी नानी ने बहुत सारे प्लांट्स लगा के रखे हैं, कभी नींबू का, मिर्च का, धनिया, पुदीना और
1: टमाटर का है।
2: हाँ, टमाटर का भी है।
1: अरे वाह, क्या बात है भाई। अच्छा, किचन गार्डन से क्या फायदा हो जाता है? नानी ने कुछ बताया होगा, आपने पूछा होगा।
2: किचन गार्डन से ये फायदा, जो सब्जियां हमें बाहर से लेनी पड़ती हैं, वो हमें घर पे ही मिल जाती हैं।
1: हाँ, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा नहीं है। हाँ। है ना, सब्जी लाने वाला, तो आसानी हो गई भाई।
2: आसानी हो,
1: हमने अपने किचन गार्डन से ही वो सब्जी ले ली है ना। और कड़ी पत्ता का है?
2: हाँ, कड़ी पत्ता का भी।
1: अरे वाह, काफी सारे पेड़ लगा रखे हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। और देख, किचन गार्डन वैसे छोटा सा होना चाहिए है ना। और ये बताइए, जब हम पेड़ लगाते हैं तो हमें उसकी देखभाल कब तक करना चाहिए?
2: जब तक पेड़ बड़ा ना हो जाए तब तक हमें उसकी देखभाल बहुत अच्छे से करनी चाहिए।
1: अच्छा, जैसे नानी के घर आप आई हुई हैं, तो और नाना जी ने कुछ बताया आपको?
2: नाना जी ने बताया था, अपनी पुरानी बातें बताई थी, उसमें सब बहुत हंसे थे, मतलब बड़ा अच्छा लगा।
1: अच्छा, जैसे ऐसा होता है ना, जो समय गुजर गया, वो वक्त गुजार के आगे बढ़ रहे होते हैं हमारे बुजुर्ग है ना, और उस समय में तो हम होते नहीं है, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती है एकदम नई सी लगती है ना। जैसे कि पुराने जमाने के सिक्के हो गए है ना, 5 का 10 का, तो लगता है कि अरे ये एल्युमिनियम के सिक्के चला करते थे उस जमाने में है ना। तो बहुत सी चीजें ऐसी हो गई है। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिली, समझने को मिली, नानी के घर आई तो बहुत सारी चीज़ें सीखी आपने। अच्छा, बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं आप?
2: मैं बड़े होकर, वैसे तो मेरा ये ड्रीम है, जैसे कि पुलिस।
1: अच्छा, पुलिस में जाना चाहती हैं। अच्छा, वैसे पुलिस से डर नहीं लगता है आपको? क्यों नहीं लगता है? और पुलिस से डरना भी तो नहीं चाहिए।
2: डरना नहीं चाहिए, मतलब कि जैसे कि पुलिस एक हमारे रक्षा के लिए होती है।
1: और जब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तो हमें पुलिस को बताना चाहिए।
2: बताना चाहिए।
1: तो बच्चों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: बच्चों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर उन्हें कोई अनजान इंसान चीज दे रहा है, उन्हें वो नहीं लेनी चाहिए कभी, क्योंकि उसमें वो कुछ भी मिला के दे सकता है आपको।
1: हाँ, ये बात तो बहुत पॉइंट की बताई आपने। किसी भी अनजान व्यक्ति से बच्चों कुछ नहीं लेना चाहिए, वो खाने की चीज दे, आपको कोई खिलौना दे, तो वो नहीं लेना चाहिए। और गुड टच और बैड टच के बारे में जानती हैं आप, तो उसके बारे में बताइए।
2: जैसे कि अगर कोई आपसे हेलो कर रहा है तो वो गुड टच है, और अगर जैसे कि कोई आपके गले पे हाथ रखे तो वो बैड टच होता है।
1: हाँ।
2: तो बच्चों को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए।
1: इस बात का सभी बच्चे और जो खास तौर से बालिकाएं हैं वो बहुत ध्यान रखें, गुड टच और बैड टच का ध्यान रखें। अर्पिता, ये बताइए और क्या क्या अच्छा लगता है आपको?
2: जैसे कि मुझे कभी कभी, मैं लूडो भी खेल लेती हूँ।
1: आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट

0: बहुत अच्छा लगता है।
1: मुझे वैसे कि हिंदी अच्छा लगता है और होम साइंस।
0: और साफ सफाई के बारे में किन किन बातों का ध्यान रखती हैं, चाहे हमारे शरीर की सफाई की बात हो या फिर हमारे रूम की सफाई की बात हो, तो किन बातों का ध्यान रखना
1: जैसे कि
0: चाहिए?
1: ज़्यादातर शरीर की सफाई अच्छी रहती है। अगर जब आप रोज डेली बाथ लेने जाते हैं, कुछ लोग जैसे कि पानी डाले आते हैं, अपना ईयर साफ़ नहीं करते हैं, जैसे कि हाथ कस के साफ़ नहीं करें, मतलब नाखून साफ़ नहीं करें, हमें
0: हाँ
1: संडे में अपने नाखून ज़रूर काटने चाहिए। उनमें
0: जी।
1: जम्स आ जाते हैं, फिर उन्हीं हाथों से हम खाना खाते हैं, उन्हीं हाथों से हम सब्जी करते हैं।
0: तो इसीलिए तो कहा जाता है कि जो है खाना खाने से पहले हमें
1: हाथ
0: हाथों को बहुत
1: धोना
0: अच्छे
1: चाहिए,
0: तरीके से
1: उसे धोना
0: धोना
1: चाहिए
0: चाहिए। और हाथ हमें कैसे धोना चाहिए
1: बहुत अच्छे, मतलब कि
0: ये हम आपको बता दें, नन्हे मुन्ने बाल साथियों, ये हमें हाथ धोने के स्टेप बता रही हैं और सफाई के बारे में ही बताया इन्होंने। बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी हैं और सभी नन्हे मुन्ने बाल दोस्त अंकुर कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो नन्ही बालिका हमारे साथ बैठी हुई है और बाल दोस्त आपको सुन रहे हैं, क्या सुनाएंगी आप उन्हें?
1: मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। जो बच्चे जैसे कि अगर उनके जैसे कि उनका कोई एग्जाम मिस हो जाए तो वो कहते हैं अरे यार ये तो मिस हो गए, फिर उनकी मम्मी कहती हैं बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर आज इसके बारे में आज मैं आपको एक कहानी सुनाने
0: हाँ हाँ यानी कि जो होता है हमारे अच्छे के
1: इसके लिए
0: लिए
1: होता
0: होता
1: है।
0: है। तो सुनाइए अपनी कहानी।
1: एक बार एक राजा था, उसका एक मंत्री था, उसकी उसकी मंत्री की आदत थी कहने की महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन महाराज अपनी तलवार साफ कर रहे थे तो उनका साफ करते करते हाथ कट गया, तो मंत्री उनके बराबर में खड़ा हुआ था। तो मंत्री ने कहा महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो महाराज ने कहा मूर्ख, एक तो मेरा हाथ कट गया, ऊपर से तू कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो फिर मंत्री चुपचाप अपने कक्ष में चला गया। फिर उसके बाद महाराज शिकार करने गए थे। महाराज शिकार करने जब गए थे तब उन्हें आदिवासी मिले, हू हा हू करके उन्हें अपनी भाषा में कहा हू
0: अच्छा
1: हा हा हा कि
0: हुआ हुआ हाव
1: हाँ
0: हाव हुआ
1: हाँ
0: हुआ
1: हाँ
0: हाव हाव
1: करके
0: करके
1: कहा, तो उनका ये मतलब हुआ कि हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। तो
0: अच्छा
1: महाराज ने कहा भैया हमारी बलि मत चढ़ो। तो उन्हें फिर से कहा हा हा हुआ हा, हम तुम्हारी बलि जरूर चढ़ाएंगे। तो महाराज को फिर अच्छे से तैयार किया गया, मतलब नहलाया धुलाया गया, पगड़ी वगड़ी सब पहनाई गई, अच्छे वस्त्र
0: अच्छा
1: पहनाए गए। फिर उसके बाद जब एक आदिवासी ने देखा हुआ हा, फिर उसने
0: हुआ
1: कहा
0: हुआ हाव हाव
1: हा
0: हु
1: हा हा, फिर उसने कहा अरे हाथ कट, इनके बलि नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि इनका हाथ
0: अच्छा
1: कटा है।
0: यानी कि उनका हाथ कट गया था
1: हाँ
0: तो उन्होंने कहा भाई हम इनकी बलि
1: नहीं
0: नहीं
1: चढ़ाएंगे,
0: चढ़ाएंगे।
1: हम साफ सुथरे इंसान की चढ़ा जिसके कोई कट का निशान ना हो, चोट
0: हाँ
1: का।
0: यानी कि कोई चोट का निशान ना हो, कहीं से कट ना
1: फिर
0: हो।
1: उसके बाद महाराज को छोड़ दिया गया। फिर वो अपने महल में गए, फिर वो मंत्री के पास है, मंत्री मुझे माफ कर दो, तुम जो कहते थे सही कहते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है।
0: भाई वाह क्या बात है। देखिए नन्हे मुन्हे बाल साथियों, अर्पिता ने एक बहुत अच्छी बात बता दी और कहानी के माध्यम से ये भी कह दिया कि भाई जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, इसीलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। तो अर्पिता स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: तो अर्पिता ये बताइए, नन्हे मुन्हे बाल दोस्त आपको सुन रहे हैं, तो ये बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप?
1: मैं फिल्म जादू जा
0: कोई
1: जादू
0: मिल गया मूवी का सॉन्ग
1: कोई
0: है
1: मिल
0: ना?
1: गया।
0: अरे वाह, तो चलिए लीजिए, ये आ रहा है आपकी पसंद पर प्यारा सा गीत।

0: दीदी बहुत बहुत अच्छे हमारी ये जो अर्पिता हैं,
1: जी
0: इन्होंने बहुत अच्छी बातें
1: जी
0: की
1: जी
0: और एक बड़ी अच्छी
1: कहानी
0: कहानी
1: सुनाई
0: भी सुनाई है।
1: जी
0: हु लाला जब सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वो आदिवासी और जो
1: वो
0: जंगल में
1: चेहरा
0: रहने
1: सामने
0: लगे
1: आ जा
0: सामने
1: रहा
0: आ
1: है
0: रहा
1: ना।
0: था। प्यारे बाल साथियों, अब हम आपको बताएंगे कि क्या आप जानते हैं कि अंतर्गत हिमनद के बारे में, हिमनद क्या होता है? चलिए आपकी जानकारी और बढ़ाते हुए आपको बताते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। हिमनद बच्चों, जिसे अंग्रेजी में ग्लेशियर कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा बर्फ का मोटा और स्थायी भंडार होता है जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों या ध्रुवीय प्रदेशों में वर्षों तक लगातार बर्फ जमा होने से बनता है। जब ये बर्फ अपने ही भार के कारण धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगती है तो उसे हिमनद कहते हैं।
1: और बच्चों आपको हम बता दें कि ये बनते कैसे हैं, क्या होता है बच्चों। लगातार कई वर्षों तक पहाड़ों पर बर्फबारी होती रहती है, नई बर्फ की परतें पुरानी बर्फ पर जमती रहती हैं और फिर समय के साथ दबाव बढ़ने से बर्फ कठोर और सघन होने के कारण इसकी मोटी परत जम जाती है और फिर अपने ही भारी वजन के कारण ये बर्फ धीरे धीरे ढलान की ओर बहने लगती है। यही बहती हुई बर्फ हिमनद कहलाती है। बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अनेक बड़ी नदियों का उद्गम हिमनदों से ही होता है।
0: बिल्कुल,
1: और बाल दोस्तों अब बारी आ गई है आज के 5 सवालों की।
0: तो सवाल हमारे और जवाब हमारे बाल दोस्तों के। पहला सवाल है, ध्रुव तारा किस दिशा में होता है? दूसरा सवाल है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? और तीसरा सवाल, चंबल की नदी किस प्रदेश में है? चौथा सवाल, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? और पांचवा आखिरी सवाल, सौर मंडल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? नाम बताइए।
1: और बाल दोस्तों अब हम बता रहे हैं पिछले संडे पूछे गए आपसे 5 सवालों के जवाब। बच्चों पहला सवाल पूछा गया था हिंदी की लिपि कौन सी है, तो बच्चों इसका उत्तर है देवनागरी। दूसरा प्रश्न पूछा था हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर बसा है, तो बच्चों सिंधु नदी के किनारे। तीसरा प्रश्न पूछा था पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है, तो इसका उत्तर है 365 दिन 6 घंटे में। और चौथा प्रश्न था जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बच्चों इसका उत्तर है H2O। और हमने आखिरी प्रश्न में एक मुहावरा पूछा था, मुहावरा था टेढ़ी खीर होना और इसका अर्थ आपसे आपको बताना था, तो इसका अर्थ है बच्चों बहुत कठिन कार्य होना।
0: और ये जो पांचों सवालों की सही जवाब है वो हमें जिन श्रोताओं ने भेजे हैं,
1: कहाँ से आया है ये?
0: बरेली जंक्शन से गरीब भाई और बिकी भारद्वाज,
1: इनके 5 में से 5 सवालों के जवाब बिल्कुल सही हैं।
0: ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से शाजिया भी अंसारी, शगुफ्ता मोबीन, मोहम्मद मुनाजिर, लालू भैया और लाल मोहम्मद अंसारी
1: हाँ
0: जी।
1: हाँ भाई क्या बात है, और इनके भी 5 में से 5 सवालों के जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बहुत मुबारक हो। और चलते चलते हम कार्यक्रम का पता बताए देते हैं। कार्यक्रम का पता है अंकुर कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली, पिन कोड है 2430001। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अभी हमारे बाल श्रोता सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम अंकुर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, न्यूज ऑन AIR ऐप और FM 100.4 MHz पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने को हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन।
1: प्रस्तुत है गंगवार बाल चिकित्सालय निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन।
2: गंगवार हॉस्पिटल निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली।
3: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा।
2: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी।
3: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड।
2: सांस नियंत्रण

0: के लिए सीपैप, वेंटिलेटर, एचएफएनसी और ईयर वो मशीनें।
1: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए
0: खास तरह के वेंटिलेटर, एचएफओ ऑक्सीलेटर, क्रिटिकल थेरेपी, हाइपोथर्मिया।
2: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए सीएफएम, बेड साइड इको, अल्ट्रासाउंड की सुविधा।
0: साथ ही बच्चों में पीलिया, सेप्टिक इन्फेक्शन, निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा। बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
3: गंगवार हॉस्पिटल,
0: निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
1: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
4: स्वस्थ बचपन कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं मुकेश कुमार पांडे, और मेरे साथ हैं बरेली के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: श्रोताओं को नमस्कार, और पांडे जी आपको भी मेरा नमस्कार।
4: डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा सुनने में आता है कि भाई बहुत कम दिनों का बच्चा घर में पैदा हुआ है और सभी को चिंता होने लगती है। आप डॉक्टर हैं, आप बच्चों का और विशेष तौर से जो नवजात शिशु हैं उन्हीं के इलाज के विशेषज्ञ हैं। आखिर जो कम दिनों के बच्चे हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या वाकई में बहुत सीरियस होते हैं?
5: देखिए, कम दिनों के बच्चों को जो हम विभाजित करते हैं
4: जी,
5: वो बच्चा कम दिनों का माना जाता है जो 37 हफ्ते से पहले गर्भकाल के पैदा होता है।
4: अच्छा,
5: तो इसमें एक बच्चे वो हैं जो कम समय के होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेट प्रीटर्म, और एक बच्चे होते हैं बेरी प्रीटर्म
4: जी।
5: तो जिन बच्चों का वजन 1 किलो या उससे भी कम होता है उनको बोलते हैं एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज
4: जी,
5: और जो 1 किलो से 1.5 किलो तक के बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं वेरी लो बर्थ वेट बेबीज
4: जी जी,
5: और 1.5 किलो से 2.5 किलो तक के बच्चे को बोलते हैं लो बर्थ वेट बेबीज।
4: अच्छा,
5: तो ये कैटेगरी है गेस्टेशनल एज के हिसाब से है।
4: अच्छा,
5: है ना, जो बच्चे 32 वीक्स से पहले होते हैं उनको अर्ली प्रीटर्म बोलते हैं, जो 32 वीक्स और 37 वीक्स के बीच में होते हैं उनको लेट प्रीटर्म बोलते हैं।
4: अच्छा,
5: तो हर ग्रुप के बच्चों की अलग परेशानियां होती हैं और उनका इलाज भी अलग होता है, और जैसे जितना वजन बच्चे का कम होता है उस बच्चे को उसी हिसाब से इलाज होता है, और उनका इलाज में जो जेंटलनेस है या जो उनको इलाज चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है।
4: जी जी, डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम उन बच्चों की बात करना चाहेंगे आपसे जो वाकई में बहुत ही कम दिनों के बच्चे हैं। आपने वजन भी बताया, आपने उनकी एज भी बताई, कितने गर्भकाल के बच्चे हैं, तो उनमें क्या समस्याएं होती हैं?
5: देखिए, जो आज की डेट में एज ऑफ वायबिलिटी मानी जाती है वो 24 वीक्स, कोई जगह 23 वीक्स, मतलब 24 हफ्ते यानी 6 महीने का गर्भकाल पीरियड है, वहाँ से पेरीवाइवल एज शुरू हो जाती है।
4: अच्छा,
5: और तो वो बच्चे होते हैं 400 ग्राम के, 450 ग्राम,
4: इतना कम वजन के,
5: इतने कम वजन के, और वो बच्चे सरवाइव कर जाते हैं अगर उनको अच्छा इलाज मिले। इस समय भी मेरे पास 2 बच्चे हैं जिनका वजन, एक का 480 ग्राम है, एक का 500 ग्राम है, और तो इतने कम वजन के बच्चे जिनका कि गेस्टेशनल एज 26 वीक्स है उनको तो आप काफ़ी बच्चों को बचा सकते हैं, लेकिन 26 वीक्स से जो नीचे हैं उन बच्चों को इलाज में थोड़ा मुश्किल आती है और कई बार उनके साथ समस्या हो जाती है। तो जो कम वजन के बच्चे होते हैं उनमें एक तो हर चीज़ उनकी नाजुक होती है, अंग बहुत प्रीमेच्योर होते हैं और उनके इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन बच्चों में जो समस्याएं आती हैं, जैसे कि शुरू में आता है HMD
4: जी,
5: जिसको हाइलैंड मेम्ब्रेन डिजीज बोलते हैं, आजकल की नई भाषा में उसको न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं, NRDS
4: जी।
5: तो बच्चों के फेफड़ों में एक सब्सटेंस होता है जिसको सर्फेक्टेंट बोलते हैं, इन बच्चों के अक्सर वो कम होता है।
4: अच्छा,
5: तो उसको आर्टिफिशियली आपको लंग्स में
4: डालना पड़ता है जी,
5: तो उसको सर्फेक्टेंट थेरेपी बोलते हैं। उसके लिए आजकल जो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है वो बच्चे को सीपैप पे लेके और बिना इंटुबेट किए सर्फेक्टेंट डालना। पहले क्या था, इंटुबेट करते थे, इंश्योर टेक्निक थी, इंटुबेशन करके आप सर्फेक्टेंट डालते थे, बाद में ट्यूब निकाल लेते थे। लेकिन आजकल मॉडर्न टाइम में कि बच्चे को आप सीपैप लगाइए और इंटुबेट मत करिए, उसको डायरेक्ट सर्फेक्टेंट दीजिए, उसका सर्फेक्टेंट देने का कैथेटर आता है या NG से भी दे सकते हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से भी दे सकते हैं
4: जी।
5: तो वो सर्फेक्टेंट देने के बाद बच्चे को आपको मॉनिटर करना पड़ता है कितना आपको FiO2 देनी है। बच्चे को ऑक्सीजन ज़्यादा भी नुकसान करती है, जो उसका जो प्रीमेच्योर ब्रेन है, और जब ऑक्सीजन ज़्यादा दी जाती है तो बच्चे की आँखों को हमेशा के लिए नुकसान हो सकता है, इसको हम बोलते हैं रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी
4: जी जी।
5: तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। आते मेच्योर होती हैं तो

0: को सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए, और दूध भी तब बहुत ही मेजर्ड अमाउंट में देते हैं। ये भी देखना होता है कि दूध बच्चे डाइजेस्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे,
1: जी
0: उनका डिस्टेंशन तो नहीं हो रहा, स्टूल पास हो रहा नहीं हो रहा, स्टूल में ब्लड तो नहीं आ रहा, अकल ब्लड तो नहीं आ रहा। और जो जैसे अभी बात कर रहे थे हम लोग न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की,
1: जी
0: अगर माँ का इलाज जहाँ हो रहा है और उनकी जो डॉक्टर साहिबा हैं वो उनको ये आभास है कि इसमें प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, तो आजकल जो दिया जाता है एंटीनेटल स्टेरॉयड,
1: जी
0: तो एंटीनेटल स्टेरॉयड अगर किसी माँ को लग गया है
1: जी
0: तो उसके बच्चे में ये HMD या NRDS होने की संभावना कम हो जाती है।
1: बिल्कुल
0: तो एक ये बहुत बड़ी आज की दिन में ये फायदा है।
1: डॉक्टर साहब, हम और भी महत्वपूर्ण बातें आपसे जानेंगे आप, लेकिन उससे पहले जानेंगे आपकी पसंद का वो गीत जो आज पहले हमारे श्रोता सुनेंगे।
0: मनपसंद मूवी का सॉन्ग है सुमन सुधा रजनीगंधा।
1: जी, लता मंगेशकर के स्वर से सजा ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं डॉक्टर कुलदीप गंगवार साहब की पसंद पर।

0: सुमन सुधा रजनीगंधा, बहुत ही कर्णप्रिय गीत आपने सुनवाया हमारे श्रोताओं को। अब ये बताइए, आपने कहा बिना इंटूबेट किए बच्चों का इलाज कर देते हैं आज के दौर में, ये इंटूबेट करना क्या होता है?
1: इंटूबेशन मीन्स एक इंडोटेकल ट्यूब होती है जो बच्चों को हम लोग जब वेंटिलेट करते हैं तो इंटूबेट कर वो ट्यूब आपके ट्रेकिया में डालते हैं,
0: यानी गले में डालते हैं,
1: गले
0: मुंह के रास्ते
1: नहीं, सांस के रास्ते,
0: सांस के रास्ते
1: वो ट्रेकिया में डालते हैं और उसको कनेक्ट करने के बाद फिर वेंटिलेटर जोड़ते हैं। तो इंटूबेशन एक तरह का इन्वेजिव प्रोसेस माना जाता है और आजकल सारे इन्वेजिव प्रोसेस को हम लोग डिस्करेज करते हैं क्योंकि जहाँ पे भी इन्वेजिव प्रोसेस होता है वहाँ पे चांस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ते जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो प्रीमेच्योर बच्चों में एक तो ये NRDS हो गया, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस हो गई, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस हो गया, IVH हो गया, इंटरवेंट्रिकुलर हेमरेज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। और आपका स्किन बहुत थिन होती है तो स्किन में हमें एडेसिव लगाते समय भी ध्यान रखना होता है
0: जी।
1: और आपका आँखों में ROP हो गया, उधर बच्चों में खून की कमी हो जाती है जिसको एनीमिया प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं
0: जी,
1: जो तो खून की कमी हो जाती है और फिर इन्फेक्शन सेप्सिस होने के चांस बहुत होते हैं और इन बच्चों में फंगल इन्फेक्शन यानी फंगल सेप्सिस होने के भी चांस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, अक्सर इनकी प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है, कई बार TLC में ल्यूकोपीनिया हो जाता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन है जिनको आपको डेली आपको देखना पड़ता है, मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि इनका जैसे सेचुरेशन है 94 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 94-95 से और 90 और 93 के बीच में है वो सेचुरेशन अच्छा माना जाता है जिससे कि चांस ऑफ ROP कम हो जाते हैं
0: जी जी,
1: है ना। तो चूंकि इन शिशु के सारे ऑर्गन्स
0: जी
1: समय से पहले बच्चा पैदा होने के कारण कम डेवलप है जी, तो सभी जगह से दिक्कत आती है
0: जी। बहुत महत्वपूर्ण बात है और ऐसे बच्चों

0: वो जो वाकई में बहुत कम दिनों के बच्चे हैं उनको स्वस्थ रख पाना अपने आप में चुनौती भरा काम है। डॉक्टर साहब, कई बार तो बच्चों को आप लोग भर्ती करते हैं अस्पताल में, और जो बहुत कम दिनों के बच्चे होते हैं बहुत लंबे समय तक रहते हैं। क्या कोई शर्त होती है इतने लंबे समय तक इन बच्चों को भर्ती रखना ही पड़ेगा नर्सरी में या अस्पताल
1: जो
0: में?
1: इनके डिस्चार्ज क्राइटेरिया है वो जब कब छुट्टी होना चाहिए,
0: जी जी
1: तो जो बच्चे जब घर जाने से पहले उसका ऑक्सीजन हट जाना चाहिए,
0: जी
1: घर जाने से पहले उसको दूध इतना पीना चाहिए कि उसका वजन डेली बढ़ना चाहिए,
0: जी
1: घर जाने से पहले उसको कोई गंभीर तकलीफ तो नहीं है वो चेक होना चाहिए, जैसे उसकी आंखों की जांच होनी चाहिए, कानों की जांच होनी चाहिए, उनको उस तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है। तो वजन बढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चे का, ऑक्सीजन वगैरह हटना, और कोई उसको ऐसी आईवी एंटीबायोटिक या आईवी कोई दवाई ऐसी तो नहीं लग रही जो हॉस्पिटल में ही लग पाए, तो
0: जी
1: वो घर जाके लगाने में परेशानी हो सकती। तो ये डिस्चार्ज क्राइटेरिया, और कम से कम बच्चे का वजन 1.6 kg वेट होना चाहिए, तभी इस अवस्था में बच्चा पहुंच पाता है कि वो माँ का दूध पी पाए ठीक से और वेट गेन करे।
0: डॉक्टर साहब, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाहूँगा। बहुत कम समय और बहुत सीमित शब्दों में लोग कहते हैं कि ऐसे बच्चों का इलाज बहुत महंगा होता है, क्या सच्चाई है? हालांकि समस्या गंभीर है तो
1: देखिए
0: इलाज तो थोड़ा महंगा
1: देखिए
0: होता
1: बच्चों
0: है।
1: का इलाज महंगा नहीं होता, क्या होता है कि बच्चे हम लोगों के पास बहुत देर से
0: देर
1: पहुँचते
0: से
1: हैं,
0: पहुँचते हैं
1: बहुत ही गंभीर अवस्था में पहुँचते हैं,
0: जी।
1: तो जितना बच्चा गंभीर होता है इलाज उतना ही महंगा हो जाता है, क्योंकि उतनी ज़्यादा मशीन उसको लगती है। जब यही बच्चे समय से अगर आपको मिल जाए, कम गंभीर अवस्था में मिल जाए, तो उनका इलाज सस्ता होता है। और जो हम लोगों के यहाँ इलाज है दिल्ली वगैरह में, इसका 5 गुना ज़्यादा महंगा इलाज है।
0: जी जी
1: वहाँ पे नर्सरी का एक दिन का खर्चा 60,000 से 1 लाख रुपए तक के बीच में है,
0: जी
1: जबकि हमारे यहाँ मैक्सिमम खर्चा जब बच्चा वेंटिलेटर पे भी जाता है तो 10 से 15 हज़ार के बीच में आता है।
0: जी
1: तो वो खर्चा देखा जाए तो 1/5 1/4 खर्चा है दिल्ली के अपेक्षा।
0: जी जी निश्चित ही। अब डॉक्टर साहब, कौन सा गीत आप सुनवाएंगे हमारे श्रोताओं को? तो
1: देखिए सर, गीत है तकदीर पिक्चर का, 7 समुंदर पार से।
0: आइए श्रोताओं, सुनते हैं डॉक्टर कुलदीप गंगवार साहब की पसंद का ये गीत। और अब इसी के साथ आज के स्वस्थ बचपन कार्यक्रम से मुझे यानी मुकेश कुमार पांडे को डॉक्टर कुलदीप गंगवार जी के साथ दीजिए अनुमति। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे।

0: सुन रहे थे
1: गंगवार बाल चिकित्सालय निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन।
2: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:15 होने को हैं। आइए सुनते हैं विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
3: अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अजय अतुल का संगीत, कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

देव नेगी की आवाज में आप सुन रहे थे केदारनाथ फिल्म से ये गीत, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से समय का संयोजन कर उसका समायोजन किया जा सकता है। और एक बार जब हम समझ जाते हैं कि अपने काम के लिए किस तरह से अपने पूरे दिन को हम विभाजित कर सकते हैं और अपने काम में अलग अलग समय को लगा सकते हैं, तो उसके बाद जीवन तो बड़ा ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि अपने लक्ष्य को हम जल्दी ही पा लेंगे। लेकिन हमारे पास है सदा गतिशील मन, जो हमें उस जगह ले जाना चाहता है जहां हम नहीं जाना चाहते। हर वो

काम करवाना चाहता है जो हम नहीं करना चाहते, लेकिन करने में आनंद भी आता है, तो हो सकता है कि वो मन हमें वापस वहाँ लेकर जाए जहाँ पुराने ढर्रे पर हम चले जाएं और वो सारी काम करें और अपना समय व्यर्थ करें वापस। तो बस ये कोशिश कीजिए कि इस मन की मनमानी ज्यादा ना चले।

कपूर एंड सन्स फिल्म से आपने सुना ये गीत, अभिरुचि चंद ने इसे लिखा, अमाल मलिक का संगीत, अरमान मलिक और अमाल मलिक की आवाजें। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। यह कार्यक्रम का अंतिम गीत ट्यूबलाइट फिल्म का ये गीत सुनिए कमाल खान, देव नेगी, नक्श अजीज और तुषार जोशी की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, प्रीतम का संगीत।

स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए और समय का कीजिए सदुपयोग। और दिन में कहीं भी रहिए, रहिए विविध भारती के संग। आज के लिए अपने दोस्त नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा। चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत।
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार, तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई, डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन

सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। साथियों, फिल्मों में निर्देशक ही वो सूत्रधार होता है जो कैमरे के पीछे रहकर पूरी टीम का मार्गदर्शन करता है, कलाकारों के अभिनय को आकार देता है। निर्देशक की सोच, दृष्टि और सृजनात्मकता ही किसी भी फिल्म की आत्मा होती है। आज हम ऐसे ही प्रतिभाशाली निर्माता निर्देशक के जीवन कार्य और योगदान पर बातें करेंगे, जिन्होंने अपने अनोखे दृष्टिकोण और सृजनात्मकता से सिनेमा की दुनिया में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। साथियों, हिंदी सिनेमा में जहां एक ओर बड़े बजट की भव्य फिल्में दर्शकों को आकर्षित करती हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ निर्देशक अपनी सादगी भरी कहानियों और मानवीय भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत करके दर्शकों का दिल जीत लेते हैं।

0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के फनकार, वेरी टैलेंटेड निर्माता निर्देशक आनंद एल राय की, जिन्होंने साधारण मिडिल क्लास लोगों की कहानियों को रुपहले पर्दे पर नया नजरिया दिया है।
1: आया, आया।

साला गर्दा उड़ा दिया। अरे गर्दा उड़ा दिए। बेटा गर्दा उड़ा दिए।

28 जून साल 1971, दिल्ली में जन्मे आनंद एल राय, इनका परिवार भारत पाक विभाजन के दौरान सीमा पर खिंची दीवार के बाद सिंध छोड़कर देहरादून चला आया और कुछ समय बाद आनंद राय के पिता ने दिल्ली में अपना आशियाना बना लिया। आनंद राय का पालन पोषण दिल्ली में हुआ। वहाँ से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर वे नौकरी करने लगे। साथियों, यूं तो आनंद की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ कमी सी महसूस होती रही। दरअसल उनका झुकाव तो रचनात्मक क्षेत्र की ओर था,

आनंद अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए। श्रोताओ, बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग का फील्ड छोड़कर फिल्मी दुनिया में करियर बनाया है। आनंद एल राय भी उनमें से एक हैं। मुंबई आकर आनंद राय ने अपने बड़े भाई रवि राय, जो कि उस समय टीवी धारावाहिकों का निर्देशन कर रहे थे, उन्हें असिस्ट करना शुरू कर दिया। पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने के बाद आनंद ने अपने निर्देशन की शुरुआत की। ये यूं कहिए कि आनंद ने बतौर निर्देशक अपना डेब्यू किया साल 2007 में साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म स्ट्रेंजर्स के साथ। यहाँ आपको बताते चलिए कि फिल्म स्ट्रेंजर्स अल्फ्रेड हिचकॉक की स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन पर बेस्ड थी, लेकिन आनंद राय की ये डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह लुढ़क गई, जिसमें जिमी शेरगिल, के मेनन, नंदना सेन, सोनाली कुलकर्णी जैसे कलाकार थे।

सेठी अभिनीत आनंद राय की अगली फिल्म आई थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं चला पाई और दर्शकों ने भी इस फिल्म को नकार दिया।

बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म देने वाले आनंद एल राय, इनके साथ अब कोई निर्माता काम करने को तैयार नहीं था। लगातार फेलियर होने पर आनंद राय ने हार तो नहीं मानी, लेकिन हाँ, 3 साल का ब्रेक जरूर ले लिया। इन 3 सालों के ब्रेक के बाद आनंद राय के करियर का टर्निंग पॉइंट आया साल 2011 में, जब उन्होंने तनु वेड्स मनु फिल्म के निर्देशन के साथ अपनी ग्रैंड वापसी की और हर किसी को अपने डायरेक्शन का दीवाना बना दिया।

आर माधवन और कंगना रनौत अभिनीत ये फिल्म आनंद राय की पहली कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में जबरदस्त कमाई की। दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया।

आनंद राय बॉलीवुड के उन गिने चुने डायरेक्टर्स में से हैं, जो रीमेक के दौर में नई और असल कहानियों पर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। वो खुद भी बड़े सिंपल अंदाज में जीवन जीते हैं। साथियों, उनका कहना है कि अगर वो साधारण जिंदगी नहीं जिएंगे तो अपने अंदाज में फिल्में नहीं बना पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं साल 2013 की। इस साल आनंद राय ने अपने निर्देशन में दूसरी कमर्शियली हिट फिल्म दी रांझणा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इस फिल्म के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के ऑपोजिट साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार धनुष ने बॉलीवुड में अपनी एंट्री की, जिन्हें दर्शकों ने तहे दिल से स्वीकार किया और इस फिल्म में अभिनेता धनुष के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा हुई।

0: नसीहत।
1: आपको बता दें कि फिल्म रांझणा दुनिया भर में करोड़ों की कमाई करने वाली साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाऊ हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म के लेखन और निर्देशन की बहुत सराहना हुई और फिल्म रांझणा ने फिल्म फेयर अवार्ड के लिए आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया।

संगीत सुनने के शौकीन बॉलीवुड प्रोड्यूसर डायरेक्टर आनंद एल राय हिंदी सिनेमा में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। साल 2015 में आपने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का निर्देशन किया, जो फिल्म तनु वेड्स मनु का सीक्वल था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। दर्शकों से इस फिल्म को भरपूर प्यार और सराहना मिली। ये फिल्म साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में करोड़ों में जबरदस्त कमाई की। खास बात ये रही साथियों कि अपनी रिलीज के समय भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये महिला प्रधान फिल्म थी। आनंद राय की इस तीसरी जबरदस्त सफल फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में अपना दूसरा नामांकन दिलाया।

आनंद एल राय को सफलता काफी उतार चढ़ाव के बाद मिली। भारतीय सिनेमा में कई निर्देशक हैं, लेकिन चर्चा में कुछ ही रहते हैं जिनमें आनंद एल राय का नाम भी शामिल है। तनुवेट्स मनु, रांझणा, तनुवेट्स मनु रिटर्न्स जैसी हिट फिल्म्स के निर्देशक आनंद एल राय बॉलीवुड के मशहूर निर्देशकों में से एक हैं।

आपने साल 2018 में शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ जैसे ए लिस्ट स्टार कास्ट के साथ फिल्म बनाई जीरो। और साथियों, आनंद राय की पिछली सफल फिल्मों के कारण रिलीज से पहले हाई प्रमोशन के बावजूद आनंद राय की ये फिल्म कुछ खास नहीं चल सकी।

श्रोताओं, आनंद राय न केवल निर्देशक हैं, बल्कि वो एक सफल निर्माता भी हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस कलर येलो प्रोडक्शंस के बैनर तले नील बटे सन्नाटा, हैप्पी भाग जाएगी, मन मर्जियां, तुम बाट, अतरंगी रे, रक्षाबंधन, शुभ मंगल सावधान जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया है। फिल्म अतरंगी रे की बात की जाए तो ये फिल्म साल 2021 में आई, जो एक रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी थी। आनंद राय निर्देशित इस फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म को कोविड के दौरान लॉकडाउन के कारण सिनेमाघरों में रिलीज किए बिना डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों की, आलोचकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया और समीक्षा मिली।

साल 2022 में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को लेकर आनंद एल राय ने फैमिली कॉमेडी फिल्म रक्षाबंधन निर्देशित की।

और अब साल 2025 में आने वाली फिल्म तेरे इश्क में, जो सीक्वल है फिल्म रांझणा का और जिसके निर्माण और निर्देशन का दारोमदार है आनंद एल राय पर, देखना ये होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाती है। तो हमें इंतजार है आनंद एल राय की आने वाली फिल्मों का। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता निर्देशक आनंद एल राय पर। शोध, आलेख और स्वर शेफाली कपूर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। आज के फनकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारी विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हमने अपनी आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किया। न्यूज ऑन AIRF और FM 100.4 MHz पर यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है।

नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के आपकी पसंद के इस कार्यक्रम में। हम तैयार हो चुके हैं आपकी पसंद के सुरीले नगमे इन फिजाओं में बिखेरने के लिए, और आप भी तैयार हो जाइए सुनने के लिए। जी हाँ, आप भी तैयार हो जाइए सुनने के लिए, और हम तैयार हो चुके हैं आपकी पसंद के नगमे आपको सुनवाने के लिए। और अगर आप अभी तक इस कार्यक्रम में कमेंट नहीं किए हैं तो आइए आकाशवाणी बरेली की पेज पर और आपकी पसंद कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट में अपने कमेंट कर दीजिए। सिर्फ टेक्स्ट कमेंट ही शामिल किए जाएंगे, कोई भी पिक्चर मैसेज के साथ ना अटैच करें। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि एक बार कमेंट ही कीजिएगा, बार बार नहीं, और इतना विश्वास आप हम पर कर सकते हैं कि कोई भी कमेंट, किसी भी श्रोता का एक कमेंट तो हर हाल में शामिल होगा। अगर बार बार आप कमेंट करेंगे तो वो पोर्टल पर हमें भी थोड़ा डिस्टर्ब करता है और दोस्तों के साथ ना इंसाफी भी रहती है। तो दोस्तों, कमेंट सिर्फ एक बार कीजिए और तैयार हो जाइए आज के आपकी पसंद कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं। जी हाँ, कमेंट की शुरुआत तो बहुत देर से हो चुकी है, 183 यानी 183 कमेंट के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज हो रहा है। और आज का जो पहला गाना है वो फिल्म संघर्ष से है, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है, शकील बदायूनी की बोल और नौशाद का म्यूजिक डायरेक्शन। इस गीत को सुनना चाहते हैं ओली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन, दीपांशु खोरवाल। आप हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, पद्मा राकेश नेपानगर से, और कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सिटी दीवाना है। शनि बाजार कस्बा उगहती से आप हैं प्रभाकर गुप्ता, अवधेश, सचिन देव, प्रियल, कायरव और इनका पूरा गुप्ता परिवार। और मनकारा मंदिर बीडिया कॉलोनी करगना बरेली से बेनी सिंह सागर, पनीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश सागर, बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, आदित्य, शिवांश और प्रताप सिंह। और कमेंट मिला है हमें राजनगर गांधी चौक मधुबनी से अरुण गुप्ता, मौसम और शिवम गुप्ता का। और आप हैं ओखला संगम बिहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी, सत्यम और सुंदरम गुप्ता। और पटेल नगर मलोड से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जाजौरिया, गुड्डू और इनका पूरा परिवार। और आप हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। इसी गीत में शामिल करते हैं मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी और इनके सभी साथी, आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ, सारिक अली खान, कस्बा अग्रवाल, मंडी बागपत से यूपी से हैं, नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महज अबी निसार, नुजत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद, तस्लीम रजा और पप्पू भाई अंसारी, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदरकर, सदानंद कुमार, गौरव, आरब और अर्पिता, सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन एलेन, अब्दी, विश्वदीप एले और अशोक एले, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती चिड़िया और ओम भैया, मौला हलबैन, शिरकुट बिजनौर से आप हैं मोहम्मद बकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन रोजी, बिट्टू सादरानी, हिना कौसर, कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, इकबाल रजा, जीशान रजा, अफजल रजा, मोनिश सादिक और इनके पूरे परिवारीजन, विष्णु मिस्किन, रितिका मिस्किन, वाणी, आरब, चंद्रकला, काशीनाथ, गणेश, सोनी और आरोही और प्रियांशी का ये कमेंट हमें मिला है कहां से, दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से, सोहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात अदीब और कादिर चौधरी, नई बस्तीगंज डंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, गौना थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता और गीता हैं, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज, शबनम बानो, जिल रोड बक्सर से राजेश डी अंसारी, फातमा नाज, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा,

सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव और हर्षित शर्मा। कलमंडी खुर्द झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत। लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और नोट सिंह और शुभदीप सिंह। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। कमेंट मिला है जगदीश धाकड़, नाइमा रंजुभाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़। मालवा रेडियो श्रोता संघ हिंगड़ी आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से आप हैं। मंगल जनागल, राही रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु, डॉक्टर सुनील जनागल, चक 5 एमडी पतरोड़ा से। कमेंट करते हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना, मैंडी शर्मा और इनका पूरा परिवार। जावेद इनायत और यूसुफ इनायत लेसेस्टर इंग्लैंड से कमेंट किए हैं। आप हैं प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा, प्रथम सलूजा, A5B ब्लॉक जनकपुरी न्यू दिल्ली से। नागपुर महाराष्ट्र से कमल सानी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, रामगढ़ कैंट से निपी सानी और इनके सभी साथी। बिजनौर मुरादाबाद से राजबीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान, किशोर कुमार सांबले, रेखा सांबले, हिमांशु, अनुराग, सलोचना चारूबी और प्रणव सांबले दरबार कॉलोनी सनावत से कमेंट किए हैं। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़ और इनके सभी साथी हैं। और आप हैं कस्बा उघेती से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज, प्रिंस, प्रशांत, कार्तिक और निर्भय गुप्ता। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल, निशा और इनका पूरा परिवार। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक, श्याम कुमार, प्रमिला, चीनू, आसमा, दीपक और अनुश्री श्याम कुमार। बीट शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय ठबूल और पीबी कुल थे। जी के परमार जी हैं गांधीनगर गुजरात से और कमेंट करते हैं हमारा दरवाजा ईठासी। नबी हसन अब्बासी, शहनाज, नवेद, रसीद वारसी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी। आप हैं लसूड़िया, नरसिंहगढ़, राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। भोजपुर तगा, सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद। हमारे ये साथी हैं शाहूनगर, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी और बेबी प्रियांशी। जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि और मानवी मौर्य कटराचांद का पुराना शहर बरेली से हैं। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर हैं। उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया दिवाकर, योगिता नितिन और वंशिका दिवाकर पीपर पारापाल चुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से कमेंट करते हैं। सौगा धमतरी से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार हे, अंश कुमार चंदन। और आप हैं नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। आपका भी कमेंट मिला है। आप हैं चकरभाटा कैंप से डीआर नारवानी, रवि चांदनी, खुशी नारवानी और इनका पूरा परिवार। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य और दिनेश का कमेंट है। और आप हैं रतनमाला मौर्य, मुकेश, प्रिंस, प्रियांशी, पुष्पा, गौरव और चंद्र प्रकाश मौर्य, गली सेकलापुर मौर्य मंदिर से। और नागशुन रोड, संजय कॉलोनी, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नजीब, अब्दुल हक डावर, जियाहुल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी और उनके सभी साथी हैं। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव और इनके तमाम हमनवा, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविन्द्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा, स्वीटी छावड़ा और इनके सभी साथी। छत्रपति शिवाजीनगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन और इनके सभी साथी। जवानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति जायसवाल का कमेंट है। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयसा सबिया, अनस और रेहान भी कमेंट करते हैं। कस्बा हाफिजगंज, जिला बरेली यूपी से शकील अहमद इदरीसी और इनके तमाम हमनवा, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना और इनके सभी साथी। भिलाई छत्तीसगढ़ से आप हैं मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा और इनके सभी परिवारीजन। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना, मुन्नी कुमारी, चांदनी और नंदनी कुमारी। और हमारे ये साथी हैं कौन है, भक्कड़ पंजाब से आप हैं रियाना खान, हफीजुर रहमान खान और इनके तमाम हमनवा। और ये कमेंट हमें जिला नाभा, जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु और इनके सभी साथियों ने भेजा है। आप हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी साथी। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया निवादा, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय का कमेंट है। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन और मेगा मस्किन। रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और रिहान अंसारी आप हैं दिल्ली से रेडियो के दीवाने ग्रुप के सदस्य। गंज डंडवारा यूपी से मास्टर खिलू, परवेज बेगम, इमरान अनाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमाना अफरीदी। उच्चपट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप हैं मुकेश गोस्वामी, मधु, आशीष शिवन्या और अनु गोस्वामी। कमेंट आपका भी मिला।

है सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज से पवन गौड़, सुयश गौड़, आशीष गौड़, तन्मय और अपूर्व। सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, गर्वी और हिमांश। धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे। राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आजना और मोहम्मद कैफ अंसारी जैन मंदिर वाली गली कुराबली से कमेंट करते हैं। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक, आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। मोहम्मद हफीजुर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक, अली रहमान और उनके तमाम साथी हैं। ईदगाह जुनूबी जिला भाखर पंजाब से हीरावाली फाजिलका पंजाब से आप हैं सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा और आप हैं पंचकूला। ये तो कमेंट शामिल हो चुका है, बार बार कमेंट न करें बड़ी मेहरबानी होगी। गांव कुमार रीड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सर नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब हैं। बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान का कमेंट है। सदर बाजार कोराबली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा का कमेंट मिला है। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, मजनू कठीला से हमारे ये सभी साथी थे, कमल बालूजा, मधु और सागर बालूजा। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू हैं। कमेंट करते हैं बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया नारंग। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। ये कमेंट हमें मिला है बसमत रोड परभणी महाराष्ट्र से रणजीत कारेगांवकर, कंचन कारेगांवकर, सृष्टि और समरजीत कारेगांवकर का। आप हैं नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा और इनके सभी साथी। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से आप हैं रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, सविता माखीजा और इनका पूरा परिवार। चमनपुरा उदयपुर से नजीब खान, सबीहा खान, जब्बार मोहम्मद, फरीदाबानू, अशरफ खान, रईसा, मंजू, निम्मी और इनका पूरा परिवार। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अलतमश खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री, रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर हैं। तो आप सबके नाम करते हैं फिल्म संघर्ष से ये बेहतरीन ट्रैक, लीजिए, सुनिए और सुनते रहिए आपकी पसंद।

0: कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले
1: जरा।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: इस कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रोग्राम वही है आपकी पसंद, अगला गाना कल की आवाज फिल्म से। कुमार सानू और आशा भोसले की आवाजें समीर के बोलों को संगीतबद्ध किया है नदीम शवन ने, और सुनना चाहते हैं आप सब ग्राम बमना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। अब शामिल करते हैं आप सबको धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश, अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह, कृष्ण सिंह और वेदा सिंह। ये कमेंट हमें मिला है मोहम्मद फैज मोहम्मद, अर्श तालिब हुसैन, सखावत हुसैन, आसिफ मलिक, मोहम्मद इस्माइल, ग्राम एचोरा मिलक रामपुर से, और कमेंट करते हैं गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे, मारोतरा पंचाल और इनके सभी साथी, कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा अभय गुजराती और इनका पूरा परिवार, और आप हैं राजकोट गुजरात से, कौन हैं? रश्मि पांडे जी, आपने नाम तो लिखा ही नहीं है, चलिए खैर कोई बात नहीं, आपकी ID से हमने पढ़ दिया। और गांव खोखरा वाले श्रीगंगानगर से आप विनोद वारासा, विशाल विकास रोशनी और शगुन वारासा का कमेंट है, नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी और इनका पूरा परिवार, महोबा बुंदेलखंड से, और आकूर से विनायक बिंडे, मंगला बिंडे, विजय शुभम बिंडे, पवन जुरिया के संजीव डाविराव हैं, और गड़ी कोटा पंचकूला हरियाणा से सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, अक्रम शानिया, इलियास मुशाहिद, अक्सा आयशा उमर और समीना अंसारी का भी कमेंट हमें मिला है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं, और नलेश्वर नगर नरविल महाराष्ट्र से PS नावकर, निर्मला और विशाल नावकर हैं, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइड़े, आशीष मोहिरकर, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार और इनका पूरा परिवार, बठिना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, मुरादाबाद दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, बड़िंगड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का कमेंट है, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता किशुताशु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद, बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, और इसी गीत में और भी दोस्तों को साथ लेते हैं, कोशिश यह है कि कोई भी साथी छूटे ना आज के इस कार्यक्रम में। तो हमारे ये जो साथी हैं वो कौन कौन हैं, आइए आप भी तैयार हो जाइए भाई सुनने के लिए कि आप हैं बगबोड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम और इनके सभी साथी, प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पेंटर से डॉक्टर सुरेश जाधव।

गीता आरती पूजा प्रसाद जाधव सोनल बेबीसिया जाधव जालना शहर से सोमनाथ जाधव गीता ओम सुभाष चंदन जाधव एकनाथ और संगीता जाधव कमेंट करते हैं विजय महोबिया कविता महोबिया विशाल विवेक सोनू मोनू रानू ईशु बाबा अनय अनाया और पेंटर बाबू रामगंज खंडवा से आमिर हुसैन बेगम तैयब शेख फौजिया शेख आहिल हुसैन अरहान हुसैन पटियाली रोड गंज जंडवारा से और बहेड़ी से अंजुम भाई खालिदा बेगम और इनका पूरा परिवार सब्जी मंडी कस्बा उसाबा वार्ड नंबर एक जिला बदायूं से धर्मवीर कश्यप उषा ध्यानपाल संजय अनमोल अंश करिश्मा और मुस्कान कश्यप रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब और इनके सभी साथी हैं ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पखराज बड़गुजर कैलाश मिस्त्री गोवर्धन धरा फरसाराम सोलंकी श्यामलाल चौहान घनश्याम भार्गव बाबू गौरी हसन सिक्का और इनके तमाम साथी और ये जो कमेंट हमें मिला है वो हिंद राज रेडियो श्रोता संघ निवासा कुप्टी महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलघट चंद्रकला देवीदास पोपलघट और अनोखेलाल मौर्य सुंदर देवी प्रकाश रिंकी कपिल वेदराम कैलाश सुनील खुशबू आरोही और स्वाति मौर्य पुराना शहर कटरचांद खां बरेली से हैं लहूटना बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापति मुनेश देवी अर्जुन भारती अंजलि नितिन जगमोहन सुधीर नूतन भुवनेश्वरी देवी करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति सुमन देवी और इनके सभी साथी शास्त्री से बीड शहर से किशन सबकाल आशा सबकाल सोनिया सबकाल और विशाल सबकाल हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम मोहम्मद अकमल मोहम्मद अफजल नफीसा प्रवीण और इनके तमाम साथी हैं मास्टर अकील अहमद पातरकर शेरकोट बिजनौर से हैं हमें आपका कमेंट मिला है आसलगांव बाजार जलगांव जामोद बुलढाणा महाराष्ट्र से राजू माठे गजानन संजय ज्ञानेश्वर माठे प्रकाश दांड के और शेगांव से संतोष शशकाले जी गजानन सालोकर सुरेश भिजे पाटिल जी मानेवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर जी और उनके सभी साथी ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से आप हैं मोहम्मद रफीक पवार बेनजीर कौसर साकेब पवार अलमास बानो छोटू पवार मोइन शंकरलाल गंगराड़े वनीता गंगराड़े मोहम्मद हसनैन पवार और उनके सभी साथी बाजार रोड मुंगीसापुर मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब के सभी साथी मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमर निशा सबिस्ता मोहम्मद नसीब पलक लोबना और यश मंसूरी कमेंट करते हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल राजदीप राशि और शीतल राजेश आप हैं रज्जाक मोहम्मद शमीम बेगम इमरान खान इरफान खान हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से कलानौर से नरेंद्र शर्मा किरण शर्मा नितिन और मयंक शर्मा का कमेंट है और अक्षय कॉलोनी गेंदूर रोड धूलिया महाराष्ट्र से मनोहर मगर यामिनी उदयन और अर्पिता हैं रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका मन्नत गुरकीरत गुरशब्द सिंह राहुल कस्बा बराना जिला अम्बाला से सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभ चंद्र बजाज साहिल बजाज और बिट्टा बजाज बरवट बकाल बुलढाणा से नारायण हागे कमल दिव्या और जय हागे का कमेंट है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल कीतिका भानु प्रकाश और इनका पूरा परिवार पारतनाथ कुशवाहा दुदही खुशीनगर से हैं और आप हैं छत्तीसगढ़ लक्षनपुर से रामजी साहू जीवनलाल रजक निम्मी शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू और इनके सभी साथी लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा मंजू निशांत कौशिक दीपाली इवान और आर के राजा का कमेंट है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत संगीता कंवर तुषार सिंह रिंकी शेखावत और इनके सभी साथी दशरथ सागुते अनुष्का सागुते दहोतर जोड़ा अष्टी से हैं सैयद नोमान तनवीर मसरत सैयद निजामुद्दीन रामभाऊ ताबले सैयद उन्नत हमें कमेंट करते हैं अष्टी जिला मराठवाड़ा से और आप हैं सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्री रामपुर से अशोक दले सविता दले यानी के दले रोहिणी दले ऋषिकेश जीविका और सानिका दले आपका भी कमेंट मिला है वीरपुर बिलसल अली गंजेटा से विपिन कुमार साके सपना रविन्द्र राजेश रमेश चंद्र शाके राजीव प्रदीप रंजीत सिद्धार्थ सुजाता शाके संगमित्रा प्रज्ञा शाके और प्रतिज्ञा शाके हमारे ये साथी छप्पर वाली मस्जिद काजगंज से मोहम्मद जाहिद अली सैफी आबाद खान जोहन सैफी और लीबा मलिक हैं और आप हैं राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह ज्योति सिंह सुशांत चुलबुल रानी और डुग्गू बाबू कमेंट करते हैं मछली गोदाम कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह उषा सिंह ऋषभ सिंह और इनका पूरा परिवार वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी इमरान शेख रेहान शेख करूला मुरादाबाद से अयूब खान इरम गुड़िया और शोएब खान हैं और आप हैं विनेश कुमार श्रीवास्तव राग्नेश श्रीवास्तव मुस्कान गरीब भाई जंक्शन वाले और हमारे ये जो सभी श्रोता हैं बैंक सेंटर चनेटी बरेली के एंड से हैं आशु चुग अश्विनी चुग गोविंद चुग टोनी दीवान लव दीवान राघे ढींगरा राधे ढींगरा और इनका पूरा परिवार पंचकुला सेक्टर 9 से कमेंट करते हैं खेल बाजार पानीपत से आप हैं नरेश मल्होत्रा नीटू मल्होत्रा लक्ष्य मल्होत्रा नानक चंद मल्होत्रा शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का कोयल सिक्का डुगू भाविक सिक्का और इनका पूरा परिवार खरसावा झारखंड से सुक्रा नायक मंजू नायक जलेश्वर नायक गौरव नायक और इनका पूरा परिवार और आप हैं देगांव पूर्णा महाराष्ट्र से सदाशिव थोरात कविता श्रेय और बंटी थोरात चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश है आप हैं मुकेश गौतम सुनील गौतम अमन गौतम बुद्ध नगर खंडवा से नदीम भाई और बहजोई से राजू भाई उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल बागतरिया धाकड़ भोला प्रवीण रियांश और प्रतीक बागतरिया का कमेंट है मोहम्मद यासीन उंचान साइमा नवाज हसन नवाज बाबू अहद मिफरा नवाज बेबी चाहत दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से हैं
और आप हैं

पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, पुनाराम और कृष्णा देवांगन, टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका वाणी थांडी और ये कमेंट मिला है चौखड़ा धाम कॉलोनी सनावत से कृष्णपाल सिंह चौहान, तारा देवी चौहान, नवोदित वैभव पाल, ध्रुवी और प्रद्युम्न सिंह चौहान, मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन बेगम, शबनम अनवार, नाजमा बेगम, सरिता गौतम रेलवे रोड गंज डंडवारा से हैं और कमेंट करते हैं ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडा ने, हीरमन शिंडे, अर्पणा गोंडा ने, प्रणय प्रसिद्धि और इनके सभी साथी। मदार चौक उदयपुर से आप हैं नाजिम अली, वसीम अकरम, फरकान मदारी, मोहम्मद हसैफ और जैबानूर अदीफ।

0: फीस तो देखो।
1: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन।
1: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: इस कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रोग्राम वही है जिसका नाम है आपकी पसंद। हाँ सच में गाने तो कुछ ही दोस्तों की पसंद के प्ले हो पाते हैं, मगर नाम सबके शामिल होंगे, गारंटी है। चलिए अगला गाना आपको सूरज फिल्म से सुनवाते हैं। सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोलों को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने और पसंद किया है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा। अब इस गाने में आप सबको साथ लेते हैं। आप हैं मोहन सिंह रावत, ममता रावत, वान्या, इंदिरा कॉटेज, तल्ली ताल, नैनीताल से। हमारे ये साथी हैं अरुण कुमार मालवीय दर्द, सरिता मालवीय, बड़ी गेवी चौराहा वाराणसी से, और आप हैं धनौरी तेलेवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू, पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद भाई, सूफियान, अनस, आयजा, आफिया, सदफ, हसनैन, कमरुल्ला, नसीम, बेगम, आयशा और इनके पूरा परिवार, मदरसा गेट भावपूर्ण मरियाहू जौनपुर से। आप हैं इरशाद अहमद अंसारी, कामरान अरमान इरशाद, नवेद इरशाद, अजरा तबस्सुम रायपुर अनेई जिला बनारस से। आप हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन, आफिया परवीन और इनका पूरा परिवार, शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान गंजनवारा से हैं, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव हैं, और आप हैं क्योलड़िया नवाकगंज जिला बरेली से प्रेम पाल गंगवार, राजेंद्र धर्मवीर, सचिन अनुज, अनमोल कमलेश, राजू चंद्रपाल, उल्फत शर्मा, बबलू गंगवार, वेदपाल गंगवार और संजीव गंगवार, खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, ऐशी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप और इनके सभी साथी, धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता, आप हैं उगहती कस्बा बदायूं से, नई मस्जिद करेली से इंतजार अंसारी है, जनूरी, नथ्थू, नन्हेश, शाकिर, करगैना से आस मोहम्मद, हिना और इनका पूरा परिवार, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, तनवी बोत हैं, और आप हैं अडार नंदगाड़ छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा और नक्षत्रपाल यादव, खुर्रिया, स्वाजपुर, हरदोई उत्तर प्रदेश से कमेंट करते हैं, छोटी बलिया, करजत मुंबई से, अहमद भाई, दुखना रानी, सदफ, आरजू, इकबाल अहमद, जूही इकबाल, इमरान अहमद और इनके सभी साथी। और ये कमेंट मिला है प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन, युवराज साहू का, दुर्राबांदा भाटापारा से, और बुलंदशहर से उमेश कुमार गौड़ और रानी गौड़ भी कमेंट किए हैं। कमेंट करते हैं करनाल रावर से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, दीदार रेडियो श्रोता संघ दिलराम किटकासगंज से अहम असलम सैफी, जबर निशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी जाहिद और जाहिद सैफी और आबाद खान, और आप हैं पोपट राव कुल थे, हनुमंत कुल थे, प्रथमेश कुल थे, बीड शहर महाराष्ट्र से, और हमारे ये साथी छबीलपुर गुन्नौर से आप हैं हरबेश कश्यप, अर्जित, दिव्यांश कश्यप। कमेंट करते हैं नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा और इनका पूरा परिवार, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर, अबरार हुसैन, अल्ताफ हुसैन, आशिक हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई और इनके तमाम हमनवा, दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजन आयाब और लड्डू रघुवीर नगर दिल्ली से हैं, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी रघुनाथपुरा से, राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, विट्टू कुमार, और आप हैं छत्तीसगढ़ रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा और विविधा वंडलकर। कमेंट करते हैं मजुआ, गंगापुर, भोजीपुरा, बरेली से हसमुख, हसान, समसिनाया, शानूर, फलक नूर, ताज मोहम्मद, अबानूर और इनके सभी साथी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, अलीम कलीम, अजीम अदीम, अब्दुल गनी और इनके तमाम साथी, नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला खुशबू और ज्योति ठाकुर, चरादा बाजार नवापारा, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, पीतमपुरा दिल्ली से रानी गौड़, विवेक कुमार, उमेश गौड़ और इनके सभी साथी हैं गंजनवारा से। ये कमेंट हम शामिल कर चुके हैं मेरे दोस्त, बार बार वही नाम ना भेजा करें। तो चलिए आप हैं शाजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे, और ये कमेंट हमें भेजा है रामपुर रोड किला छावनी बरेली से प्रदीप कुमार पाल, नमन, पिंकी, राधा, मौसम, मोनी, विजय, सुरेंद्र कुमार चौहान, आरती मिश्रा, प्रिया सिंह और श्री राम राठौर और इनके परिवारीजन। एक नाम जो आपने भेजा है वो शामिल हो चुके हैं, बोर्ड सरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद

भूति अंशु बबली और प्रियांशु साहू। गंगा सिंह रावत जी हैं रामपुर रोड हल्द्वानी से, और ये कमेंट मिला है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, गुलवंती देवी साहू, देवेंद्र प्रताप सिंह, नेहा, मिलिंद कुमार, प्रणय, रुद्रांश प्रताप साहू और इनके साथ सभी साथी। जूनवानी स्मृति नगर दुर्ग से आप हैं सुरीत, रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र किशन, सुनीता, ऋषिवन, नीलकंठ, चंद्रहास, हीरेन्द्र, संजीवन, तिलोक कुमार साहू और इनके सभी साथी। टोडरपुर, बिसौली, बदायूं, उत्तर प्रदेश से पी एस यादव, अजय पाल सिंह यादव, पवन कुमार, प्रभात, पंकज कुमार, मुन्नी देवी, नीतू सिंह यादव और इनका पूरा परिवार। और रतलाम, मध्य प्रदेश से विक्रम मालवीय, रचना मालवीय, कमलाबाई, वनदेवी, आकाश माहेश्वरी, विनायक और इनका पूरा परिवार। शंकरपुर, उसावा, जिला बदायूं से सोमेंद्र, पुष्पेंद्र यादव, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, सुनीता, सूरज श्री यादव और इनका पूरा परिवार। और आप कौन हैं भाई? आप हैं मस्जिद गली, सिराजपुर, सुपौल। बिहार से मोहम्मद वकील अहमद, नाजनी बेगम, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद कासिफ, मोहम्मद कामरार अहमद, मोहम्मद शहबाज अहमद, नाजश प्रवीण, रूही, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद जैद और इनके सभी साथी। अहमदगढ़, मंडी, पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, जावेद अंसारी, सूरज अख्तर, जासमीन, शकीला, समा, सना, रजिया, सुल्ताना अंसारी परिवार के सभी साथी हैं। कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंगेल। धमदाग्राम सुखरी कलां से अमित, शकुन, अर्षि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल का कमेंट है। और आप हैं शेगांव, बुलढाणा, महाराष्ट्र से संतोष अस्काले, तेजस अस्काले, लोकेश अस्काले और इनके सभी साथी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल साहू, चंपा साहू। और आप हैं पहाड़गंज, मुल्तानी, ठांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। और हजारीबाग झारखंड से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास, जितेंद्र, ऋषि और राहुल। और आप हैं लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया और इनके सभी साथी। और मास्टर सुनील बाबू, शिवम सिंह, सर्वेश कश्यप, अभिमीत, भगवान देई, स्वाति सिंह, तान्या गौतम और इनके सभी साथी। बाकरगंज फरीदपुर से, और ये कमेंट मिला है जिला मुरादाबाद, ग्राम बीजना से रिजवान खान, आरिज रजा खान, फैजा, नाजिया खान और इनका पूरा परिवार। और मेहरनगर, उमरखेड़, महाराष्ट्र से अभिजीत गौहाणकर, राही, सरिता, प्रिंस, एकांश गौहाणकर, अर्जुन गौहाणकर, टुकटुक और इनका पूरा परिवार। जबलपुर, मध्य प्रदेश से माधव नामदेव, सीमा नामदेव और इनके सभी साथी हैं। जिला बरेली, ग्राम करेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, माहिनूर, समा और नसरीन अंसारी का कमेंट है। और आप हैं शिवाजी नगर, बडाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, इंदिरा ताई खोबरखेड़े, शिवसागर, छकुली ताई, स्वराज, दीपाली धांडे, तनुज, सुनैना भोंडे और इनके पूरा परिवार। और सत्येंद्र सिंह जी हैं ग्राम भिलौली, जिला कासगंज से। यहाँ तक 234 कमेंट शामिल हुए। आप सबके नाम फिल्म सूरज से ये गीत प्ले करते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में।

दोस्तों आइए अगली पेशकश फिल्म अमर अकबर एंथोनी से, और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी व साथियों की है, फरमाइश इन दोस्तों ने की है, यानी कि पसंद आप सब दोस्तों ने किया है ये पेशकश। आप पहली बार कार्यक्रम में आए हैं, कौन कौन हैं भाई आप? हैं पहली बार भेज रहे हैं आप, विलेज कच्छ गुजरात से रमेश चावड़ा, अंकित चावड़ा, सुखदेव जी चावड़ा और इनके सभी साथी हैं, और शामिल कर रहे हैं गनगोला दातागंज से इशरत खान, शायरा बेगम, रऊफ खान, साबरी बेगम, शहबाज खान, सैफ खान, ईशान और आजम और अरहान खान। ये कमेंट हमें मिला है सदवाड़ा फरुखाबाद से सलोनी चौरसिया, सुबोध सब बाबू, शिबा शिवानी और योगेंद्र नायक कासगंज से हैं, और बल्केश्वर कॉलोनी आगरा से सरिता चौरसिया, पंकज चौरसिया, वीर चौरसिया का कमेंट है, और कौन कौन है, सुजाता चौरसिया, पंकज पीहू और दिया चौरसिया नवाबगंज कानपुर से। ये कमेंट अभी अभी मिला है दीवानों रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर हनुमानगढ़ से, भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर काजल, लखवीर बड़वाल, रानो कृष्णा छिंदो, प्रवीण शीतल, नवीन रंगीला, निशान अनमोल, चटकू मटकू, आपका कमेंट अभी मिला है। तो आप हैं तेज बहादुर यादव, ममता यादव, रोनित यादव और बेबी वानिका, गांव मऊ शरके, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश से। तो इस कार्यक्रम में अमर अकबर एंथोनी फिल्म से आपके नाम ये गीत करते हैं, और अभी तो समय काफ़ी बाकी है। हमने 32 मिनट में आपके 234 कमेंट शामिल किए थे और इस समय कमेंट्स की संख्या है 244। जिन दोस्तों ने अभी तक कमेंट नहीं किए हैं तो थोड़ा जल्दी कीजिएगा, कमेंट भेज दो, कोई भी कमेंट छूटेगा ना।

जी हाँ दोस्तों, चल देंगे अब और चलते चलते कुछ और दोस्तों के कमेंट मिल चुके हैं, शामिल कर लेते हैं। आप हैं गांव बेरा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से प्रहलाद सिंह वर्मा माल।

सरस्वती वर्मा, आस्था और वैदेही वर्मा। एक और कमेंट मिला है हमें जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ तक हमने 247 कमेंट शामिल किए यानी पढ़े, फिर भी हमारी कमेंट की प्यास पूरी नहीं हुई। कई बार आपको इस बात का गिला शिकवा रहता है कि हमारा कमेंट पढ़ा नहीं, कम कमेंट शामिल हुए, लेकिन हमें इस बात का अफसोस रहता है कि आपके कमेंट उतने मिले नहीं जितने की हम तमन्ना करते हैं। खैर अब चलेंगे, आज का आपकी पसंद का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें भेज सकते हैं जीमेल के माध्यम से, आपका पत्र मिला @bareilly@gmail.com पर, या फिर आप आपका पत्र मिला कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट में कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया हमें बता सकते हैं। हम आप सबके सुख की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ आज के आपकी पसंद के इस कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए, स्वीकार कीजिए, सब प्रेम नमस्कार।

श्रोताओ, हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, न्यूज ऑन AIR ऐप और FM 100.4 MHz पर। श्रोताओ, अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन का कार्यक्रम मन की बात का प्रसारण, जिसे हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए।

0: विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शब्द कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना।

0: आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किट बैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किट बैग।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: भवन की बात। आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सबसे जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है। और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस

सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है, यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव

गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी मां को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे।

कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हर गिला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हर गिला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने यह सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को करियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनकी रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा

विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, स्त्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है,

की बात मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज, रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है, इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे। लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है, कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से

शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग

0: मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह मिलित्वा अहमत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि। 26,000 वर्षस्य अर्धवर्षं प्रायः समाप्तमेव। एतेषु षण्मासेषु वयं मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिनां नैकासाम् उपलब्धीनां चर्चां कृतवन्तः। जून मासेपि देशेन एतादृश्यः उपलब्धयः प्राप्ताः याः प्रत्येकं देशवासिनं गर्वेण पूरयन्ति। एताः सफलताः देशस्य सुरक्षया

0: श्रोताओ, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, न्यूज़ ऑन AIR FM और FM 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आपका पत्र मिला कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में आपके पत्रों के उत्तर दे रहे हैं गौरव सक्सेना और पत्रों को पढ़ रही हैं नीतू त्रिपाठी।
1: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपका पत्र मिला में, और मैं हूं आपके अपनी दोस्त नीतू, और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं गौरव सक्सेना जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्कार नीतू जी, और जी। नमस्कार सभी श्रोताओं को उनके पसंदीदा कार्यक्रम आपका पत्र मिला में। आज मुझे लग रहा है कि जिस तरह से जब आपने अनाउंसमेंट किया होगा तो श्रोताओं ने अपने रेडियो सेट्स खोलते ही उन्हें खुशी की अनुभूति हुई होगी कि एक बदले हुए साथी के साथ आज बातचीत करेंगे। खैर, अच्छा लग रहा है। लेकिन नीतू जी, एक थोड़ी सी शिकायत हमें भी है। शुरुआत में ही मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज जो है हमारे पास पत्रों की, ईमेल्स की और जो कमेंट्स हमारे फेसबुक से हमें प्राप्त होते हैं उनकी संख्या थोड़ी सी कम है। तो हम लोग अनुरोध करना चाहते हैं, आप लोगों से बार बार ये अनुरोध करते भी रहते हैं कि अपनी व्यस्तता में से थोड़ा सा समय निकाल कर अपने सुझाव, अपने विचार और अपना जो स्नेह है पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से हम तक प्रेषित करिए। हम लोग भी इंतजार करते रहते हैं।
1: जी, आपने सही कहा। उनके सुझाव, फीडबैक, जो भी कार्यक्रम को कैसे बेहतर बनाएं, आपको क्या अच्छा लगा, इससे हमें एक प्रेरणा मिलेगी प्रोग्राम्स को बेहतर बनाने में। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं।
2: बिल्कुल
1: जी। तो हमारे श्रोता जो कि फेसबुक कमेंट्स पर तो मैसेज करते ही हैं, साथ ही आपको बता दें कि मेल के थ्रू भी आप हम तक अपनी बात पहुंचाते हैं। और जो पहला मेल हमें मिला है वो है प्रवीण जी, उन्होंने लिखा है कि हम आकाशवाणी बरेली को बहुत सारा प्यार देते हैं।

0: हर प्रोग्राम में शामिल होने की कोशिश करते हैं और आपके हर सवालों के जवाब भी देते हैं, आपकी मंगाई प्रतिक्रियाओं को देते हैं। और अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं बताओ, ये आपको बताना पड़ेगा।
1: और इसके आगे और कुछ भी लिखा है,
0: और ये भी लिखा है कि फिर भी आपने आज तक हमारी पसंद का एक भी गाना नहीं सुनाया, ऐसा क्यों, कृपया बताइए। मतलब जो शिकायत है वो बहुत ज्यादा है इनकी। जी
1: शुरुआत ही नीतू जी शिकायत के साथ हुई है आज इस कार्यक्रम की। खैर प्रवीण जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद इस मेल के लिए कि आपने अपने शब्दों के माध्यम से अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज कराई। और बिल्कुल बिल्कुल हम यहाँ पर बैठे हुए इसीलिए बैठे हुए हैं कि आपकी शिकायतों का निराकरण करें और जो भी आपको कुछ जो बेहतर उपलब्ध हम करा सकते हैं वो उपलब्ध कराएं। जहाँ तक आपने ये बात कही है कि आप हर कार्यक्रम में शामिल होने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लेकिन जहाँ तक आपने जो एक अगली बात ये कही है कि आज तक आपकी पसंद का हमने एक भी गीत नहीं सुनाया, तो इससे तो मैं कहूंगा कि मैं इससे सीधे तौर पर इत्तेफाक तो नहीं रखता, क्योंकि होता क्या है हमारे यहाँ बहुत सारे फरमाइशी कार्यक्रम है जिसमें हमारे बहुत सारे श्रोता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उनकी फरमाइशें, शायद ही ये मुझे पहली बार ये लग रहा है कि शायद आपने बताया है कि आपका कोई गाना नहीं सुना गया, तो कई बार ये भी होता है ना कि जिस दिन आपकी कोई पसंद होती है, कोई अनुरोध होता है, कोई फरमाइश होती है सुनी जाती, तो बाई चांस कई बार हम कहीं और व्यस्त होते हैं और
0: उसकी वजह से
1: प्ले भी हो जाता है और आप सुन नहीं पाते हैं, तो ये कई बार होता है। तो हम आपसे यही एक अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी जैसे जो अगर कार्यक्रम में आप शामिल हो रहे हैं, अपनी पसंद भेज रहे हैं, फरमाइश भेज रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि उस कार्यक्रम को सुनने की भी, क्योंकि होता क्या है कई बार हम लोग सुन नहीं पाते और वो गाना छूट जाता है, निकल जाता है। दूसरी चीज मैं एक और कहना चाहूंगा, जैसे ईमेल आई है, ईमेल से हम लोगों को स्पष्ट नहीं हो पाता जो भी हमारे श्रोता है वो कहाँ से आए हैं, उनका नाम क्या है पूरी तरह से और कहाँ रहते हैं, इस तरह की चीजें। तो मैं चाहूंगा कि अगली बार से जब भी आप हम लोगों से जुड़े ईमेल के माध्यम से, तो अपने विचारों के साथ साथ अपना कुछ परिचय दे दें कि कहां रहते हैं, कहां से आप हमें लिख रहे हैं, तो हमें भी बहुत सी सहूलियत हो जाती है आपसे बातचीत करने में भी और ये समझने में भी कि हमारी आवाज कहां तक पहुंच रही है। बाकी आपने आज ईमेल लिखा है, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको और बेहतर कार्यक्रम दे पाएं, आपके जो भी अनुरोध हैं, आपकी जो भी फरमाइश हैं, आपको अगली बार निश्चित तौर पर सुनने को मिले, इसी दुआओं के साथ और इस अपेक्षा के साथ कि आप लगातार हमें खत लिखते रहेंगे, ईमेल लिखते रहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, और जैसा कि गौरव जी ने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है हम बिजी हो जाते हैं मैसेज करने के बाद और गाना प्ले हो जाता है, तो ऐसे में आपको निराश होने की जरूरत नहीं, लगातार आपके पसंद प्रोग्राम में आप अपनी फरमाइश भेजिए। इसके अलावा अनुरोध गीत जो हमारा कार्यक्रम है वो पत्रों पर आधारित है, उसमें भी आप भेज सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि समय की कमी हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट शामिल नहीं हो पाते, क्योंकि आप जैसे श्रोता हम को लगातार मैसेज करते हैं गाने की फरमाइश के लिए, तो गुजारिश है कि इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और हमें अपना मैसेज करते रहिए। लखनऊ ऐशबाग संजय नगर से एडवोकेट वारिस अली खान ने भी हमें ईमेल भेजा है और ये लिखते हैं कि आवाज की दुनिया के प्यारे से दोस्तों गौरव सक्सेना और गजेंद्र को खान परिवार का प्यार भरा सलाम। तो आपको बता दूं कि गजेंद्र जी तो आज नहीं है, उनकी जगह नीतू त्रिपाठी आपसे रूबरू हो रही है और उन तक मैसेज तो पहुंच गया होगा, और फिलहाल आप मेरी आवाज को एक्सेप्ट करिए आज के दिन। तो आगे लिखते हैं कि अब जीत निश्चित हो तो अर्जुन बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनना आसान नहीं है। काफी गहराई वाली बात है इन्होंने, और साथ ही लिखते हैं कि 14 जून का आपका पत्र मिला, इन्हें अच्छा लगा। गौरव जी ने मेल के संतोषजनक जवाब दिए। 12 जून का आपकी बात आकाशवाणी के साथ में छोटू का बचपन किसने छीन लिया भी इन्हें बहुत अच्छा लगा, विषय संवेदनशीलता और देवेंद्र रावत की प्रस्तुति जबरदस्त रही। उसी दिन देवेंद्र जी ने लकी 3 भी बहुत अच्छा प्रस्तुत किया। उनके कार्यक्रम की जो सबसे बड़ी विशेषता है, उन्होंने ये लिखा है कि श्रोताओं से विनम्र लहजे में बात करना, उनका सम्मान करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, उसके बाद बेहतरीन अंदाज में कार्यक्रम को समापन करना, ये उन्हें अच्छे से पता है। और संजय कुमार जी की भी बात लिखी उन्होंने 14 जून के कार्यक्रम की, कहते हैं कि अच्छा लेकिन नाम बोलने में गजेंद्र और देवेंद्र जी जैसा स्पीड नहीं ला सके, स्पीड की बात भी कर रहे हैं। दूसरी ओर लिखते हैं कि 14 जून का आपकी बात के साथ मन भावन मुनव्वर जहां ने पेश किया, उन्होंने पहली बार इन्हें सुना। दिलचस्प बात यह है कि मैं पहले सुना करता था कि मुनव्वर भी आरजे हैं, नाम अधूरा मालूम होने पर मैं मेल आरजे समझता था उन्हें, और 14 जून को इनकी गलतफहमी दूर हुई है। साथ ही

0: उन्होंने प्रोग्राम की काफी तारीफ की है और ये लिखा है कि रात्रि 7:31 पर प्रसारित अनुरोध गीत उन्हें बहुत अच्छा लगा। देवेंद्र जी इसे प्रस्तुत करते हैं। 21 जून की बात करते हैं, लिखते हैं कि 21 जून आपकी बात आकाशवाणी के साथ, विषय था योग, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उन्होंने सुना, उन्हें अच्छा लगा, उनके विचार भी अच्छे लगे। आकाशवाणी बरेली के श्रोता जानकार और समझदार हैं, उसी दिन का मन भावन उन्हें बहुत पसंद आया। तो यही कुछ तारीफें हैं हमारे आरजेस की जो लिखते हैं, कुल मिलाकर इन्हें अच्छा लगा प्रोग्राम।
1: बहुत बहुत शुक्रिया बारिश अली खान साहब, आपने ये मेल लिखा और अपने विचारों के माध्यम से हम तक पहुंचे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अच्छा लग रहा है हमें कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं, लेकिन अभी एक और चीज मैंने इसमें देखी कि आपने एक जगह पे कंपेयर किया है कि स्पीड को लेकर कहा है कि हमारे कुछ कंपेयर्स या जो अनाउंसर्स है उनकी स्पीड उतनी बेहतर नहीं है जिनकी किसी और की भी है। तो मैं यहाँ पर दो बातें कहना चाहूंगा, क्योंकि एक तो बात ये होती है कि हर किसी की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, और दूसरी चीज ये होती है कि हर किसी का जो काम करने का तरीका होता है वो भी अलग अलग होता है। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हमें कोई चीज नहीं पसंद है वो चीज ठीक नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही व्यक्तिगत चीज हो जाएगी अगर ऑब्जेक्टिव कि हमें ये अच्छा है ये बुरा है। क्योंकि होता है क्या, जब हम लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में आते हैं तो कला का कोई भी एक मतलब विधा हो, उस हर चीज की अपनी अपनी वैल्यू होती है। चाहे आप धीमे से अगर पढ़ रहे हैं या बहुत पढ़ रहे हैं या पॉज लेके पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं किसी भी चीज को प्रेजेंट करने के
0: हर
1: आरजेस का। क्योंकि होता है क्या कि बहुत सारे श्रोता हैं और सबका एक फैन बेस होता है। जब आप सुनते हैं ना रेडियो तो एक लोग नहीं है, लाखों लोग सुन रहे हैं, तो हर किसी की बात का ध्यान रखना पड़ता है। हर किसी को स्पीड पसंद नहीं है, हर किसी को ठहराव भी पसंद नहीं है। तो हमें भी अपने पास इस तरह के मतलब कलाकार जो भी आरजेस हैं प्रस्तोता हैं रखने पड़ते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है। और हम लोगों की कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग अधिकतम अच्छा एंटरटेनमेंट दे पाए, उनका ज्ञान वर्धन कर पाए, उनका जो भी मनोरंजन बेहतर हमारे पास उपलब्ध है उन्हें उपलब्ध करा पाए। तो इसमें ऐसी कोई भी शिकायत की बात नहीं है, ना ही ये किसी की कमी की बात है। बस एक अपनी अपनी एक शैली होती है, हर व्यक्ति बहुत सालों के बाद इसे डेवलप कर पाता है।
0: साथ ही इन्होंने 21 जून के कार्यक्रम योग के बारे में भी लिखा है कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उन्हें अच्छा लगा।
1: बिल्कुल, ये कहने वाली बात तो है ही नहीं, और इसी वजह से पूरी दुनिया में इसको इतनी मान्यता मिल रही है। और ये चीज केवल 21 जून के लिए नहीं है, बात योग की है, तो हम लोगों को हर रोज कोशिश करना चाहिए कि कुछ ना कुछ समय योग को जरूर दें, जो हमें शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रख सके और साथ साथ मानसिक रूप से भी, दोनों ही चीजों की बहुत बहुत जरूरत है। और बाकी जिस तरह से आप हमारे नियमित श्रोता है और जिस तरह से आप हमें हर बार ईमेल भेजते हैं, हमारे कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप लगातार आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। और आप सभी श्रोताओं के जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, आप सभी के फीडबैक, आपको कौन सा प्रोग्राम अच्छा लगता है ये तो आप बताते ही हैं, साथ ही जो सब्जेक्ट आपकी बात की बात इन्होंने कही थी, छोटू का बचपन किसने छीना, ये भी हमें अच्छा लगा कि आपको करंट टॉपिक्स जिंदगी से जुड़े हुए, हमारे रोजमर्रा के और हमारी भावनाओं से जुड़े हुए टॉपिक होते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक पहुंचाएं। तो इसी तरह से आप लेटर और कमेंट्स हम तक पहुंचाते रहिए। अभी आपको भी याद दिला दूं कि अभी तमाम हमारे श्रोता जो इस समय सुन रहे हैं उनकी ये भी शिकायत होगी कि हमारे पास ईमेल आईडी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लिख लीजिए, हमारे जो ईमेल आईडी है आकाशवाणी बरेली की वो है aapkapatramila.bareli@gmail.com। एक बार फिर से आपको एड्रेस बता देते हैं, ईमेल आईडी वो है aapkapatramila.bareli@gmail.com। इस पर आप अपने फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं, इसके अलावा आप चिट्ठी भी लिख सकते हैं। आपका पत्र मिला कार्यक्रम आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 243001। तो इसी तरह से आप सभी श्रोता हमसे जुड़े रहिए और हमारा जो साप्ताहिक कार्यक्रम है ना आपका पत्र मिला, वो आप सभी के कमेंट्स पर, आप सभी की चिट्ठियों पर आधारित है। और अब ये है ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी जिला रामपुर से अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश। और गौरव जी मैं चाहती हूँ आगे मैं आपको बताऊँ कि क्या लिखते हैं। इन्होंने लिखा है कि वो आकाशवाणी बरेली के प्रोग्राम सुनते हैं, अच्छे लगते हैं, आपका पत्र मिला, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, रेडियो हेल्पलाइन, किसान भाइयों का प्रोग्राम जिसमें रासायनिक खेती के बारे में उन्हें जानकारी मिलती है, ये भी काफी अच्छा लगता है, फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम और किसी विषय से जुड़ा प्रोग्राम आकाशवाणी के साथ, इस प्रोग्राम में उनकी फोन

0: कॉल्स के जरिए आप लोग, आपका साथ हमारा साथ जोड़ता है, उन्हें अच्छा लगता है। फिलहाल इन्होंने लिखा है कि उन्हें कोई शिकायत नहीं है, सभी प्रोग्राम अच्छे हैं और मोबाइल ऐप पर ये इन्हें सुनते हैं। साथ ही इन्होंने ये लिखा है कि विशेषकर आपकी पसंद जो फेसबुक कमेंट पर आधारित होता है, शामिल हुए बगैर मन नहीं मानता, चाहे जितनी भी व्यस्तता हो वो टाइम निकालते हैं और इसमें शामिल होते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी कि आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे सभी कार्यक्रमों को आप सुन रहे हैं। इस तरह से आप हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं, लगातार हमें लिखते रहिए और हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी और अब्रार हुसैन अंसारी लिखते हैं कि आपका पत्र मिला, कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी तरफ से आदाब। हमें बरेली केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। 21 तारीख को आपका पत्र मिला, कार्यक्रम गौरव जी ने और गजेंद्र जी ने बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया और अच्छा लगा। शीशपाल जी, श्रृंगार शेखर और परवेज द्वारा आपकी बात आकाशवाणी के साथ पेश किया गया, बहुत अच्छा लगा। अच्छे अच्छे विषय थे। रोचना जी का यंग बरेली कार्यक्रम उन्हें काफी पसंद आया और इस समय सभी कार्यक्रम अच्छे चल रहे हैं, ये लिखा है लाल मोहम्मद अंसारी ने।
1: नमस्कार अंसारी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद इस मेल के लिए। और अच्छा लग रहा है कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की भी, हमारी टीम की भी यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जाए उन कार्यक्रमों पर जो हमें अपने श्रोताओं तक पहुंचाने हैं, उनके ज्ञान
0: जी
1: और मनोरंजन में वृद्धि करते हुए। और जब इस तरह की कोशिशों को सराहना मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, तो हमें भी उसको लेकर अच्छा लगता है, हमारी टीम का भी मनोबल इसमें
0: बिल्कुल
1: बढ़ता है। तो यही अपेक्षा रहेगी आपसे कि जिस तरह से आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, कार्यक्रमों को सुन रहे हैं, हमें लिख भी रहे हैं, तो इसी इसी तरह से आप हमारे केंद्र से जुड़े रहिए, हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए और हमें लिखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी। तो इसी तरह आप सभी श्रोता अपने कमेंट्स हम तक पहुंचाइए, आपके फीडबैक हम सभी के लिए बेहद जरूरी हैं। रंजीत सिंह जो कि गोरखपुर से हैं, वो लिखते हैं, आकाशवाणी बरेली के सभी कार्यक्रम इनको अच्छे लगते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा, सुझाव और प्रतिक्रिया अगले पत्र में लिखेंगे, अभी ये थोड़ा व्यस्त हैं लेकिन कार्यक्रम नहीं सुन पा रहे हैं।
1: नमस्कार रंजीत जी, कोई बात नहीं अगर आप व्यस्त हैं, क्योंकि हर किसी का जीवन में बहुत सारी व्यस्तताएं रहती हैं, निजी जीवन भी कोई चीज़ होती है,
0: जी
1: मनोरंजन उसके बाद आता है। अगर आपके पास जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, व्यस्तताएं बढ़ी हैं, तो निश्चित तौर पर मनोरंजन सेकेंडरी हो जाता है। लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है कि आप इसके बावजूद अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर, कुछ पल निकालकर हमें कुछ शब्द भेज रहे हैं, और ये ईमानदारी से बता रहे हैं
0: जी
1: कि अपने व्यस्तता के चलते हम कार्यक्रमों को नहीं सुन पा रहे हैं। तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा यही अनुरोध रहता है कि अगर आप मनोरंजन के लिए कोई चुनाव चाहते हैं, तो बेहतर मनोरंजन और बेहतर ज्ञान के लिए आप हमें लगातार सुनते रहें और हमें लिखते रहे।
0: जी तो रंजीत सिंह जो कि गोरखपुर से, उन्होंने जो भी अपने सुझाव समीक्षा के बारे में बात की, आपको आपके प्रश्नों का जवाब भी मिल गया होगा। और ये हैं अर्जुन कुमार सिंह लिखते हैं, आपकी मेहनत और लगन से बनाए गए प्रोग्राम्स हमें बेहद पसंद आते हैं, प्रोग्राम पेश करने वाले उद्घोषक को नमस्कार, आपके यहाँ से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम अच्छे हैं, विशेषकर आपकी पसंद जो कि फेसबुक कमेंट पर आधारित होता है, जिसमें शामिल हुए बगैर मन नहीं मानता, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो वो टाइम निकाल हैं और शामिल होते हैं इस प्रोग्राम में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन कुमार सिंह जी, और अच्छा लगा कि आप व्यस्तता के बावजूद समय निकालकर हमारे कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ाना चाहूँगा कि हमारे श्रोता, जो बहुत सारे श्रोता हैं, हमारे बहुत
0: जी
1: सारे कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं, लगातार कार्यक्रमों में जुड़ रहे हैं, अपने जो भी सीमित समय है उसमें से समय निकाल कर हमारे साथ आते हैं। तो एक अनुरोध हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा था कि अगर आपके पास वक्त है, कुछ समय जरूर निकालिए कुछ लिखने के लिए भी, इससे हमारा भी हौसला बना रहता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है इस चीज़ से कि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं अपनी बात भी हम तक पहुंचाएं, ये हमारी
0: जी
1: अपेक्षा भी रहती है। और ये भी रहता है ना कि ये जो कार्यक्रम है, आपका पत्र मिला, ये पूरी तरह से श्रोताओं पर केंद्रित है, एक उनसे बात करने का माध्यम है, उनसे आचार विचार का जो एक है ना
0: जरिया
1: जरिया है कि बातचीत करने का,
0: जी
1: तो इससे भी कार्यक्रम में भी रोचकता आती है। जितने ज्यादा श्रोता होंगे, जितने पत्र होंगे, कार्यक्रम भी उतना ही बेहतर और रोचक बना रहेगा।
0: बिल्कुल
1: तो ये भी हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप थोड़ा सा समय निकालिए और और जो हमारे यहाँ जो धीरे धीरे धीरे धीरे जो मेल्स और पत्रों की जो संख्या है, कमेंट्स की जो संख्या है, जिस तरह से कम हो रही है, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इनमें वृद्धि हो, जिससे कि कार्यक्रम की रोचकता में भी थोड़ा सा एक और एक नया सोपान जुड़े।
0: तो इसी तरह से हमें कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपके जो सुझाव हैं वो हमारे लिए बेहद मायने

0: सकते हैं और प्रोग्राम को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। और ये है शनि बाजार कस्बा उगहती उत्तर प्रदेश से प्रभाकर गुप्ता। लिखते हैं कि आपका पत्र मिला, कार्यक्रम पेशकर्ता को सादर नमस्कार। आपको भी हमारा नमस्कार। लेकिन बहुत सारे आकाशवाणी केंद्र ये सुनते हैं, कहते हैं कि आकाशवाणी बरेली का प्रसारण इन्हें अद्भुत लगता है क्योंकि श्रोताओं की भावनाओं के अनुरूप प्रोग्राम पेश किया जाता है। खासतौर पर आकाशवाणी के 90 साल पूरा होने की खुशी में आकाशवाणी बरेली ने श्रोताओं को जो स्थान दिया वो आकाशवाणी प्रोग्राम में उन्हें काफी अद्भुत लगा।
1: नमस्कार प्रभाकर गुप्ता जी, और अच्छा लग रहा है कि आपको हमारे प्रयास भा रहे हैं, आप हमारे प्रयासों को पसंद कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने एक और बात लिखी है कि अभी हम लोगों ने आकाशवाणी ने 90 वर्ष पूर्ण किए हैं अपनी स्थापना के, तो नीतू जी ऐसा है ना कि ये 90 सालों तक जो एक यात्रा रही हमारी आकाशवाणी की, बहुत ही गरिमामयी रही है। एक लिगेसी हम लोगों ने एक फॉलो की है 90 साल तक, आज़ादी के समय से लेकर स्वतंत्र संग्राम से लेकर, अगर हम संस्कृति सभ्यता इसके संरक्षण की बात करें, मनोरंजन और ज्ञान की बात करें, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसको एक सितारों की तरह लगी हुई है आकाशवाणी की, जो उपलब्धियों की अगर हम लोग बात करते हैं। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है वो हमारे श्रोताओं का ही रहा है, क्योंकि उनके बिना आकाशवाणी जो भी एक जो माध्यम रहा है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अगर जिस तरह से हमें पिछले 90 वर्षों से हमारे श्रोताओं का साथ मिला है, उनका प्यार मिला है, उनका स्नेह मिला है, यही हम उम्मीद करते हैं कि अगले और 100 सालों तक या हमेशा आगे भी जिस तरह से अभी तक समय मिला है, इसी तरह का हमें उनके साथ जो एक जुड़ाव है वो बना रहे और आगे भी हमें उनका साथ मिलता रहे, जिससे कि ये जो है ना सफर है आकाशवाणी का, सफर एक अनंत काल तक जाए, यही हम दुआ करते हैं और श्रोताओं से यही अनुरोध भी करते हैं।
0: बिल्कुल, तो आप सभी इसी तरह से हमें लेटर्स और कॉमेंट करते रहिए ताकि हम अपने प्रोग्राम को बेहतर बनाते रहे और आपके पसंद के प्रोग्राम आप तक यूं ही पहुंचते रहे। इसके लिए आपको 100.4 FM आकाशवाणी भी सुनना होगा। और ये है अनोखे लाल मौर्य, जो कि कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 से हैं। लिखते हैं कि आपका पत्र मिला, कार्यक्रम पेश करने वालों को प्यार भरा नमस्कार। सुबह शुक्रवार आपकी पसंद कार्यक्रम गजेंद्र यादव ने पेश किया, इसमें श्रोताओं को जो गीत सुनवाए गए थे वो अच्छे थे। और इस दिन शाम को युवानी कार्यक्रम भी उन्होंने शुक्रवार को सुना, इसमें श्रोताओं की पसंद पर गीत भी सुनवाए गए थे और बहुत ही अच्छा लगा। साथ ही इन्होंने लिखा है कि ये शनिवार शाम को हेलो बरेली कार्यक्रम सुना, इसे दिन शाम को 7:31 पर अनुरोध गीत सुनवाए गए, रविवार सुबह बाल गीत सुनवाए गए थे बच्चों के, बहुत ही अच्छे भी लगे उन्हें। और इसी दिन शाम को 5:30 मनभावन कार्यक्रम भी उन्होंने सुना, जो गीत सुनवाए गए थे बहुत ही अच्छे लगे। सोमवार सुबह 8:15 पर नमस्ते बरेली कार्यक्रम सुना, जो गीत सुनवाए गए थे बहुत ही अच्छे लगे। साथ ही उन्होंने ये पूरी बात लिखी है, कटरा चांदखा मौर्य मंदिर पुराना शहर बरेली से हैं।
1: नमस्कार अनोखेलाल जी और उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद इस कमेंट्स के लिए। और अनोखेलाल जी वैसे भी हम लोगों के एक नियमित श्रोता है, और जब भी हम लोग यहाँ पर बैठते हैं तो एक खत एक मेल, कभी कभी मेल भी आता है उनका, चूंकि एक खत जो है वो उनका जरूर होता है। अच्छा लगता है कि श्रोता इतने संवेदनशीलता के साथ हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, कि जो हम लोगों के लिए निश्चित तौर पर एक हौसला बढ़ाने वाली बात है। और हम यही उम्मीद करते हैं अनोखेलाल जी से भी और बाकी श्रोताओं से भी, कि जिस तरह से अपना प्यार दे रहे हैं, जिस तरह अपना स्नेह हम लोगों के साथ बांट रहे हैं, इसी को आगे भी बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल अनोखे लाल मौर्य जी, आप रेगुलर हमारे श्रोता हैं और अलग अलग कार्यक्रमों में आपकी जो भागीदारी है वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें खत लिखने के लिए। ये है नारायण लाल साहू और लिखते हैं कि आकाशवाणी बरेली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम उन्हें बहुत ही अच्छे लगते हैं, साथ ही जो गाने हैं वो भी उन्हें पसंद आते हैं। विशेष तौर से आपके केंद्र से डॉक्टर की सलाह, मनोरंजन, ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियां भी इन्हें मिलती हैं। नियमित श्रोता नारायण लाल साहू और इनके पूरे परिवार की ओर से इन्होंने बधाई दी है आकाशवाणी परिवार को।
1: बहुत बहुत शुक्रिया नारायण लाल जी, आपको भी और आपके परिवार को भी इस कमेंट्स के लिए। और अच्छा लग रहा है कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं, यही उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमारे कार्यक्रमों से इसी तरह से जुड़े रहेंगे और हमें खत लिखते रहेंगे, मेल करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। और ये है हमारे श्रोता बीएल धाकड़, जो कि भेरूलाल वाकतरिया धाकड़ उन्हेल जिला उज्जैन एमपी से। लिखते हैं कि आपका पत्र में किसी भी कार्यक्रम की कोई प्रतिक्रिया लिखने का कोई मतलब नहीं है, मतलब शिकायत के साथ उन्होंने इस कमेंट की शुरुआत की है। लिखते हैं कि आप सिर्फ ईमेल ही ज्यादातर लेते हैं और आखिर में 2-3 कमेंट

0: पड़ते हैं, वो भी सिर्फ जान पहचान वालों के। क्या कहेंगे आप?
1: नमस्कार धाकड़ जी, और आपकी जो शिकायत है अगर हम कहें कि बेबुनियाद है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए कोई भी श्रोता अपरिचित नहीं है, तो इसमें जान पहचान वाली किसी बात का कोई सवाल ही नहीं होता। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपने सभी श्रोताओं के पत्रों को, कमेंट्स को और ईमेल्स को, जो कुछ भी हमारे पास उस दिन उपलब्ध होता है, हम शामिल करने की कोशिश करते हैं। कई बार ये जरूर हो जाता है कि हमारे पास जो संख्या है थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है मेल्स या कमेंट्स की, तो हमें ना चाहते हुए भी समय की चूंकि एक सीमा होती है, तो ना चाहते हुए भी हमें वो अगले एपिसोड के लिए रोक कर रखना पड़ता है, क्योंकि समय बहुत सीमित होता है और कई बार पत्र बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये हो सकता है कि आपने किसी खास दिन आपने पत्र या मेल किया हो या कमेंट्स किया हो और आपका शामिल ना हुआ हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने आपके पत्र को शामिल नहीं किया, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि शायद हर सप्ताह ही ये धाकड़ साहब का कोई ना कोई मेल, कोई ना कोई कमेंट्स हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं।
0: हो सकते और हैं सुना ना
1: दूसरी चीज ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे श्रोता क्या करते हैं, कई बार लिखकर भूल भी जाते हैं और ये एक तुक्के के तौर पर लिख देते हैं कि एक चलो देखते हैं कि शायद हमारा पढ़ा ही नहीं गया होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लिए हर श्रोता उतना ही सम्मानीय है जैसे कोई और श्रोता, इसमें कोई भी भेदभाव की बात नहीं। अगर आप हमें लिख रहे हैं तो हम निश्चित तौर पर पढ़ेंगे, बस ये हो सकता है कि शायद आज के जो एपिसोड है उसमें ना हो तो अगले में हो।
0: जी, और उम्मीद है कि आपका नाम तो शामिल हुआ, आपकी शिकायत ही सही, आप इस बार जरूर सुनिएगा, आपका पत्र मिला। वक्त का पता ही नहीं चलता और हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम का जो सफर है कॉमेंट्स और खतों का सिलसिला यही थमता है। श्रोताओं, आप यूं ही अपने कॉमेंट्स और चिट्ठियां हम तक पहुंचाते रहिए, और फेसबुक पेज पर भी आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं और चिट्ठी भी भेज सकते हैं। तो अब घड़ी की सुइयां हमें विदा लेने की ओर इशारा कर रही हैं, लेकिन आप यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी, आपने जवाब दिया।
1: नीतू जी, एक चीज हम और कहना चाहेंगे कि चलते चलते अपने श्रोताओं को ईमेल के बारे में, पते के बारे में कुछ बता दें तो बेहतर रहेगा।
0: बिल्कुल, तो आपको बता दें कि ईमेल के जरिए अगर आप हम तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो आप एड्रेस नोट करिए। ईमेल आईडी है आपका पत्र मिला @bareilly@gmail.com। एक बार फिर आपको एड्रेस बताते हैं, आपका पत्र मिला @bareilly@gmail.com। इसके अलावा अगर आप चिट्ठी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कार्यक्रम आपका पत्र मिला, आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 243001। और फेसबुक पेज के बारे में तो आपको पता ही है, आप भी वहां कमेंट सेक्शन में जाकर हमें अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम फिलहाल इतना ही, हम आपसे फिर रूबरू होंगे इसी प्रोग्राम में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे आपकी प्रतिक्रियाओं, आपके सुझावों और आपके शिकायतों का कार्यक्रम आपका पत्र मिला। आपके पत्रों के उत्तर दे रहे थे गौरव सक्सेना जी और पत्रों को पढ़ रही थी नीतू त्रिपाठी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, न्यूज ऑन AIR ऐप और FM 100.4 MHz पर। आइए अब सुनते हैं FM रेनबो लखनऊ के कार्यक्रम।

0: अपना नाम बताएं।
1: मेरा नाम सुशील है।
0: सुशील जी अपना सवाल पूछे प्लीज।
1: डॉक्टर साहब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मतलब हाथ पैरों में जलन होती है और पैर मतलब पंजे दर्द करते हैं।
0: उम्र कितनी होगी आपकी?
1: मेरी 28।
0: कोई और स्वास्थ्य से संबंधित समस्या तो नहीं है? कोई और दवा तो नहीं लेते आप रेगुलर बेसिस में?
1: दवा नहीं लेते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब इनका सवाल यही है कि हाथ पैरों में दर्द रहना और उसकी वजह से सबको लगता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म तो ठीक काम कर रहा है, कहीं ये भी उसी वजह से तो नहीं है?
2: नहीं, इन्होंने सवाल बहुत अच्छा किया है और इनका जो था मुख्यतः सवाल कि पैरों में जलन की महसूस फील हो रहा, और तो बेसिकली

यदि मेटाबॉलिज्म का तो खैर नहीं मानेंगे, इसमें आपके न्यूट्रिएंट्स की कमी की तरफ ज्यादा इशारा कर रहा है, क्योंकि आपने एज 26 बताई है, तो फिर भी मैं चाहूंगा कि आप अपना डायबिटीज के जरूर जांच करा लें, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा मुख्य कारण पैरों में जलन, हाथ पैरों में सुन्नपन आना हो सकता है प्राइमरी लक्षण। तो आप शुगर की जांच कराइए, और फिर भी आपको यदि शुगर नॉर्मल आती है, फिर भी आपको पैरों में झंझनाहट सुन्नपन रहता है, तो आप उसके लिए अपने बाकी टेस्ट में जैसे कि

0: अपने बाकी टेस्ट में, जैसे कि B12 की कमी की वजह से ये लक्षण बहुत ज़्यादा मरीजों में देखे जाते हैं। तो आप अपने खाने में कोशिश करिए कि B12 वाले पदार्थ को, यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं, मांसाहारी हैं, तो आप अंडा है, फिश है, चिकन है, एग है, ये ले सकते हैं। और यदि आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर वगैरह, टोफू वगैरह आप इस्तेमाल करके B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। और उसके बाद भी ना हो तो किसी चिकित्सक से संपर्क करके B12 सप्लीमेंट आप ले सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, श्रेया का सवाल है, ईमेल आया है हमारे पास लखीमपुर से। वो ये जानना चाहती हैं कि पता कैसे चले कि हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
0: नहीं, ये उनका बहुत अच्छा सवाल है। तो मेटाबॉलिज्म को चेक करने का जो बेसिक पैरामीटर है, आप अपना वजन चेक करिए, वजन के साथ आप BMI कैलकुलेट करिए। ये दोनों ठीक हैं, फिर भी आप जानना चाहते हैं तो उसके बाद अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, उसमें आप अपना फैटी लीवर देखिएगा, बाकी ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड है, इन सब के टेस्ट करा लीजिए। इससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं।
1: और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनके विषय में आपको पता ही है। अगर आपको इनमें से कोई समस्या नहीं तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म ठीक चल रहा है। डॉक्टर साहब, हमारे एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो
2: हेलो,
1: जी, नमस्कार।
2: नमस्कार, मैम अमित कुमार बात कर रहे हैं सीतापुर से। जी,
1: जी अमित जी, अपना सवाल पूछें डॉक्टर साहब से।
2: हमारी वाइफ को जो है BP लो की समस्या हो जाती है, वो प्रेग्नेंट है, तो इस संबंध में यहाँ दवा चल रही है, उसके बावजूद भी BP लो हो जाता है। मैम
1: उम्र कितनी होगी उनकी?
2: 20 वर्ष है।
1: और प्रेगनेंसी उनकी कितने टाइम की है?
2: ये 7वां महीना चल रहा है, 7वां महीना चल रहा है, फर्स्ट बच्चा है।
1: जी। डॉक्टर साहब, ये तो आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि ब्लड प्रेशर बढ़ना मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ होने का एक संकेत हो सकता है। अब ये ब्लड प्रेशर का लो होना, इस विषय में आपके क्या विचार हैं?
0: नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। और जैसा कि इन्होंने पहले ही बता दिया है कि इनकी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट है और 7 महीने की प्रेगनेंसी ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये आसपास किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्थान में गायनेकोलॉजिस्ट के संपर्क में होंगे, जहाँ ये रेगुलर BP चेक करा रहे होंगे। दूसरा सवाल इनका, ये चिंता है कि BP लो है, तो BP लो में यदि आपकी बॉडी में किसी प्रकार का, आमतौर पर हम देखते हैं यदि इन्फेक्शन वगैरह हो तभी BP लो उस पेशेंट में ज्यादातर देखा जाता है, या आपके हार्ट की कोई समस्या है, तो मैं इनसे जरूर चाहूंगा कि अपने वाइफ का आप हार्ट की जांच जरूर करा लें कि कहीं उसकी वजह से तो BP लो नहीं है, शरीर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, बच्चेदानी में, पेशाब में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसकी जांच करा लें। ये सब भी ठीक रहता है, फिर भी BP लो होता है तो ये देखना होगा कि क्या इनका शुरू से ही BP लो ही चल रहा था प्रेगनेंसी से पहले भी, और इनको यदि पेशाब बराबर आ रही है, किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं हो रही है, तो लो BP भी कई मरीजों में उतना नॉर्मल मान लिया जाता है, और खास करके यदि वो महिला पतली दुबली है तो ऐसे पेशेंटों में पहले से ही उनका BP लो ही रेंज में रहेगा।
1: तो ऐसे में डॉक्टर से आप जरूर संपर्क करें। डॉक्टर साहब, एक ईमेल और है हमारे सामने, जनवेश कुमार जी का। ये लिख रहे हैं कि माता जी को थायराइड की प्रॉब्लम है, नींद कम आती, स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा है, गुस्सा आता है, क्या कारण हो सकता है और हमें कौन से डॉक्टर को ऐसे में दिखाना चाहिए, मतलब कौन से स्पेशलिस्ट से हम संपर्क करें?
0: जैसे कि माता जी इन्होंने कहा है, तो लगभग उनकी उम्र 50 के ऊपर ही होगी, तो बाकी इन्होंने जो थायराइड की भी समस्या बताई है उनको थायराइड की, तो मैं चाहूंगा कि इनको थायराइड की रेगुलर जांच कराएं, क्योंकि थायराइड की कमी की वजह से भी जो इन्होंने लक्षण बताए हैं इनके माता जी को आ रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है, और बाकी मल्टी विटामिन की कमी की वजह से भी हो सकता है। और रही बात इनका किस डॉक्टर को दिखाना है, तो मैं चाहूंगा कि किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ को ये जरूर कंसल्ट करें इनकी माता में जो आ रहे लक्षणों के लिए।
1: डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है।
3: मैं
1: हाँ जी, अल्तमश बताइए, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से।
3: मैम मेरा सवाल ये है कि मेरे पैर और हाथ पसीना आने लगता है, तो क्या करें?
1: पसीना आना, क्या ये भी मेटाबॉलिज्म के ठीक काम करने का संकेत है या फिर आम सी बात है डॉक्टर साहब?
0: नहीं, सही सवाल किया उन्होंने। पसीना आना यदि हद से ज्यादा आ रहा है, शायद इसीलिए इनकी ये समस्या भी है, क्योंकि पसीना हम सबको आता है एक पर्टिकुलर टाइम पर, हाथों में अक्सर का हम लोगों के भी सबके हाथ थोड़ी देर के लिए गीले हो जाते हैं, बट इतना नहीं आता, बट इनको ज्यादा आ रहा है तो हो सकता हो कोई जरूरी समस्या हो। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि ये अपना थायराइड लेवल की जाँच करें, कोलेस्ट्रॉल लेवल की जाँच कराएं, उनके बाद भी यदि ये नॉर्मल रहता है तो कई बार ये बीमारी में, इनको एक बीमारी भी होती है जिसमें लोगों को अक्सर कर पसीना ज्यादा ही आता है, तो ऐसे
1: जी
0: केसेस में कुछ

0: क्रीम्स हैं, कुछ ऑइंटमेंट्स हैं, कुछ पाउडर्स का ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे पहले तो ये डॉक्टर से संपर्क करें।
1: डॉक्टर साहब, एक ईमेल हम और लेंगे और उसके बाद में, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था प्रोग्राम शुरू होने से पहले, आपकी पसंद का गाना जरूर सुनाएंगे। सोनू परवाना का ईमेल है कि ज्यादा नींद आए या कम नींद आए तो इसका क्या मतलब है, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गई है हमारी सबकी लाइफ स्टाइल में, इवन छोटे छोटे बच्चे भी काफी सारे टारगेट्स को मीट करते हुए दिखाए जा रहे हैं, तो क्या मानसिक स्वास्थ्य का, तनाव का, चिंता का, नींद ना आने का भी हमारे मेटाबॉलिज्म से कोई संबंध है?
0: जी, बहुत बढ़िया सवाल किया उन्होंने, और डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म, जैसा कि हमारा माइंड बॉडी कनेक्शन जिसको कहते हैं, यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म सही रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि जब हम मानसिक रूप से शांत होंगे, हम प्रॉपर टाइम पर नींद लेंगे, कम से कम 6 या 8 घंटे की नींद लेंगे, तो हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन, जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं या एड्रेनलिन कहते हैं, इनकी मात्रा बॉडी में जो तय समय है या जो इसका रेट है या उस रेट से नहीं आएगा, ज्यादा सीक्रेशन नहीं होगा। क्योंकि जब कॉर्टिसोल की मात्रा बॉडी में ज्यादा होती है तो हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड पे आ जाती है, बॉडी बचाव की मुद्रा में करने लगती है, तो इसमें फिर ग्लूकोज इन सब की समस्या से होकर के बॉडी उसको स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। और रही बात इनका जो सवाल था कि ज्यादा नींद आना या कम नींद आना, जी बिल्कुल, ज्यादा नींद अक्सर कर बेसिकली जो हम लोगों को एक्टिविटी रखने के, थायराइड हार्मोन बहुत बड़ा इस्तेमाल करता है हमारे मेटाबॉलिज्म में, तो मैं चाहूंगा कि ये अपना थायराइड की जांच जरूर कराएं कि इनको नींद ज्यादा क्यों आ रही है। कम नींद के लिए मैं चाहूंगा कि इनके मोबाइल का, टीवी का, इनका स्क्रीन टाइम ये कम करें और एक तय समय बनाएं कि मुझे इतने बजे बिस्तर पर सोना ही है। शुरुआत में दिक्कत होगी, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी।
1: आज का वक्त ही ऐसा है डॉक्टर साहब कि क्या बोला जाए, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए हम सभी अवेयर हैं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी रीजन से हम उन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, और एज अ रिजल्ट इतनी सारी समस्याएं, घर घर में फैटी लीवर, घर घर में हाइपरटेंशन, हृदय से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, बढ़ा हुआ या घटा हुआ वजन या स्ट्रेस, इसी विषय में हम लगातार बात कर रहे हैं। अभी 12:35 और 9 सेकंड्स हुए हैं, अभी भी हमारे पास काफी वक्त है। हम चाहेंगे कि इस विषय में आप और प्रकाश डालें और मेटाबॉलिज्म को हम कैसे दुरुस्त करें, या लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई डिजीजेज हैं तो उनको हम किस तरह से क्योर करें, इस विषय में भी जानना चाहेंगे कि आपके क्या विचार हैं। और दोस्तों, आपके पास अभी बहुत वक्त है। हमने खास तौर पर आज बुलाया है हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल को, जो कि हैं जाने माने फिजिशियन, और आज ये डायरेक्टली आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, आपकी शंकाओं के समाधान कर रहे हैं। अब डॉक्टर साहब, आप तो हमारी शंकाओं के समाधान कर ही रहे हैं, तो ऐसे में हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि आपकी पसंद का ये खूबसूरत सॉन्ग प्ले कर दिया जाए। ये खूबसूरत सॉन्ग सुनेंगे और उसके बाद फिर वापस आएंगे प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस में।
2: जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल, @ हरदोई रोड, दुबग्गा।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
4: चरक हॉस्पिटल दुबग्गा हरदोई रोड लखनऊ। कॉल 666-444।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: 12:40 और ठीक 36 सेकंड हो गए। एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस में। और आज हेल्थ एंड फिटनेस में हम बात करें लाइफस्टाइल एंड मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं की। इसी विषय में बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है जाने माने फिजिशियन डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल को, जो कि आपके सवालों के सीधे जवाब दे रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है, चलिए हम डायरेक्टली उनसे बात करते हैं। हेलो।
7: हाँ मैम जी, नमस्ते।
6: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
7: अजय तिवारी बोल रहे हैं, ग्राम दहलिया, जिला सीतापुर से।
6: जी तिवारी जी, अपना सवाल पूछिए।
7: मैम हमारी बॉडी से पसीना नहीं आता है।
6: अच्छा, पसीना आता ही नहीं है, कितनी भी गर्मी क्यों ना हो।
7: जितनी भी मैडम गर्मी हो, कभी पसीना ही नहीं आता है। ठंडियों में बहुत ठंडी लगती है, गर्मियों में इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी की बर्दाश्त ही नहीं होता।
6: आपकी उम्र कितनी होगी?
7: हमारी मैम उम्र 42 है।
6: और किसी तरह का मेडिकेशन तो नहीं चल रहा है, कोई दवा तो नहीं रेगुलर लेते हैं आप?
7: नहीं मैम, दवाई किसी प्रकार की नहीं लेते। हमारे पिताजी थे, उनको भी यही दिक्कत थी।
6: जी जी।
7: और उसके बाद क्या होता है, कपड़े गीले करके हम ओढ़ लेते हैं, तब ठंडी तब बचाव कर पाते हैं।
6: जी जी, डॉक्टर साहब इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
8: नहीं, बहुत ही कम देखने को मिलती है। जो इन्होंने बताया है कि पसीना इनको आता ही नहीं है, चाहे कितनी भी गर्मी में रहें, और ठंड में इनको बहुत ठंड लगती है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि ये अपने किसी भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को या किसी डॉक्टर को मिलकर अपना थायराइड की जांच कराएं और जुड़े हुए जितने भी हार्मोनल इश्यूज हैं उनकी जांच कराएं, क्योंकि यदि पसीना नहीं आ रहा है तो ये भी एक समस्या हो सकती है जब इनको जरा भी नहीं आ रहा है। क्योंकि पसीना हमारी बॉडी में एक तरीके का कूलिंग मैकेनिज्म का काम करता है। जब आपको ज्यादा गर्मी में पसीना होता है तो बॉडी का बेसिकली ये डिफेंस मैकेनिज्म आपको बचाता है वो उस चीज से। पर जैसा इन्होंने बताया भी था कि इनको गीला कपड़ा रखना पड़ता है, तब जाकर के उनको गर्मी से राहत मिलती है। तो मैं चाहूंगा कि बहुत जल्द ही किसी भी डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। जैसा कि इन्होंने कहा कि इनके पिताजी को भी ये बीमारी थी, तो मैं चाहूंगा कि किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी समस्या का निवारण करवाइए।
6: और समस्या का निवारण बिल्कुल हो जाएगा, बस सही समय पर

0: सही सलाह की जरूरत है। और दोस्तों, जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ कि मेडिकल साइंस की फील्ड में लगातार R&D हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो अपनी समस्या के संग जीना और इसे ये सोचना कि चलो कोई बात नहीं और फिर तकलीफ को लगातार बर्दाश्त करते रहना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। समस्या को समझिए, विशेषज्ञ से बात करिए और उसका समाधान पाने की कोशिश जरूर करिए। लेट्स सी इस वक्त हमारे साथ कौन फोन लाइन पर है। हेलो,
1: नमस्कार ज्योति मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं ग्राम चौहजर ग्राम पंचायत चिकन पोस्ट रहमाबाद तहसील मलियाबाद जिला लखनऊ से विमल ठाकुर बात कर रहा हूँ।
0: जी ठाकुर साहब, बताइए अपना सवाल।
1: अरे मैम, मैं ये कहता हूँ कि हमारा ये सवाल है कि हमारे पेट में दर्द रहती है, खाना खाता हूँ तब भी दर्द है, नहीं खाता हूँ तब भी दर्द रहती, तो कई बार लैट्रिन जाना पड़ता है।
0: और ये समस्या है कब से आपको?
1: अरे ये समस्या कम से कम 5-6 साल हो रहे हैं।
0: और उम्र कितनी है आपकी?
1: इसमें उम्र हमारी 29 है।
0: 29 साल की उम्र और 5-6 साल से ऑलरेडी इनको इतनी समस्या है डॉक्टर साहब, पेट से रिलेटेड।
2: जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको ये समस्या पिछले 5 साल से, और ये खाना खाते हैं तब भी दर्द होता है, नहीं खाते हैं तब भी दर्द होता है, और बार बार इनको लैट्रिन जाना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि अपनी बॉडी का फुल जांच कराएं, जिसमें अल्ट्रासाउंड शामिल है, लिवर की जांच है, और चूंकि ये इस एरिया में रह रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि अपने टाइफाइड की भी जांच कराएं। ये सभी भी पैरामीटर यदि ठीक आते हैं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये गैस्ट्रो के डॉक्टर से मिलके अपनी आगे की जांच कराएं, जिसमें दूरबीन द्वारा इनके पेट की जांच की जा सके और लैट्रिन के रास्ते की, कि कहीं कोई वहां कोई ऐसी वजह तो नहीं है जिसकी वजह से इनको इस तरीके के लक्षणों से जूझना पड़ रहा है।
0: तो जल्द से जल्द आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए। 12:44 हो चुके हैं डॉक्टर साहब, एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक हम लेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले कॉलर से।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
0: 12:45:27 आप हैं हेल्थ एंड फिटनेस में, और हेल्थ एंड फिटनेस में आज हम बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल एंड मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। और इस विषय में बात करने के लिए हमने खास तौर पर इनवाइट किया है हमारे स्टूडियोज में जाने माने फिजिशियन डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल को। तो लगातार आपके फोन कॉल्स मिल रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं और डॉक्टर साहब से आपकी बातचीत हो रही है। अगर आपका कोई सवाल है और आपने अभी तक हमसे कनेक्ट नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बिल्कुल इनकी तरह। हेलो जी, नमस्कार।
5: नमस्कार, बहुत सहयोगी दिनेश, आपको नमस्कार।
0: जी
5: जी मैम, हम ये कहना चाहेंगे, हम जगमोहन बात कर रहे हैं।
0: जी
5: हम जिला बहराइच से बोल रहे हैं। ये हम कहना चाहेंगे कि जैसे ज्यादातर थकान महसूस हो चलने से, तो इसका कारण क्या हो सकता है? जैसे ज्यादा चले तो ज्यादा महसूस हो तो कोई दिक्कत नहीं है।
0: जी डॉक्टर साहब, आपकी उम्र के विषय में जानना चाहते हैं, कितनी उम्र है आपकी, या कोई मेडिकेशन चल रहा है, कोई बीमारी का इलाज चल रहा है लगातार?
5: जी जी मैं 18 वर्ष का हूँ।
0: ओके।
5: और हड्डियों में जैसे चटपट की आवाज आ रही है।
0: ओहो अच्छा, और किसी तरह की कोई दवा तो नहीं आप रेगुलर लेते हैं?
5: जी नहीं मैम, दवा नहीं लेते हैं।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके सवाल का जवाब फॉर श्योर देंगे।
2: जैसा कि इनका सवाल है कि इनके हड्डियों से आवाज आती है, थकान रहती है, सांस फूल जाती है, और इनकी उम्र महज 18 साल है, तो जहां तक इनके लक्षणों से लग रहा है कि इनको न्यूट्रिएंट्स की कमी ज्यादा है बजाय इसके कोई बीमारी के, तो मैं चाहूंगा कि बॉडी की रूटीन चेकअप कराएं, जिसमें कि कैल्शियम जरूर शामिल हो, विटामिन B12 की जांच जरूर कराएं, विटामिन डी की जरूर जांच कराएं। ये सब की जांच कराने के लिए नजदीकी डॉक्टर से संपर्क जरूर करें।
0: डॉक्टर साहब, एक ईमेल हमारे पास और आया है और इस ईमेल में श्रद्धा जानना चाहती है कि क्या फैटी लिवर भी रिलेटेड है मेटाबॉलिज्म या लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई समस्याओं से, और क्या ये सिर्फ अल्कोहल का लगातार सेवन करने वालों को ही होता है या फिर किसी को भी हो सकता है। इनके सवाल के बारे में हम फॉर श्योर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा लेकिन बेहद जरूरी कमर्शियल ब्रेक।
4: अपने बच्चे की

0: सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
2: तो डॉक्टर साहब, वो सवाल जो मैंने आपसे ब्रेक पर जाने से पहले पूछा था, क्या फैटी लिवर भी किसी तरह रिलेटेड है मेटाबॉलिज्म से?
3: जी, बहुत जरूरी सवाल है, और ये हमारे आज की लोगों में ये भ्रम भी है कि क्या फैटी लिवर सिर्फ अल्कोहल पीने वालों या शराब पीने वालों को ही होता है, या सिर्फ उन्हीं को होता है जो लोग ज्यादा भागदौड़ नहीं करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का हमारे फैटी लिवर से डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि यदि हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा तो हमारा शरीर हमारे ग्लूकोज को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा, मतलब मांसपेशियों में उसका सबसे ज्यादा जरूरी होती है, तो वहां पर वो भेज पाएगा। यदि आपका मेटाबॉलिज्म खराब है तो वही ग्लूकोज को हमारा शरीर फैट के रूप में तब्दील करके हमारे बॉडी के अंगों में जमा कर देगा, जिसमें लिवर, पेनक्रियास, आंतें जैसे जरूरी अंग है, जहां पर फैट के फॉर्म में वो डिपॉजिट्स हो जाते हैं, जो कि आपको आगे चल के डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक बीमारियां, क्योंकि यही फैट कभी कभी हमारी धमनियों और कोशिकाओं में भी जमा होने लगता है, जिससे कि हमें आने वाली बीमारियां बहुत जल्दी आ जाती हैं।
2: तो फैटी लिवर भी हो सकता है लाइफस्टाइल की वजह से, मेटाबॉलिज्म ठीक काम ना करने की वजह से। तो समस्याओं के बारे में हम लगातार बात करें, डॉक्टर साहब हमें आगे समाधान भी देंगे कि हम क्या करें जिससे कि मेटाबॉलिज्म या फिर लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीजेस से फ्री हो करके, इन बीमारियों से मुक्त हो करके हम एक स्वस्थ जीवन को जी सके। लेकिन फिलहाल हमारे साथ कोई फोन लाइन पर है। हेलो।
4: हेलो
2: जी, नमस्कार।
4: नमस्कार, संजय तिवारी राम सुनेगढ़ जिलोना से बोल रहा
2: हूँ। हाँ जी संजय जी, बताइए।
4: मैम, हमारे शरीर में अचानक दर्द होता है, हाथ में खत्म, पैर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, फिर खत्म हो जाता है, उसके जगह पे नहीं रहता, ये हल्का हुआ करता है। मैम, ये क्या दिक्कत है हमारे?
2: अच्छा, अक्सर ही दर्द रहता है, ऐसा नहीं है कि बहुत काम आपने कर लिया या बहुत चल लिए उस वजह से हो रहा है?
4: वैसे नहीं, अचानक दर्द होता है, खत्म हो जाता है, पैर में दर्द होता है, खत्म, पीठ में कभी दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, तुरंत खत्म हो जाता है, या क्या लक्षण है?
2: अपनी एज भी बता दीजिए आप संजय जी।
4: 48
2: ईयर्स की एज, बॉडी में यहाँ वहाँ पर पेन रहना, हाथ पैर बैक, डॉक्टर साहब बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है ये।
3: नहीं, इनकी उम्र को देखते हुए, बाकी इन्होंने बीमारियों के बारे में तो नहीं बताया, किसी कोई दवा वगैरह ये ले रहे हैं पहले से या नहीं ले रहे हैं, बट फिर भी आजकल हम देख रहे हैं कि शरीर में दर्द एक आम समस्या हो गई है
2: जी।
3: बट इसके लिए कई सारे फैक्टर्स जरूरी हैं, जिसमें हमारे पोषक तत्वों की कमी का होना बहुत बड़ा रीजन है। आमतौर पर भारतीय समुदाय के लोगों में, इंडियंस में देखा गया है कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा बहुत ज्यादा होती है और प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, और खास करके फल वगैरह हैं जितने भी हैं, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हमारे यहाँ शरीर में जितनी भी मांसपेशियां होती हैं उनमें ज्यादा पाई जाती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। फिर भी यदि इनको कोई समस्या है तो नजदीकी फिजिशियन से मिलकर के अपने लिए जरूरी जांचें कराएं, जिससे कि किसी और किसी बीमारी का संकेत तो नहीं है, जिससे पता लग सके कि इनके पूरे शरीर में, चाहे वो काम करें या ना करें, हर वक्त दर्द क्यों रहता है।
2: मतलब हर वक्त दर्द रहना नॉर्मल नहीं है
3: जी, बिल्कुल नहीं,
2: और उम्र के साथ भी दर्द होना कोई बहुत नॉर्मल नहीं है, इसका इलाज किया ही जाना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं और ईमेल्स भी ढेर सारे हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो चला है।
5: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
6: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
5: चरक हॉस्पिटल, एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: 12:52 और ठीक 17 सेकंड्स, आप हैं हेल्थ एंड फिटनेस में, और हेल्थ एंड फिटनेस में आज खास तौर पर हमने इनवाइट किया है डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल को, जो कि लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई खास हेल्थ प्रॉब्लम्स के विषय में आपसे बात कर रहे हैं। आप डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मिलाकर 2238852 या फिर 2238845, या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com। मैं हूं ज्योति और हम मिले हैं FM रेनबो पर। सो लेट अस सी, इस वक्त हमारे साथ

0: तो फोन लाइन पर कौन है? हेलो
1: हेलो,
0: जी,
1: गुड
0: नमस्कार।
1: आफ्टरनून मैम,
0: गुड
1: गुड आफ्टरनून
0: आफ्टरनून।
1: मैम एंड गुड आफ्टरनून सर. मेरा नाम श्रेया है, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ और मेरी एज 24 ईयर्स है. मेरा सवाल ये है कि मेरे पेट के निचले हिस्से में तनाव सा रहता है और स्पेशली जब मैं बाइक से जाती हूँ तो झटके लगते हैं, तो मेरे पेट में हल्का सा दर्द सा उठता है और लगातार तनाव नहीं रहता है, थोड़े टाइम के लिए सही भी हो जाता है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ ये तनाव है क्यों.
0: श्रेया जी, आप कोई मेडिकेशन तो किसी मेडिकेशन पर तो नहीं है? कोई दवा तो नहीं लेती रेगुलर?
1: नहीं नहीं मैम, और मेरा वेट 48 kg है, हाइट 160 cm के अराउंड है और मेरा BMI 18.7 है.
0: काफी अवेयर हमारी ये श्रोता हैं, डॉक्टर साहब सारी डिटेल्स इनके पास हैं। श्रेया जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे।
2: जी, श्रेया जी का जो मेन सवाल था वो यही था कि ये जब बाइक वगैरह पे जाती है तो पेट के निचले हिस्से में अक्सर इनको दर्द रहता है। तो मेरी पहली सलाह तो यही रहेगी कि अपना पेट का अल्ट्रासाउंड ये जरूर करा लें। दूसरा, अक्सर कर महिलाओं में जो कि देखा गया है कि फिजिकली एक्टिव उतना नहीं होती हैं, तो पेट की जो मांसपेशियों की कमी की वजह से, कमजोरी की वजह से, उनमें थोड़ा भी दबाव जब पड़ता है तो उनमें खिंचाव की वजह से उनको दर्द होने लगता है। तो मैं चाहूंगा कि पेट का अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, साथ ही साथ अपनी पेट की जो ऊपरी मांसपेशियां हैं उनका भी अल्ट्रासाउंड कराएं, यदि उनमें कोई कमजोरी है या नहीं उसका पता लगाएं। यदि नहीं भी है तो फिर भी मैं चाहूंगा कि किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके जितनी भी एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करें, ताकि आने वाले वक्त में प्रेगनेंसी या उसके बाद इनको और ये समस्या ना बढ़ी हो इनके लिए।
0: डॉक्टर साहब, अंजू का ईमेल आया है, रादर ईमेल्स आए हैं। अनीता चौहान अंजू ये जानना चाहती हैं, वेट लॉस से जुड़े हुए इनके सवाल हैं कि क्या किया जाए जिससे कि वेट लॉस हो जाए, जो कि बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई आज। जब हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे तो छोटे छोटे बच्चों में भी देखा जाता है कि वो बड़े ओबीज हो रहे हैं, ओवर वेट हो रहे हैं। तो क्या हम अपने मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करके, ठीक करके इस प्रॉब्लम से भी हम डील कर सकते हैं?
2: बहुत सही सवाल है और एक कई लोगों का सवाल है कि हम मेटाबॉलिज्म या बेसिकली हम अपना वजन को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि वजन एक बहुत बड़ी अब बीमारी के रूप में उभर के आ रही है। क्योंकि वजन होगा तो आपको आने वाले वक्त में बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, फैटी लीवर है, इसकी समस्या ज्यादा हो जाएगी। और चूंकि महिलाएं हैं तो पीसीओडी की भी समस्या इनमें जल्दी आ सकती है उम्र से पहले।
0: जी
2: वजन कम करने की जो बात कही इन्होंने, तो उसमें बहुत बड़ा फैक्टर हमारे दिनचर्या का है। स्ट्रेस लेवल कितना है, हम किस वक्त सो रहे हैं, कितने घंटे सो रहे हैं, हम कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और जो खा रहे हैं उसमें हमारे प्रोटीन की मात्रा कितनी है, फैट की मात्रा कितनी है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है। चूंकि हम इंडियंस हैं तो हमारे यहाँ दाल चावल खाने का एक अभिन्न अंग माना जाता है। तो यदि ये सच में वजन लूज करना चाहती तो मैं चाहूंगा कि ये प्रोटीन पे ज्यादा फोकस करें रेदर देन कार्बोहाइड्रेट में। तो हम लोग कहते भी मेडिकल साइंस में कि इंडियंस को हाई प्रोटीन, हाई फाइबर और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगी तो इनका वजन उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा। रही बात कम करने के लिए, तो ये एक्सरसाइज ज्वाइन कर सकती हैं, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम बनाएं कि मुझे उतने बजे सोना है और 8 घंटे के पर्याप्त नींद लें। क्योंकि जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस कम होगा तो जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स हैं और जो बाकी हार्मोन्स हमारी बॉडी को जो नॉर्मलाइज रखने के लिए, वो पर्याप्त मात्रा में बॉडी में काम कर पाएंगे, रिलीज होंगे। तो मैं तो चाहूंगा कि अपनी दिनचर्या में बेसिकली ये उसमें बदलाव लाएं और अपने खाने से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करें।
0: तो सीधी सी बात है कि अगर दिनचर्या ठीक होगी तो मेटाबॉलिज्म बेटर हो ही जाएगा, डॉक्टर साहब के कहने का ये मतलब है। डॉक्टर साहब, आजकल इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड, कई चीज़ों में तो हम वाकई कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है हम उनको किस तरह से मैनेज करें कि मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारी होने ही ना पाए, और अगर हो गई हैं तो वो अंडर कंट्रोल रहे, प्लीज हमारे लिसनर्स को आप गाइड करें।
2: नहीं, बहुत अच्छा सवाल था पुराना वाला, उसी में ही इसका आधा जवाब छुपा हुआ है कि आप हेल्दी डाइट लें, सिर्फ डाइट ना लें, पेट को सिर्फ कोई डब्बा ना समझे कि हमें सिर्फ भरना है। आप ये भी तय करें कि जो हम खा रहे हैं उसमें क्या क्या है। तो जैसे ही मैंने कहा कि आप कार्बोहाइड्रेट की संख्या कम रखिए, फाइबर की डाइट रखिए, सलाद वगैरह लीजिए, आप प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा लीजिए, नींद पर्याप्त लीजिए, स्ट्रेस के लिए आप मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम करिएगा, और यदि आप एक्सरसाइज या जिम नहीं भी जा सकती हैं तो आप डेली कम से कम 30 मिनट तेज जरूर चलिए, ताकि ब्रिस्क वॉक बहुत अच्छा एक रेगुलर एक्सरसाइज का माध्यम हो सकता है। और दूसरी चीज कि आप दिनचर्या के कामों में भी पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है जितना भी लोग हैं अपने जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी के लिए भी लोग घरों में काम के लिए बाइयां इन सब के लिए लगा लेते हैं और

0: फिर खुद के लिए वो जिम जाते हैं वजन कम करने के लिए
1: जी।
0: तो मेरी पहली सलाह तो ये रहे कि आप अपने पहले खुद के काम तो स्वयं सारे करिए, उसके बाद यदि आपको वजन नहीं आ रहा है या आपको लगता है तब आप जिम जाइए। होता ये कि जब जिम जाते हैं जब आदमी तो वहां पर फिर वो एक्सेसिव वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी कैलोरी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर वो थोड़ा सा भी खाएंगे तो शरीर उसको एकदम स्टोर के फॉर्म में या वहां पर तुरंत लग जाएगा शरीर को। तो आप दिनचर्या में परिवर्तन लाइए, नींद पर्याप्त लीजिए, पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए और पर्टिकुलर टाइम पे सोना स्टार्ट करिए।
1: पर्टिकुलर टाइम पे सोना ये बहुत जरूरी है, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि कहते हैं कि बॉडी रात में खुद को हील भी करती है। डॉक्टर साहब, आज की चर्चा से एक बात बिल्कुल क्लियर हुई कि बीमारियां अचानक नहीं आती हैं, वो दरअसल हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में चुपचाप पनप जाती हैं। हमारी लाइफस्टाइल का जब हम ध्यान नहीं रखते तो हमारी सेहत ऑटोमेटिकली अफेक्टेड हो जाती है। तो एक छोटा सा विचार शेयर करना चाहूंगी हमारे सुनने वालों से कि टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज द ओनली प्लेस You have to live। और ये मैं नहीं कह रही, ये जिम रॉन ने बोला है। यही शरीर है, इसी के साथ पूरी जिंदगी बितानी है, तो इसका अपना ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य केवल रोगों की अनुपस्थिति ही नहीं है बल्कि ऊर्जा, संतुलन और जीवन के प्रति उत्साह का नाम है। डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल जी, आज आपने इतनी सरल और सहज भाषा में हमारे श्रोताओं को इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया आकाशवाणी लखनऊ से। मार्गदर्शन सुश्री सुमोना एस पांडे जी का, जो कि हैं हमारी कार्यक्रम प्रमुख। प्रोड्यूसर हैं श्री कुंवर बहादुर सिंह जी और विशेष सहयोग विनय का रहा। अगले रविवार फिर मुलाकात होगी हेल्थ एंड फिटनेस के एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक चलते रहिए, संतुलित रहिए और तनाव कम करिए, भरपूर नींद लीजिए, अपने शरीर को वही सम्मान दीजिए जो कि आप अपने जीवन की सबसे मूल्यवान चीज को देते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: नमस्कार।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे एफएम रेनबो के कार्यक्रम हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से न्यूज ऑन एआईआर ऐप और एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं अनुरोध गीत।

नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका आज के अनुरोध गीत में। और आज आपके ढेरों पत्रों के साथ हम हाजिर हो चुके हैं, तो आप भी अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। इतना ज्यादा भी ना कि पड़ोसियों को परेशानी होने लगे। और अपने ईयरफोन के माध्यम से अगर आप सुन रहे हैं तो इतना भी ज्यादा वॉल्यूम मत रखिए कि मोबाइल को यह कहना पड़े कि इससे ज्यादा तेज आवाज में सुनना आपके कानों के लिए घातक हो सकता है। वैसे घातक तो एक फिल्म भी थी। खैर, कोई बात नहीं, हम तैयार हो चुके हैं आज का संडे सुपर अनुरोध गीत लेकर। और तैयार हो जाइए आप भी। कार्यक्रम का आगाज करते हैं शफ़त फिल्म की इस पेशकश के साथ, जिसे आवाजें दी हैं अल्ताफ राजा और साथियों ने। समीर के बोल हैं, आनंद मिलिंद का म्यूजिक डायरेक्शन। और आप सबके नाम पाकीजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, रमेश गौड़, बेबी मंतशा, मोहम्मद शादाब खत्री और इनके तमाम हमनवा हैं।

आप हैं कनेरा मोला पटियाले से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। और ये जो पत्र हमें मिला है वो मिला है छावनी अशरफ खां पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली से। हमारे ये सब साथी हैं राम प्रसाद शर्मा, वंदना, मनोरमा, अजय, रीता, विनोद, खेमकरण, लक्ष्मी देवी और इनके परिवारी जैन। दादरी गेट भिवानी से आप है कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और इनका पूरा परिवार। और आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही मेहरा, जहां आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से। शपथ फिल्म से संडे स्पेशल ये गाना सुनिए।

शपथ फिल्म से ये पेशकश अभी आपने सुनी सोनू निगम और अल्ताफ राजा की आवाजों में। इस समय आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत। मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाजों में अमृत फिल्म से ये पेशकश आप सबके नाम। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरोला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, साहिब खान, मुस्तफा खान, आफिया खान, रऊफ भाई, शहीद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और इनके सभी साथी, और आप हैं ककराला बदायूं से मसरूर खान, सरफराज खान, विकास सक्सेना, धर्मवीर गोडवाल, प्रवीण रावत, अनिल नागर, सागर बख्शी, भारत यादव, आप हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा और इनके सभी साथी। पत्र आपका भी मिला है सम्राट चौक शेरपुर जैन जिला वाशिम से गिरीश देशमुख, सोनाली, रेणुका, आरव देशमुख, अश्वनी मौसमी, जयश्री, माधुरी जोशी और जी वाई देशमुख। ये जो पत्र है वो परी महल कासगंज से आवाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, असलम सैफी और इनके तमाम साथियों का है। तो आप सबके नाम अमृत फिल्म से।

जी हाँ, आकाशवाणी बरेली से आप सुन रहे हैं सुपर म्यूजिकल संडे। अनुरोध गीत इस समय जारी है। अभी आपने अमृत फिल्म से ये कव्वाली सुनी, जिसे गाया जसपाल सिंह, मोहम्मद अजीज, महेंद्र कपूर और कविता कृष्णमूर्ति ने। अगला ट्रैक आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अंश से, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज। और पसंद करते हैं आप सर मरोड कैंप पंजाब से सतीश मेघलानी, सीमा अनमोल धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर, रमेश मेघलानी और इनके सभी साथी।

0: राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, वेंडी शर्मा, सौरभ, शाइना और निवांश शर्मा आदर्श नगर मल्लोट से, गांधी चौक रोपड़ से, हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जतेक विरक और मीका विरक।
1: मैंने कोई बात उसकी न मानी, फिर उसने पूछा हफ्ते का क्या प्रोग्राम है, मिलके बिताएंगे कब एक शाम, तो मैंने कहा

आकाशवाणी बरेली FM 100.4 MHz पर ये है म्यूजिकल संडे। अनुरोध गीत समय आप सुन रहे हैं मैडम एक्स से ये गाना, अलका याग्निक की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल और अनु मलिक का म्यूजिक डायरेक्शन। सुनना चाहते हैं आप सब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश शाबले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश और इनके परिवारीजन। और ये पत्र मिला है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का, रिंगनी छत्तीसगढ़ से। और भी दोस्तों को साथ ले लें क्या? बिल्कुल। तो कई दोस्तों के पत्र हमें मिले हैं, लेकिन प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लग रहा है या कुछ भी कमी नजर आ रही है तो जरूर आप, आपका पत्र मिला कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट में अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिएगा। हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं। जी हां, आपकी जज्बात और आपकी प्रतिक्रियाएं। इसके अतिरिक्त अगला जो नाम शामिल करने वाले हैं वो हैं अनिल कुमार घोटके, वैशाली अनिल, प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री अज्ञेश घोटके, अम्भई सिल्लोड़, छत्रपति संभाजी नगर से। और आप हैं हिंगोली महाराष्ट्र से, शाहजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के, उत्तम जमदाड़े और इनका पूरा परिवार। लचनपुर से आप विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू हैं। कोलासर नांदुरा महाराष्ट्र से प्रमोद बगाड़े, वर्षा बगाड़े, प्रतीक और संकेत बगाड़े। आप सबके नाम मैडम एक्स से ये गीत।

सुपर म्यूजिकल संडे ऑनली ऑन 100.4 FM बोले तो आकाशवाणी बरेली और न्यूज ऑन यायर ऐप पर अनुरोध गीत इस समय आप सुन रहे हैं। इंसाफ की मंजिल फिल्म से यह गीत अलका याग्निक की आवाज, मिथिलेश सिन्हा के बोल हैं और चित्रगुप्त का म्यूजिक डायरेक्शन। सुनना चाहते हैं यादव मोला सनावत मध्य प्रदेश से, दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र मालाकार और इनका पूरा मालाकार परिवार। मॉडल डाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गोगलानी, जगमोहन प्रजापति, सुनीता शर्मा और इनके सभी साथी। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोद पुरी, बीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशील, बीके, कैलाश, अनीता, ममता, मेघापुरी, पूजापुरी, गगन कपूर, गुंजन और लालसा कपूर, रामा, मलिक, कुणाल, निधि, हरीश, सतीश, राकेश, विनोदपुरी, पालीपुरी, डीसीपुरी और अरुणपुरी। और ये पत्र जसपुर उत्तराखंड से। आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, समरीन, परवीन, मोहम्मद रियान, माहिरा नूर और कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, वैष्णव कॉलोनी सनावत से। आप सबके नाम फिल्म इंसाफ की मंजिल से ये ट्रैक।

ये आकाशवाणी बरेली एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं समय सुपर म्यूजिकल अनुरोध गीत कहीं प्यार ना हो जाए फिल्म का ये गाना है। कमाल खान, अलका याग्निक की आवाजें, सुधाकर शर्मा के बोल और हिमेश रेशमिया के म्यूजिक डायरेक्शन। और सुनने वाले आप सब हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। और पत्र आपका भी मिला है। आप हैं शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से। आप सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, केशव, सोनी यादव, अंकिता यादव, विनीता, अनिता, सुनीता और सूरत श्री यादव शामिल करते हैं। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक धींगरा और इनके सभी साथी। मगर ये जो पत्र हमें मिला है वो आप सब दोस्तों का है। कौन कौन है? आप हैं एडवोकेट वारिस अली खान और इनके साथ में कौन कौन है भाई? अकेले आपका ही नाम है तो चलिए आपका नाम पढ़ देते हैं। आप हैं संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से और सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, मुस्तफा खान, रऊ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और इनके सभी साथी हैं। और ये पत्र मिला है छत्तीसगढ़ भरसूदा से भगवानी, संतोषी सेन, चंद्रप्रकाश, नेहा सेन, राजेंद्र चिराग सेन और इनके तमाम साथी। और आप हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से बलीउल्ला अंसारी, आसमानाज, चमन पार्क दिल्ली से।

डॉक्टर सोनम, डॉक्टर अदीबा, सहारनपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून और गुल फराज भागलपुरी, आप सबके नाम कहीं प्यार ना हो जाए फिल्म से ये वाला ट्रैक।

0: जी हाँ, ये जो गाना है बंटी और बबली फिल्म से, शंकर महादेवन, अलीशा चिनॉय और साथियों की आवाजों भी, आप सबके नाम है ये गाना। गनगुला दत्तागंज से इशरत खान, शायरा बेगम, रऊफ खान, साबरीन बेगम, शहबाज खान, सैफ, ईशान, आजम, अरहान खान और इनके सभी साथी शामिल करते हैं। बोला हाल भयान, शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिटू भैया, साजदारानी, हिना कौसर और इनके सभी साथी, और आप हैं दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी और इनके तमाम साथी, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, झाविंद्र कुमार वर्मा और इनके सभी साथी, कटर चांद खां, मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11, पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश मौर्य, सुनील, खुशबू, एरोही, स्वाति मौर्य और इनका पूरा मौर्य परिवार। और ये जो पत्र मिला है हमें वो रोहिणी सेक्टर 17 से रामेश्वर दार राजोरा, सिंकी, पिंकी, पल्लवी, आकाश, आरडी, चंद्रा, न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से सुरेंद्र खुराना, सुमित सुरभि, अनीता खुराना, राजीव ढींगरा और इनके तमाम साथी हैं। और ये जो पत्र है वो मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार का है। और आप कौन हैं? आप हैं अमलेश्वर से सुमन ठाकुर, तारनी, ज्योति और गुड़िया ठाकुर। पत्र तो आपने भी भेजा है। आप हैं मोहल्ला तलैया उड़ला जागीर से फजरुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई और इनके सभी साथी, पीर बहुड़ा बरेली से आज़ाद खां, दिलशाद, मुस्तकीम, तबस्सुम और इनके तमाम हमनवा। तो आप सबके नाम करते हैं फिल्म बंटी और बबली से ये गाना।
1: दिन दन दिन दिन दन दिन दिन दन दन दन दन दन

0: यह है म्यूजिकल सुपर संडे। अनुरोध गीत आप आकाशवाणी बरेली से सुन रहे हैं।
1: बनारस का लड्डू है।
0: दुश्मनी फिल्म से आपको गीत सुनवाते हैं उदित नारायण और पामेला जैन की आवाजों में। विनय विहारी के बोल है, निखिल विनय का म्यूजिक डायरेक्शन। बड़ा बाबू गांव सिपाही साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा प्रकाश और देवेंद्र बी ने फरमाइश भेजी है, अनुरोध किया है जमशेदपुर से। शामिल करते हैं मौला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर, जिला पीलीभीत से विमल वर्मा, नीतू वर्मा और प्राची वर्मा।

0: नौकर, ये है मेरे ससुरे की डॉक्टर, ये है मेरे साले की सिस्टर।
1: और आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं जुड़वा फिल्म से, कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें, देव कोहली के बोल, अनु मलिक का म्यूजिक डायरेक्शन और फरमाइश अनुरोध करने वाले आप सब साथी मोहल्ला गढ़िया बरेली से कैशर शमसी, अजीम शमसी, सलीम नाबेद, दर्जिया शमसी बेबी और इनका पूरा परिवार, पटेल नगर मलोड पंजाब से रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू जजौरिया। और ये पत्र हमें मिला है मनकारा मंदिर बीडिया कॉलोनी करगना बरेली से बेनी सिंह सागर, पनीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश सागर, बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, ओम बतेश, खनक, सगुन, सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रताप सिंह, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवरीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, डॉक्टर कालका से रामचंद, शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। और ये पत्र कहाँ से मिला है? आप हैं वीरेंद्र सिंह चौहान, गरीब भाई, विक्की भारद्वाज, सोनू मिश्रा, अंकित सिंह चौहान, बरेली जंक्शन से। आप सबके नाम फिल्म जुड़वा से आज के अनुरोध गीत

आखिरी ट्रैक इसी के साथ आज के अनुरोध गीत कार्यक्रम से अपने रेडियो हम सफर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, न्यूज ऑन EIRF और FM 100.4 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें सुन रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं रसरंग। बताओ रसरंग के आरंभ में आपको सुनवाते हैं पंकज उदास की आवाज में ये गजल।

पंकज उदास की आवाज में अभी आपने ये गजल सुनी, और आपको बता दें आकाशवाणी बरेली 100.4 मेगाहर्ट्ज पर आप इस समय रस रंग सुन रहे हैं। आइए अब एक कव्वाली प्ले करते हैं शंकर संभू और साथियों की आवाजों में।

श्रोताओं, आकाशवाणी बरेली से न्यूज ऑन AIRF और FM 100.4 MHz पर आप इस समय सुन रहे हैं रस रंग कार्यक्रम। आइए एक लोकगीत अब आपको सुनवाते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार हम आपके लिए रस रंग में विविध गीत संगीत आपके लिए हम प्ले कर रहे हैं। तो अनुपम वर्धन की आवाज़ में आइए ये लोकगीत सुनते हैं।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही।
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे प्रोग्राम रसरंग, और ये प्रोग्राम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं। और श्रोताओं, प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ की रिकॉर्डिंग हम करेंगे जस्ट अब से थोड़ी देर बाद, यानी कि 2:30 से। तो आज का विषय है अजनबी होता पड़ोसी। इस विषय पर अपनी राय हमारे साथ जरूर रखिएगा। फिलहाल आपको जोड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था राजकुमार, गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।

मदन मोहन के संगीत निर्देशन में अभी आपने राजा मेहदी अली खान की लिखी रचना सुनी। स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था आपकी परछाइयाँ।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत आवाज मोहम्मद रफी की

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम हैं राही प्यार के। जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका 2 गाना अब आप सुनेंगे। स्वर लता मंगेशकर और तलत महमूद के। इस गीत को जानिसार अख्तर ने लिखा है और धुन बनाई है हयाम साहब ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन हैं।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, आवाज मुकेश की, फिल्म का नाम है दिल ही तो है, गीत रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत रोशन का।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: 20 जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन,
2: कौन लाया।
3: राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत हम आपको मदन मोहन के संगीत निर्देशन में सुनवा रहे हैं। स्वर मोहम्मद रफी का है और फिल्म का नाम है शराबी।

0: प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत
0: मनचाहे गीत
1: मनचाहे गीत।
0: मनचाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्ट कार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्ट कार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
1: कार्यक्रम मनचाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत हम आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं। सुनने वाले हैं भोपाल से श्रवण सिंह गिन्नारे, गौरव सौरभ रेखा, शेर सिंह गिन्नारे, और ये हैं तेलंगाना राजन्ना सिरसिल्ला जिला विलास सागर गांव से गंगाधर श्रीनिवास, लक्ष्मी प्रसन्ना, मनस्विनी चंद्रैया, मल्लवा लावण्या, रेवंत महेश्विन, श्रीनु सुजाता, ग्रीष्मा दीपक, रमेश कनक, लक्ष्मी श्रीजा, साई कुमार और सुषमा। और ये खत हमें मिला है हथबंद करेली से भाई रामाधार ध्रुव, संजय कुमार ध्रुव और संजू कुमार का। आप सभी सुनना चाहते हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज में फिल्म तराना का ये गीत।

अगला गीत सुनना चाहते हैं गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल, निशा और इनके परिवार वाले। आप हैं समाना मंडी पंजाब से अश्विनी कुमार वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, अर्पणा और विकास वर्मा। ये खत हमें मिला है सिमगा छत्तीसगढ़ से श्रीमती सविता जैन, प्रदीप जैन और उनके साथियों का। आपसे भी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म चंपा कली में। गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की है और तर्ज हेमंत कुमार की।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चंपा कली। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। ये है सिमगा छत्तीसगढ़ से पुष्कर भोसले और उनके परिवार वाले, जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन और उनके परिवार वालों ने ये खत लिखा है। ये लिखने वाले हैं हमारे ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। आप सभी सुनना चाहते हैं मुकेश की आवाज। फिल्म का नाम है सहेली। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी।

मनचाही गीत कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज है। फिल्म का नाम है अनोखी रात। इस गीत को इंदिवर ने लिखा है और धुन रोशन की है। सुनने के लिए आप सभी ने हमें फरमाइश भेजी। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं महाराष्ट्र से विनोद कुमार अठिया, भारती अढ़िया, पारस, उर्वी बेन अढ़िया और इनके परिवार वाले। इसी गीत को सुनने के लिए आपने भी हमें खत लिखा है। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, वीना देवी आर्य, प्रतीक आर्य और ये हैं छत्तीसगढ़ से डॉक्टर प्रदीप, देवेंद्र और उनके साथी। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनोखी रात में।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं गांव टुकिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा राजस्थान से कृष्ण कुमार ढाबी और उनके परिवार वाले। अंबेडकर चौक खुरई से ये खत हमें लिखा है राम सखी, परमानंद सौरभ, गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, डुंडुन और इनके परिवार वालों ने। और ये हैं वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद। आप सभी सुनिएगे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कटी पतंग का गीत सुनना चाहते हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं और राहुल देव बर्मन की धुन।

ये आवाज थी लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम था कटी पतंग। कार्यक्रम का आखिरी गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज और फिल्म का नाम सूरज और चंदा। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे। बाबुल गांव पातुर से प्रकाश पाटिल, अलका पाटिल, दीप्ति, तृप्ति, यशोदीप और उनके परिवार वालों ने ये खत हमें लिखा है। आप हैं अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर और माही किल्लेकर का। आइए आप सभी सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म सूरज और चंदा का ये गीत।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में पेश किया आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने।
1: मन चाहेगी
0: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं नाटक कटीला रास्ता का दूसरा एवं अंतिम भाग। ये नित्यामूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने और इसके निर्देशक हैं वीपी दीक्षित भट्टो। तो आइए सुनते हैं नाटक कटीला रास्ता, इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग।
1: मैं बहुत बदनसीब लड़की हूँ डॉक्टर साहब।
2: तुम क्यों दिल छोटा कर रही हो?
1: मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है। आपके मामा जी छाती के दर्द से बेचैन थे, उसी के शिकार हो गए। मेरे झंझट में आप उनकी भी देखभाल नहीं कर पाई।
2: उनके रोग का इलाज इस गांव में नहीं था, मैंने भरसक कोशिश की पर क्या किया जाए, उनकी अवधि पूरी हो चुकी थी।
1: वे देखते ही देखते चले गए डॉक्टर साहब।
2: एक बात मैं उनसे कह नहीं सकी, कहना तो चाहा था, कितने में ही चुड़ैल नागमणि आकर मुझे ले गई।
1: वो क्या बात थी डॉक्टर साहब?
2: अगर मैं मर्द होती
1: तो फिर
2: शकुंतला से शादी कर उसे नया जीवन देती, यही कहना चाह रही थी मैं।
1: आप बहुत महान हैं डॉक्टर साहब। मैं बेखबर सो रही थी, जब अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने आपके बारे में पूछा। इस जानम्मा से पता चला कि नागमणि डायन आकर आपको ले गई है।
3: और तभी शकुंतला तुरंत चिल्ला उठी, नागमणि तो काली सापन है, भयानक सापन है।
1: ये सुनते ही मामा जी बहुत चिंतित हो उठे थे, उनको धक्का सा लगा। आप ही की फिक्र में वे छटपटाते हुए दम तोड़ गए।
2: उनको यही खबर जानलेवा साबित हुई, इस धक्के को सहने की ताकत उनमें नहीं थी। लेकिन मैं डॉक्टर होकर इतनी नाजुक दिल नहीं हो सकती। खैर, जो हुआ सो हुआ। सुनो जानम्मा।
3: जी डॉक्टर साहब, क्या बात है?
2: अल्लाह बख्श नहीं आया तक?
3: आते ही होंगे।
2: देखो शकुंतला
1: जी,
2: तुम अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई हो, अब आगे के काम जल्दी जल्दी होने हैं। और देखो, तुम्हें बेहिचक गवाही देनी होगी।
1: डॉक्टर साहब, मैं कैसे भरी अदालत में गवाही दे सकूंगी? डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी का क्या होगा? मेरे भरोसे और मेरे मोहताज बनकर जी रहे मेरे परिवार की इज्जत का भी तो सवाल है।
2: शकुंतला, कैसी बातें कर रही हो तुम? उस दर्दनाक दिन की याद करो, बारिश की शाम को तुम पर जो वहशियाना जुल्म हुआ उसका बदला।
1: मेहरबानी करके उस घटना की याद न दिलाइए डॉक्टर साहब, मैं उस घिनौने धब्बे को धो डालना चाहती हूँ। आप उसे समाज के सामने मत आने दीजिए।
2: शकुंतला, इस तरह तुम ये साबित कर रही हो कि तुम भी औसत मामूली लड़कियों में ही हो।
1: माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे आराम से जिंदगी गुजारनी है।
2: शकुंतला, आगे बढ़े कदम को पीछे हटा लेना मेरे बूते की बात नहीं है। तुम निसंकोच सच्चा बयान देने को तैयार रहो।
3: शकुंतला बेटी, जरा सोच समझ कर आगे बढ़ो। डॉक्टर साहब तुम्हारी भलाई की ही बातें कर रहे हैं, तुम निडर बनो बेटी।
4: गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
2: हेलो माँ, आओ, तुम्हारा स्वागत है।
4: देखो तो तुम्हारी डिस्पेंसरी देखने और कौन आए हैं?
5: हेलो।
2: ओह, डॉक्टर रतनगिरी, विश्वविख्यात हार्ट स्पेशलिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ, बैठिए।
5: धन्यवाद धन्यवाद। कहिए, आपकी डिस्पेंसरी तो ठीक ठाक है ना?
2: आपके नर्सिंग होम की तुलना में।
4: भारती, तुम्हें खुशखबरी सुनाओ।
2: सुनाओ।
4: मैं शीघ्र ही मद्रास जाकर इनके साथ काम करने वाली हूँ।
2: बहुत अच्छी बात है। आपने अपनी पत्नी की शिक्षा का सम्मान करना शुरू किया, उसके लिए बधाई।
3: अम्मा जी,
2: बताइए क्या लेंगे आप? कॉफी, चाय, नारियल का पानी?
4: कुछ नहीं चाहिए, तुम हमारे साथ घर चलो।
5: वो हमारा मतलब था हमारे साथ भोजन करने का निमंत्रण। अगर
3: डॉक्टर साहब, ये चिट्ठी शकुंतला दे गई है।
4: शकुंतला कौन?

0: पुतला, तुम जानती हो सुमा?
1: उसके बारे में आज सुबह यहाँ के बड़े रईस कुमार स्वामी बातें कर रहे थे। ये शकुंतला ग्राम सेविका है ना?
0: हाँ हाँ, ये चिट्ठी उसी ने भेजी है। हाँ, क्या बातें हो रही थी उसके बारे में?
1: उसका दूर का रिश्तेदार एक लड़का है।
0: तब
1: खुद कुमार स्वामी ने उस लड़के के साथ शकुंतला की शादी कराने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। कह रहे थे गांव के मंदिर में शादी करा देंगे।
2: अच्छा, वो सुबह नए कपड़े, फूल मालाएं, फल तांबूल वगैरह लेकर जो लोग आए थे वो सब क्या ऐसी शादी के लिए थे?
0: जी हाँ। तब तो इस चिट्ठी का कोई उपयोग नहीं है।
1: कैसी चिट्ठी है?
0: इसमें एक दुखियारी की दर्दनाक कहानी है। शादी की आड़ में वो चैन से जिंदगी बसर कर सकती है। आइंदा समाज में सिर उठाकर चलने के लिए चिट्ठी ना रहे तो ही अच्छा है।
2: अरे ये क्या, आपने चिट्ठी फाड़ क्यों डाली?
3: क्या हुआ डॉक्टर साहब?
0: शकुंतला को हमसे भी बढ़कर पनाह मिल गई है।
3: कह क्या रही हैं आप?
0: इस वक्त कुमार स्वामी के संरक्षण में हमारे गांव के स्कंद देव मंदिर में शकुंतला का विवाह हो रहा होगा।
3: ओह, इसीलिए उसने मुकदमा वापस ले लिया है।
0: चलो, उस बेचारे दुखियारी की जिंदगी तो बन गई, हम उसी से संतोष कर लेंगे।
1: अरे, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी हिम्मत के साथ अन्याय का सामना कर सकोगी। तुम्हें अपनी प्यारी सहेली के रूप में पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।
0: तुम खुद भोली भाली हो ना, इसीलिए हर एक में गुण ही गुण देखती हो।
2: सहेलियां एक दूसरे की बड़ाई करने में होड़ लगाती हैं भैया।
0: ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब, जरूरत पड़ने पर अपना हक छोड़ भी देती हैं।
1: मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारी कोई मदद करूं।
0: मदद? तुम
1: क्यों, शक है? अरे हाँ, उस दिन तुमने हार्ट पेशेंट के एक नाजुक केस के बारे में कहा था।
0: ऐसे तो कई केस हैं उमा, मेरे मामा जी की तरह कई हार्ट पेशेंट हैं जो सुविधा के अभाव में ठीक से इलाज नहीं करा पाते।
1: इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि यही एक अच्छा अस्पताल खोला जाए जिसमें सभी सुविधाएं मैसर
2: हों। नहीं, ये एक बिल्कुल बेहुदा ख्याल है।
0: आप परेशान ना हो डॉक्टर साहब, मेरे मामा की खाली जमीन गांव की सीमा पर है। जब तक वो रहे वहाँ मेहनत कर खेती बाड़ी करते रहे। अब मैं उनकी स्मृति में वहाँ एक अस्पताल बनाना चाहती हूँ।
1: अरे भारती, यू आर रियली ग्रेट।
0: वहाँ एक अच्छा अस्पताल बनाने में यदि आप लोगों की मदद मिल सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। आजीवन आप लोगों की आभारी रहूंगी।
1: भारती, मेरे पिताजी की ऊपर तक पहुँच है, भले काम के लिए अपने परिचय और प्रभाव का इस्तेमाल करना बुरा नहीं है।
0: जिस दिन ये काम पूरा होगा ना, उसी दिन तुम्हारे यहाँ आकर।
1: अरे छोड़ो उस दिन की बात, आज चलती हो कि नहीं?
0: अरे भाई सब्र करो, सब्र करो। तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन तो ठाट से मनाया जाएगा ना, तभी प्रीति भोज पर आऊंगी।
1: तुम तो बड़ी हट्ठी हो भाई। चलिए जी, हम चलते हैं।
2: अच्छा भाई, फिर मिलेंगे। हाँ,
0: अच्छा, बाय बाय।
4: मुझे तो पहले ही मालूम था।
3: क्या मालूम था तुम्हें?
4: याद है तुम्हें, हमारे डॉक्टर साहब के पास एक मनहूस आदमी आया था।
3: हाँ हाँ, वो आरोग्य स्वामी।
4: उसने डॉक्टर अम्मा से कुछ दवाएं खरीदने के लिए एक नुस्खा लिखकर देने को कहा, पर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया।
3: ये भी कम हटीली नहीं है।
4: ठीक ही तो है, झूठ मूठ नुस्खा सर्टिफिकेट वगैरह क्यों लिख कर दे?
3: ये लोग नुस्खा लेकर क्या करेंगे, इससे क्या फायदा है?
4: तुम नहीं जानती, ये लोग झूठ मूठ मर्ज बताकर दवाएं लेते हैं और घर में रख लेते हैं, फिर उन्हें दूसरों को बेच देते हैं। डॉक्टर से नुस्खा लेकर जाली बिल बनवाकर ऑफिस में पेश कर देते हैं और उसका पैसा ले लेते हैं।
3: छी छी छी, अरे ये तो साफ धोखाधड़ी है। हाँ तो फिर आरोग्य स्वामी का क्या हुआ?
4: डॉक्टर साहब ने साफ साफ कह दिया कि ये तिकड़म हमसे नहीं होगी, पर वो नहीं माना, बराबर जिद करता रहा। आखिर डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाकर उसे बाहर निकाल देने को कहा। मैंने उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया।
3: फिर
4: जाते जाते चुनौती दे के गया कि बहुत सिर चढ़ी हुई हो, ठीक कर दूंगा, है किस होश में।
3: ये तो बहुत बुरी बात हुई, मुझे तो बहुत डर लगता है।
5: कंपाउंडर
4: जी, अभी आया।
5: सुनो अलाबख्श, ये दलाल कंपनी वालों का खत आया है, उन्होंने दवाओं का पार्सल भेजा है।
4: हस मामूल हफ्ते के आखिर में आने वाली गाड़ी में उस पार्सल को भिजवा देने को लिख दीजिए।
5: तुमने सुना है अलाबख्श, आसपास के गांव में हैजा फैल रहा है। अचरज की बात यह है कि कोई भी आदमी हैजा से बचने की सुई लेने नहीं आया अब तक।
4: गांव है ना, सुई से कोसों दूर भागेंगे, फिर भी आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। सरकार ने ऐलान करा दिया है कि सबको हैजे से सुरक्षा की सुई लेना लाजमी है।
5: अच्छा अलाबख्श, ऐसा करो तुम लोग यहीं रहना। हाँ, मैं गांव में जाकर रोगियों को देखती हूँ।
3: जी बहुत अच्छा।

0: अरे छोकरे की उछल कूद दिन ब दिन बढ़ती जा रही।
1: एक नुस्खा लिख कर देने को कहा, कहती है कि ये निगम यहाँ नहीं चलने दूंगी। मैंने समझाया तो मुझे गेट आउट किया, फटकार दिया।
0: अजी जानते हैं आप, कहीं से कहला फुसला के अपने मामा की जमीन पे इमारत खड़ी कर रही है।
1: छी छी, एक छोकरी ये सब जोर जबरदस्ती कर रही है और हम मर्द होकर चुपचाप देख रहे हैं।
0: ये सब बड़े लोगों की सहायता के बल पे चल रहा है साहब।
1: गांव के लोग भी तो चंदा इकट्ठा करके उसी को भेंट करते हैं।
0: हर हफ्ते किसी कंपनी की गाड़ी पास के शहर से मुफ्त में दवाएं सप्लाई कर जाती है।
1: इसीलिए तो ये लड़की हम लोगों को तुच्छ मानकर हमारा अपमान करती रहती है। आजकल गांव में हैजे का खतरा है ना, वो जगह जगह जाकर लोगों को इंजेक्शन दवा दी दे आती है। इससे ये साबित करना चाहती है कि हमारा धर्मार्थ औषधालय बेकार है, असली दवाखाना तो स्वयं उसका है।
0: अजी बढ़िया ही धर्म सेवा करने वाली, हम भी देख हैं जी कब तक चलेगा।
1: आप क्या कर लेंगे श्रीमान?
0: अजी हमारे छोकरे किस दिन काम आएंगे आखिर? उनसे कह दूंगा ऐसा काम करो जिससे कंपनी की उस गाड़ी का आना ही बंद हो जाए।
1: शाबाश, ये हुई काम की बात। देखें दवाओं के बगैर कैसे इलाज करेगी।
2: डॉक्टर साहब,
3: क्या हुआ भाई? ये खाओ, ये खून के डब्बे, क्या हुआ?
2: डॉक्टर साहब, मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ, मुझे
3: एक्सीडेंट हो गया। क्या? कंपाउंडर जल्दी आओ।
4: या खुदा, ये किस शैतान का काम है?
2: शहर से दवाएं लेकर कहीं आ रहा था डॉक्टर साहब, गांव से 2-3 मील की दूरी पर ही 4-5 आदमियों ने गाड़ी को घेर लिया और मुझे खूब पीटा।
4: दवाएं क्या हुई?
2: कावेरी नदी के किनारे की सड़क पर ही ये वारदात हुई थी। सारी दवाएं नदी में फेंक दी। उन बदमाशों ने, अकेला आदमी क्या कर सकता था डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे खूब पीटा और फिर चले गए।
4: अब क्या किया जाए डॉक्टर साहब?
3: ऐसा करो, हाँ। पहले इस आदमी के घाव साफ करके दवा लगाओ।
4: अच्छा,
3: बाद में एक आदमी को शहर भेजेंगे।
2: ठीक है, मैं ही चला जाऊंगा डॉक्टर साहब।
3: नहीं भाई, तुम्हें आराम करना है, तुम कल जाओगे। डॉक्टर साहब, एक बात है। बताओ जानम्मा, क्या बात है? कहने के लिए जबान नहीं खुलती, जी घबराता है, क्या कहूँ डॉक्टर अम्मा? घबराने की क्या बात है, बताओ ना। वो उमा जी के घर में,
4: मर्द नायकम जी के घर में, क्या बात है?
3: उनको उल्टी आ गई है, लगता है हैजा है, कोई भी उनके पास जाने को तैयार नहीं है। आपसे विनती करने आदमी भेजा है कि आप एक बार जाकर उन्हें देख आए। कह भेजो, मैं आ रही हूँ।
2: डॉक्टर साहब,
3: कोई बात नहीं है, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह बख्श। उनकी खातिर नहीं तो उमा की खातिर उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। आओ हम सब चलते हैं। डॉक्टर साहब, कौन है? डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की बुरी हालत है, आप जल्दी चलकर देखिए, बेसुध पड़ा हुआ है, दया कीजिए। आप कौन है? अरे जानम्मा, तुम आ गई, चलो अच्छा हुआ। डॉक्टर साहब,
5: ये रईस कुमार स्वामी की घर वाली है।
3: क्या?
5: कुमार स्वामी के घर?
6: डॉक्टर साहब, मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरा इकलौता बेटा बेहोश पड़ा हुआ है, जान का खतरा है और कोई डॉक्टर नहीं मिला, मैं क्या करूं?
3: शहर ले जा सकती हैं आप तो काफी सुविधा संपन्न लोग हैं, शहर के बड़े अस्पताल में बड़े डॉक्टर के पास इलाज करा सकती हैं।
6: डॉक्टर साहब, वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, मैं खुद दौड़ी आई, जानम्मा से विनती की कि आपको समझाए।
5: डॉक्टर साहब, ये घर से बाहर कभी नहीं निकलती, अपने बेटे को मौत से बचाने के लिए यहाँ आई हैं। डॉक्टर, अभी तो आप मरुद नायकम जी के घर से होकर आई हैं, अब इनके घर भी।
3: पर क्या हम यकीन कर सकते हैं? एक बार पहले इसी तरह के अगर मुझे धोखे में डाला जा चुका है।
5: अगली बार तो अल्लाह बख्श के साथ चलेगा, मैं तो हूँ ही। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा खाना खाकर आइए, तब तक हम सब चलते हैं।
3: नहीं नहीं, अब वो सब खाने वाने की बात छोड़ो, पहले इनके बेटे को बचाना है, चलिए आइए, जल्दी चलिए।

0: डॉक्टर साहब।
1: हाँ हाँ बताइए बच्चा कहाँ है?
2: उस कमरे में।
1: चलिए आइए उसी कमरे में चलते हैं।
0: आइए डॉक्टर साहब इधर से।
1: चलिए राजा बेटा बोलता क्यों नहीं? आंखें खोलो बेटा।
3: तुम पाउंडर
4: जी ये लीजिए दवा का बच्चा।
1: लो
0: दवा खत्म हो चुकी है। शहर से दवा आनी है और
3: कोई भी दवा बेकार है।
0: डॉक्टर साहब
4: डॉक्टर साहब
0: नहीं नहीं
3: कंपाउंडर
0: जी
3: बच्चे का शरीर ठंडा पड़ गया है
0: जी।
3: चाय निकले काफी देर हो चुकी है।
1: नहीं
3: ऐसा करो इसकी इसकी माँ को तुम कुमार स्वामी साहब धीरज से काम लीजिए। भगवान ने दिया उसी ने वापस।
0: मुझ पाजी को यही सजा मिलनी चाहिए थी डॉक्टर साहब। मैंने दवा लेके आती हुई गाड़ी को रोक के लुटवाया, दवाओं को नदी में फेंकवाया, उसी की सजा मिल रही है डॉक्टर साहब। मुझे उसी की सजा मिल रही है।
5: इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता।
3: कंपाउंडर चुप रहो ये बदतमीजी है।
5: माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहब।
3: कुमार स्वामी जी जो नहीं होना चाहिए था सो आप घर रखिए और अपनी पत्नी को भी संभालिए।
5: चलो
3: चलो।

0: थोड़ी देर के लिए बाहर चलिए डॉक्टर साहब, आपके दर्शन करने और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं।
1: अरे भाई, कृतज्ञता तो परमात्मा के प्रति प्रकट करनी चाहिए। आओ चलो, फिर भी देखती हूँ।
0: चलिए चलिए।
2: बाप रे बाप, कितने कुछ फल फूल, कितनी फूल मालाएं, वाह रे वाह।
1: भाइयों, ये सब फिजूल खर्ची है, इसके बदले नया अस्पताल बनवाने के लिए चंदा देते तो अच्छा होता।
0: डॉक्टर साहब, वो देखिए, गांव के बड़े काश्तकार मरुद नायकम जी भी पधार रहे हैं।
1: आइए आइए आइए। अरे आपने ये तो तकलीफ क्यों उठाई?
3: डॉक्टर साहब, आपको अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आया हूँ, आपने हम पर बड़ा एहसान किया है।
1: ऐसा मत कहिए, आप बड़े और बुजुर्ग हैं, फिर मेरी सहेली उमा आपकी बहू है, उस नाते भी आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है।
3: छूत की बीमारी मालूम हो जाने पर पैसे के लिए भी कोई डॉक्टर पास नहीं फटकेगा। आपने मेरी जान बचाई।
1: ये तो डॉक्टर का कर्तव्य है, डॉक्टर बनने के बाद बीमारी से डरकर पीछे हटना कैसे संभव होगा।
3: डॉक्टर साहब, आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ, मेरा पोता हुआ है।
1: अच्छा, बहुत बहुत बधाई।
3: उमा रतनगिरी दोनों आए हैं।
1: अच्छा,
3: बच्चे के नामकरण संस्कार पर आपको निमंत्रण देने दोनों ही आ रहे हैं। मैं पहले आ गया हूँ, आपको हमारे घर अवश्य आना होगा।
1: अब आप इतने बड़े आदमी होकर खुद चलकर बुलाने आए हैं तो भला मैं कैसे चल सकती हूँ।
3: आप ये फल फूल ले लीजिए और अवश्य पधारिएगा।

0: अरे डियर भारती, तुम आ गई। मैंने सोचा कोई बहाना बनाकर तुम फिर रुक जाओगी।
1: मुझे सूझा ही नहीं उमा कि क्या उपहार ले आऊं, इसलिए भाई यहाँ से नहीं। उमा
0: बारी बा, पालने पर पड़े बच्चे को हवाई जहाज भेंट कर रही हो।
2: आप भी खूब है डॉक्टर भारती। अरे बच्चे को क्या अभी एरोप्लेन में बिठा के उड़ाएंगे हैं?
1: नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब था भविष्य में ये होनहार बालक देश विदेश घूमे, ऊंची ऊंची शिक्षा पाए, इसी आशा और अरमान के साथ ये भेंट कर रही हूँ।
3: आइए डॉक्टर अम्मा, भोजन तैयार है, चलिए।
4: हाँ अरे ये एरोप्लेन तो बहुत बढ़िया है।
0: आपका पोता इसमें बैठकर देश विदेश घूमेगा, आसमान पर उड़ेगा।
4: अरे ये आसमान पर उड़ता रहा तो धरती पर कौन रहेगा?
0: धरती पर ही रहेगा, धरती पर रह लेने के बाद ही तो आसमान पर उड़ना सीख सकता है।
4: अच्छा अच्छा, आइए भोजन ठंडा हो रहा है।

0: चलिए आइए
1: आइए चलिए भाटी, तुम्हारे नर्सिंग होम का उद्घाटन कब होगा? सुना है शहर से कोई बड़ा आदमी आने वाला है।
2: मैं उमा, इस मामले में तुम तो मेरे विचार जानती।
1: फिर भी
2: एक मामूली देहाती आदमी जो मेहनतकश मजदूर है, उसके हाथों उद्घाटन होने वाला है।
1: ये तो बड़ी खुशी की बात है।
2: तुमने पूरी बिल्डिंग नहीं देखी अस्पताल की? उमा देखोगी ना तो खुश हो जाओगी।
3: सुनिए, एक मिनट सुनिए डॉक्टर।
1: क्यों, क्या हुआ? तुम घबराए हुए क्यों हो?
3: बड़ा अन्याय हुआ है। आरोप स्वामी ने कुछ गुंडों के साथ लेकर नर्सिंग होम की किवाड़ तोड़ डाली और भीतर
1: भारती अकेली चली जा रही है। जालिम राक्षस कहीं उसको भी। मामा जी बचाइए हमारी भारती को।
4: अरे कोई है?
5: घुसने की हिम्मत मत करना, तोड़फोड़ की तो बहुत बुरा होगा, खबरदार।
4: बड़ी आई है, हमें डरा दी है, हटा पीछे हटा।
5: हाँ हाँ, अगर आप किसी ने पत्थर फेंके तो मैं उसका खून पी लूंगी।
4: ए नको, चलाओ पत्थर।
6: ये सारी शरारत उस बदमाश आरोग्य स्वामी की है।
7: पुलिस ने ऐन मौके पर आकर सब बदमाशों को पकड़ लिया। मरुद नायकम जी ने इस वक्त बड़ी मदद की हमें।
6: वो तो है, गांव वालों का प्यार भी तो देखो। डॉक्टर साहब के बारे में तरह तरह के सवालों के जवाब दे देकर थक गए हम लोग जानम्मा।
7: डॉक्टर साहब के लिए इन लोगों के दिलों में कितना गहरा प्यार और आदर है।
6: लगता है उमा जी और डॉक्टर रतन साहब तशरीफ ला रहे हैं। अंदर जाकर डॉक्टर साहब को इत्तला दे आता हूं।
1: आइए आइए आइए। डॉक्टर साहब कैसी हैं?
7: आराम कर रही है। चलिए अंदर चलिए। आइए आइए आइए।
1: चलो भारती, तुमने खुद ही पहली मरीज बनकर अस्पताल का उद्घाटन कर दिया।
2: क्या किया जाए, अच्छे काम के लिए पहले कुछ भेंट तो करनी ही पड़ती है। ये देखो ना, ये मेरे माथे का घाव पहली भेंट है।
8: तो डॉक्टर भारती, आपने उस वक्त बहुत ही जल्दबाजी की, आपको अकेले वहां जाना ठीक नहीं था।
2: उस वक्त सोचने समझने या रुके रहने का होश कहाँ था, और फिर कुछ सूझा ही नहीं। नर्सिंग होम वाले मेरे सुनहले सपने को कोई बड़ी परपरता से कुचल रहा है, बस यही बात मेरे भीतर आवेग भर गई, इसी से तैश में आ गई मैं।
1: भारती, मेरे ससुर साहब बहुत दुखी हैं कि वो तुम्हें इस पथराव से बचा नहीं सके, तुम्हारे लिए बड़े चिंतित हैं वो।
2: चिंता की कोई बात नहीं, और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल से मेरा काम यहीं शुरू होगा। तुम मामा जी को समझा देना उमा।
1: आज तुम्हें मरीज के रूप में लोग यहाँ आकर देख लेते हैं, कल से तुम उन लोगों को मरीज के तौर पर देखना शुरू करना। ये आदान प्रदान अच्छा है, ठीक है ना?
8: अच्छा डॉक्टर भारती, अब हम चलते हैं, वो अब हमें मद्रास जाने की तैयारी भी करनी है ना। हाँ।
2: डॉक्टर रतनगिरी, आप जब भी इस गांव में आए, कृपा कर हमारे उमा नर्सिंग होम में पधारने का कष्ट अवश्य करें।
8: जरूर जरूर।
2: देखिए, चिकित्सा संबंधी नई बातों का परिचय मुझे अवश्य दिया करें।
8: ओह सर्टेनली सर्टेनली। अच्छा, गुड बाय डॉक्टर।

0: क्या सोच रहे हैं?
1: हाँ? नहीं कुछ नहीं, ये एक छोटे से गांव में इतनी लगन और मेहनत के साथ भारती ने कितना बड़ा और बढ़िया काम कर दिखाया है। मैं उसके सामने हार गया हूँ।
0: मैं सब जानती हूँ।
1: क्या जानती हो?
0: आप जितना समझते हैं मैं उतनी बेवकूफ नहीं हूँ।
1: क्या कह रही हो तुम?
0: याद रखिए, डॉक्टर उमा डॉक्टर भारती की सहेली है।
1: हाँ, लेकिन ये तो सभी को मालूम है।
0: पर ये बात तो किसी को मालूम नहीं, और भारती ने भी कभी नहीं कहा कि उसकी जगह मैंने ली है और उसकी जिंदगी मैं जी रही हूँ।

0: हाँ, पहला हक उसी का था।
1: ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई?
0: क्या लाभ होता इससे?
1: माँ,
0: भारती अपने उसूल की पक्की है। लंबा कंटीला रास्ता पार करके उसने स्वयं अपने जीवन की दिशा निश्चित कर ली। वो एक मिसाल, एक आदर्श बन चुकी है। वो अपनी अंतश्चेतना के अनुसार चलने वाली कर्तव्यनिष्ठ महिला है।
1: बड़ी ऊंची बातें हैं ये माँ।
0: ऊंची नहीं, सही बातें हैं ये। जरा सोचे तो गाड़ी का रुकना और छूटना उस सिग्नल के इशारे पर निर्भर होता है। हमारा जीवन भी सिग्नल के खंभे जैसा है। ठीक इशारा पाने पर गाड़ी पटरी पर चलती है, गलत इशारा करने पर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। इसी तरह कुछ लोग गलत इशारे पर चलते हैं, कुछ सही इशारे पर। क्या किया जा सकता है, अपनी अपनी मजबूरियां हैं।
1: उमा, आज मैं तुमसे भी हार गया हूँ।
0: हार मान बैठना पुरुष का लक्षण नहीं है डॉक्टर साहब। वो भी एक विश्वविख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ के लिए बिल्कुल गलत बात है।
1: सिर्फ एक जगह हार मानना गलत बात नहीं।
0: किस जगह?
1: वो प्रेम की दुनिया में।
0: डॉक्टर साहब, सिर्फ संवेदन और भावना तक ही सीमित ना रहिए, दिल टटोलना भी सीख लीजिए।

कटीला रास्ता। अभी आप सुन रहे थे इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग, नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नेत पाते का। यह था हिंदी रूपांतर। रूपांतरकार ए शौर्य राजन, निर्देशक थे वीपी दीक्षित भटुक, और ये केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बज रहे हैं और अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे थे। और श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में क्योंकि समय हो गया है, शाम के 4 बज गए हैं, तो समय हो गया है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ।

0: सदाओं ट्यून किया है आपने 100.4 एफएम आकाशवाणी का बरेली केंद्र, और जैसा कि आप जानते हैं कि हर दिन दोपहर 2:30 पर हम लेकर हाजिर होते हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ की रिकॉर्डिंग। इसमें हम शामिल करते हैं अपने सारे ही श्रोताओं के फोन कॉल्स को और कुछ चुनिंदा कमेंट्स जो हमारे विषय पर ही आधारित होते हैं और हमारे फेसबुक पर होते हैं। तो इन सारी चीजों को मिलाकर के हम कार्यक्रम पेश करते हैं। अब हम बात करें आज के विषय की, तो आज का विषय है अजनबी होता पड़ोसी। क्यों आवश्यकता पड़ी हमें इस विषय की, तो आप सब जानते हैं कि हम प्रोग्राम में विषय वही लेके आते हैं जो ज्वलंत होते हैं समाज में, जिनकी जो प्रासंगिक होते हैं, रिलेवेंट होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम देखिए ना, भाग दौड़ भरी जीवन में इतनी तेजी से घुस गए हैं कि लोगों को पता ही नहीं होता उनके पास पड़ोस में रह कौन रहा है। सुबह आदमी काम पे निकलता है, शाम के वक्त अंधेरा ढलने पे आया, खाना पीना खाया, सो गया, फिर सुबह चला गया और दूर हो रहा है पड़ोसी। वरना एक समय ऐसा भी था कि लोग पड़ोसी मतलब परिवार, परिवार जो अपने ब्लड के रिलेशन है वो दूर रहते या वो बाद में पहुंचते हैं, जबकि पड़ोसी तुरंत तत्काल आपकी सहायता के लिए उपलब्ध होता है। लेकिन हम मुड़कर देखें अगर, तो क्या हम इस बात को महसूस नहीं करते कि पड़ोसी हमसे दूर हो गया है या हम पड़ोसियों से हमारे संबंध वैसे नहीं है। जरा जरा सी बात को हम लोग देखते हैं, कई बार छोटी छोटी चीजें बड़ी रूप ले लेती हैं, कई बार नाली पानी झाड़ू कूड़ा इन सारी चीजों को लेके हम लोगों से मनभेद कर लेते हैं। देखिये मतभेद और मनभेद दो अलग अलग चीजें हैं। तो मतभेद तो थोड़े समय के बाद मिटाए जा सकते हैं, लेकिन अगर मनभेद हो जाता है तो दिक्कत है। तो गलतियां हमसे भी होती हैं, किसी से भी होती हैं। पास पड़ोस में बड़ी आत्मीयता प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि आपका पड़ोसी ही आपका सच्चा और पक्का रिश्तेदार है जो त्वरित किसी भी आकस्मिकता में आपकी मदद कर सकता है। तो कुल मिलाकर के इसी विषय पर हम बात करेंगे, और आइए देखते हैं हमारे साथ हमारे कौन से पहले कॉलर हैं जो जुड़ रहे हैं।
1: हेलो
0: जी, हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं और कहां से?
1: हम बंटू भाई प्रजापति बोल रहे हैं, ग्राम कटरा कला से।
0: बंटू भाई कैसे हैं?
1: बढ़िया हैं, आप नहीं सर कैसे हो?
0: हम बहुत अच्छे हैं। तो गर्मी का आनंद आ रहा है?
1: गर्मी का आनंद तो आ ही रहा है। आपके शहर में कैसा है गर्मी का आनंद?
0: बहुत टॉप क्लास है, बहुत टॉप, एकदम टॉप गर्मी पड़ रही है, टॉप गियर में। तो इसलिए जो है आने वाले समय में हम लोगों को और बंटू भाई आपको भी और हमारे सभी श्रोताओं को भी आज के आज इसके इसी मानसून, और उम्मीद करते हैं कि कल से बारिश होगी, ऐसा कुछ कह रहे हैं लोग कि बादल मौसम विज्ञानी जो है, हम लोग देते भी हैं अपने सब कार्यक्रमों में इस बात की जानकारी कि कल से बारिश होगी। इस मानसून बंटू भाई आपको कसम है आकाशवाणी बरेली की एक पौधा अपने बच्चों के साथ आप जरूर लगाएंगे।
1: जी जी बिल्कुल लगाएंगे, और मैंने लगा भी रखे हैं।
0: आप बहुत सुंदर काम किया है, बिल्कुल लगाएं और हर मानसून लगाएंगे। अपने बच्चों को भी सिखाएंगे कि बेटा आपका बर्थडे है, हमारी एनिवर्सरी है, किसी की पुण्यतिथि है, किसी का कोई भी ओकेजन है, कोई भी अवसर है, हम लोग बेटा एक पौधा जरूर लगाएंगे। और हाँ बंटू भाई और हमारे सभी श्रोताओं, उसे लगा के भूलना नहीं है मेरे भाई, उसको कम से कम उसकी बढ़वार होने लगे, पकड़ ले, चल हो जाए, और आपको यकीन मानिएगा इतना सुंदर लगेगा। आपको बताऊं, कोरोना में मैंने जिस ग्राउंड में मैं टहलने जाता हूं वहां कुछ पौधे लगाए, खासतौर से जामुन के, पीपल के, बरगद के, हर साल ही बहुत सारे पौधे लगाता हूं, आम के। और आप यकीन मानिए कि अब मैं टहलने जाता हूं, यानी कि 5 से 6 साल हो रहे हैं, 2022 या 2021 की बात है शायद, वो इतने बड़े हो गए ऐसा लगता है फल देंगे जामुन, तो बड़ा अच्छा लगता है। खैर ये तो बात हुई पर्यावरण संरक्षण की और गर्मी के इस माहौल की, है ना। तो अब बंटू भाई आज का हमारा विषय है कि अजनबी होता पड़ोसी। तो बंटू भाई हम देख ही रहे ना आजकल की लोग कितनी भाग दौड़ भरा जीवन है लोगों का, पड़ोसी से एक तरीके से कहते हैं पड़ोसियों को भुलाते ही जा रहे हैं, नहीं?
1: जी जी जी जी।
0: क्या लगता है आपको?
1: जी इसमें तो हमें ये लगता कि आजकल पहले जो मतलब पड़ोसी थे तो वो मतलब पड़ोसी परिवार का मतलब सदस्य माना जाता।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जब कोई सुख या दुख तो सबसे पहले पड़ोसी ही आता है, गांव वाले तो बाद में आते हैं जब पता चलता है, तो सबसे पहले पड़ोसी

0: आज कल मतलब ऐसा है जैसे आदमी व्यस्त बहुत हो गया, काम में सुबह उठा और फिर अपने काम पे चला गया, फिर शाम को आया, खाना खाया, फिर सो गया। इसलिए आज तक देख रहे हैं तो
1: पड़ोसियों से कम ही मतलब दूराव होता जा रहा है ना। और कई बार बंटू भाई हम लोग देखते हैं ना कि कई बार नाली के पानी को लेके, कई बार कूड़े कचरे को लेके किसी ने कुछ कह दिया इसके लेके, कई बार कोई आदमी किसी के बारे में बात कोई कह देता है तो पड़ोसियों में कितना झगड़ा झंझट होने लगता है, लोग बोलना छोड़ देते हैं एक दूसरे से। और देखा जाए कभी वक्त बेवक्त कभी किसी की तबीयत खराब हुई, कुछ हुआ, तो सबसे पहले पड़ोसी ही आपके पास होता है ना। किसी भी इमरजेंसी में सबसे पहले पड़ोसी आएगा, क्यों क्या कहते हैं आप?
0: जी, सबसे पहले पड़ोसी आता है काम में।
1: बिल्कुल,
0: पड़ोस में प्रेम भाव रखना भी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: पड़ोसी
1: को लिए। तो बंटू भाई आपने हमें फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगे?
0: गीत सुनवा दीजिए अपनी पसंद का कोई सा भी सॉन्ग।
1: बिल्कुल बंटू भाई, हम आपको सुनवाते हैं हम अपनी और आपकी, हम दोनों की पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: मैं शरद सक्सेना बोल रहा हूँ, बागे की छावनी इधर तरह बरेली।
0: शरद जी, स्वागत आपका कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
1: आप बहुत दिन के बाद आपसे बात हो रही। मैंने बस लास्ट टाइम कॉल की थी तो आपने से बात हुई थी।
0: जी जी
1: आज
0: जी
1: आपसे बोलेंगे।
0: तो शरद जी कैसे हैं?
1: बढ़िया हूँ बिल्कुल।
0: शरद जी, गर्मी क्या कह रही है?
1: गर्मी तो तेज है लेकिन मुझे नहीं महसूस होती गर्मी ना। खाली
0: क्या बात,
1: मैं नॉर्मल रहता हूँ। हाँ, यहाँ मुझे गर्मी लगती है। आप मुझे धूप में घुमा रही है 2 घंटे ऐसे।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी आप तो जो है वो सर्दी गर्मी से ऊपर उठ गए हैं।
1: आज बार सर्दी हो रही मुझे ठंडी लगती है और लोग बहुत ठंड मनाते हैं, वो पता नहीं ईश्वर की बात है।
0: चलिए अच्छी बात है। तो शरद जी, आज कार्यक्रम में हमारा विषय है अजनबी होता पड़ोसी।
1: हाँ,
0: क्या लगता है शरद जी को?
1: इसके कारण ये है, लगता है कि सिर्फ मोबाइल फोन का कारण है। पहले तो पड़ोसी साथ में बैठते थे, बातें किया करते थे। अब वो साथ में नहीं बैठते क्योंकि मोबाइल फोन में इतने बिजी हो गए लोग कि वो बस मोबाइल फोन ही चलाते रहते हैं। मैं समझता हूँ इसका मुख्य कारण भी ये है।
0: अच्छा, बिल्कुल सही बात है। पड़ोसियों को समय नहीं देते हैं, उनके सुख दुख में शामिल नहीं होते हैं। कोई बीमार हो जाता है उसे देखने नहीं जाएंगे, तो फिर संबंध इसी तरह वो दुराव बढ़ते जाती है।
1: तो लोग जो है वो आपस में मिलना मतलब बैठने नहीं चाहते। जो बैठेंगे तो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं वो लोग इसको, अपने मोबाइल सब उसमें चीज देखते रहते हैं, रील देख रहे हैं।
0: तो क्या अब शरद भाई, ये तो आपने कारण बता दिया, अब इसको इसका उपचार भी बताइए कि भाई कैसे इस चीज दूर किया जा सके।
1: इसका उपचार ये है कि बहुत से बहुत 1 घंटे मोबाइल फोन चलाएं, और इतना भी काफी है क्योंकि 1 घंटे की भी बर्बादी होगी। क्योंकि करना है 1 घंटे मोबाइल फोन चलाएं से, और इम्पोर्टेंट कोई चीज देख रहे हैं तो 2-2.5 घंटे भी चला सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि इसके आंखों पे, कानों पे, दिमाग पर, सब पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और मैं तो मोबाइल फोन पता है चलाता ही नहीं हूँ। मैं तो मशीन से करी है, और इससे पहले
0: अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी चीज बताई कि भाई कारण भी है कि मोबाइल का ज्यादा प्रयोग, और उपचार भी आपने बता दिया कि भाई इससे कम प्रयोग किया जाए। लेकिन एक ये भी कर सकते हैं ना कि पड़ोसियों के साथ थोड़ा वक्त बिताया जाए, उनके साथ दुआ सलाम की जाए, बल्कि कोशिश करें कि सुबह सुबह की राम राम पड़ोसियों से हो।
1: लोगों के साथ उठे रहेंगे तो उससे उनका संबंध भी बढ़ जाएंगे, अच्छे होंगे। और ये नहीं चला मोबाइल को, ये अपने शरीर को भी नुकसान करेगा और संबंध भी हमारे जो है खराब होते हैं।
0: तो शरद जी, आपने हमें फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: तो वो वाला गीत सुनूंगा कि खबर मेरे मरने की सुनते ही देखो वो हाथों में मेहंदी रचा
0: नहीं। हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: जहर मिले या अमृत धारा, सारा सागर पी लेते हैं जीवन पर क्या?

0: हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं और कहाँ से?
1: जी रसान खान बोल, जिला पीलीभीत तहसील आदिल।
0: आदिल भाई क्या करते हैं?
1: जी बाइक मैकेनिक का काम करते हैं।
0: बाइक मैकेनिक का?
1: जी।
0: अच्छा अच्छा, एक बात बताइए कि इन दिनों गर्मी तो अच्छी खासी पड़ रही है, नहीं?
1: जी।
0: तो अपनी बाइक की हेल्थ अच्छे रखने के लिए क्या क्या ध्यान रखें हमारे श्रोता, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट बता दीजिए कि जैसे जिससे मान लीजिए उनकी बाइक इन दिनों गर्मी में अच्छा परफॉर्म करे, उनमें मान लो कभी आग उग लगने की घटनाएं हम लोग देख रहे हैं वो ना हो, इस तरीके की क्या क्या करें?
1: गाड़ी में आग लगती ज्यादा का धूप में खड़ी होती गाड़ी, उस वजह से हीट पकड़ती है।
0: हाँ,
1: वो टायर सर्विस वगैरह नहीं कराता, उस वजह से दिक्कत आती है।
0: अच्छा, मतलब अपनी बाइक की समय पे सर्विस कराएं, गाड़ी को धूप में
1: ना, और टाइम पे जब चलाते रहें ज्यादा टाइम मतलब तो खड़ी करके चलने कहीं।
0: अच्छा, तो कुल मिलाकर के समय पे सर्विस कराएं, धूप में ना खड़ी करें, नियमित रूप से कुछ कुछ दूरी पे चलाते रहें और
1: ध्यान रखते रहें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
0: अच्छा अच्छा, तो आदिल जी आज हम लोग कार्यक्रम में बात कर रहे हैं, जो हमारा विषय है वो है अजनबी होता पड़ोसी, मतलब कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे आस पड़ोस में कौन रह रहा है आजकल हम लोग को पता ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने काम से जब फ्री होते हैं तो मोबाइल में, मोबाइल से फ्री होते हैं तो काम में, अगल बगल की चीजों पे तो ध्यान ही नहीं जा रहा है। और एक समय वो होता था कि अपने घर में पता चला सब्जी अच्छी नहीं बनी है तो बोले रजा पड़ोस से लिया, देख क्या पूछ क्या क्या बना, ये भी था, होता था नहीं?
1: हाँ, ये होता।
0: और क्या आज ऐसा हो सकता है?
1: ये खैर बाहर देखने नहीं मिलता है, गांव देहात में तो अभी है, थोड़ा बहुत बाहर नहीं।
0: तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि ये पहले से और अब कम होता जा रहा है प्रेम पड़ोसियों के साथ?
1: जी, दिन पर दिन कम होता जा रहा, बाहर आदमी जितना लगता वो अपने काम में ड्यूटी में।
0: क्या लगता है आपको कि क्यों ऐसा क्यों होता
1: रहता है? बाकी टाइम इधर उधर पड़ोस में देखता ही नहीं।
0: क्या लगता है आदिल भाई कि आपको मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब लोग दूर क्यों हो रहे हैं?
1: एक दूसरे से कोई मिलना ही नहीं चाह रहा, मोबाइल में आदमी ज्यादा ज्यादा टाइम दे रहा है।
0: अच्छा,
1: अब मोबाइल जैसे कम टाइम देगा तभी किसी के पास बैठेगा।

0: बैठना ही नहीं चाहता मोबाइल के चक्कर।
1: और एक दूसरे के दुख सुख में भी तो शरीक नहीं होना चाह रहा है ना भाई आजकल, ये भी तो एक बात है।
0: इसीलिए आदमी अपने काम पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने लगा है, दूसरे का देखता ही नहीं क्या है
1: क्या नहीं है। लेकिन कुल मिला के कहा जाता है आदिल भाई की पड़ोस ही हमारा पहला परिवार है, क्योंकि कभी भी कोई इमरजेंसी, दुर्घटना या किसी सुख दुख के हर पल में हमारा जो साथी होता है वो हमारा पड़ोसी ही होता है ना, सबसे पहले वही आएगा।
0: पड़ोसी ही होता है
1: तो हमेशा
0: वाला बाद में आएगा, रिश्तेदार पहले पड़ोसी ही।
1: हाँ जी हाँ जी, तो हमेशा पड़ोसियों से मधुर संबंध रखें और प्रेम भाव के साथ
0: रखना चाहिए, जरूरी है पड़ोसी।
1: तो आदिल जी आपने हमें फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगे?
0: पिक्चर नाम है सलमा पे दिलाया और गाने बोले खत्मा तुझे देगी तेरा पता मामा।
1: हम आपको सुन
0: नाम दे सकता हूँ सर?
1: बिल्कुल ले लीजिए।
0: ये हमारी भाभी है सीमा, एक पैसा एक बदली,
1: तो आप
0: और एक भतीजी है।
1: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ, हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं? कहाँ से फोन किया है आपने हमें?
1: सर, मैं ग्राम जोरा तहसील में जिला रामपुर की बात कर रहा हूँ। तौफीक अहमद मंसूरी
0: अच्छा, तो तौफिक जी क्या करते हैं,
1: सर, सिलाई काम करते हैं सर। हम
0: क्या क्या सिल लेते हैं?
1: सर पैंट शर्ट है, लेडीज सूट है, कुर्ता
0: अच्छा,
1: पजामा वगैरह सारे काम करते हैं सर। जी
0: शर्ट और पैंट सब सिल लेते हैं? नहीं,
1: जी
0: तो इन दिनों शर्ट की सिलाई का क्या रेट ले चल रहा है?
1: रेंदना सर, वही 150 रुपये चल रहे हैं शर्ट के। जी
0: शर्ट के और पैंट के?
1: सर, पैंट शर्ट के 400 रुपये चल रहे हैं सर।
0: पैंट शर्ट के हैं, चाहे जैसी भी सिलवा
1: जी
0: लीजिए।
1: जी जी
0: अच्छा, बढ़िया। तो काम इन दिनों तो खैर चलता ही है, आदमी दोपहर में बढ़िया काम आता है, तीज त्योहारों में आदमी दुकान के अंदर रेडियो सुन रहा है और अपने काम कर रहा है नहीं?
1: जी बिल्कुल जी
0: तो तौफीक जी, आज का हमारा विषय है अजनबी होता पड़ोसी, इस विषय पर बात करेंगे। हम ये देखते हैं प्राय कि आजकल पड़ोसी और पड़ोसी दूर हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे से प्रेम भाव नहीं रह गया है, समय के साथ दूर हो। और एक समय यह भी था कि पड़ोसी पड़ोसी, कोई किसके घर में है, कोई किसके घर में है, कोई के घर में जगह नहीं है तो उसके मेहमान उसके यहाँ सो रहे हैं, किसी के यहाँ खाना पक रहा है तो जो उसके यहाँ भी जा रहा है उधर से इधर भी आ रहा है, ये भी हुआ करता था नहीं?
1: जी बिल्कुल जी। देखिए
0: लेकिन अब समय के साथ धीरे धीरे ये सब चीजें कम हो रही हैं, क्या लगता है तौफीक जी?
1: सर, ऐसा है सर, गांव में तो अभी घर सर वही माहौल है बना हुआ,
0: हाँ
1: लेकिन जो शहर के अंदर है सर, ये शहर में सर बिल्कुल ही खत्म हो चुका है सर, ये
0: है
1: पड़ोसी
0: ना?
1: वाला मामला सर।
0: जी। तो तौफीक जी, क्या लगता है क्यों हो गया ऐसा, क्यों हो रहा है?
1: सर ऐसा है सर, देखिए सर, शहर के लोगों सर मोहब्बत नहीं है किसी से, उन्हें
0: हाँ,
1: अपने काम से मोहब्बत है सर बिल्कुल।
0: अच्छा, तो हाँ ये बात कह सकते हैं, काम में इतना व्यस्त है कि उसे पता ही नहीं कि पड़ोस में क्या है, कैसे है, कौन है, कहाँ है नहीं?
1: जी बिल्कुल। और सर गांव में ऐसा हिसाब है सर, अगर पड़ोसी परेशान है तो सर उसे देखा पड़ोस वाला सर।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है, गांव में थोड़ी सी मुरव्वत है, क्योंकि गांव में अभी भी लोग जो है ना वो एक साथ रह रहे हैं, सामूहिक एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं, और शहरों में बड़ा मशीनी हो गया है इंसान, क्या कहते हैं,
1: जी बिल्कुल सर, यही बात है सर आपकी,
0: है ना?
1: सच बात है जी।
0: तो तौफीक जी, ये तो समस्या हो गई, अब इसका समाधान बताइए कि भाई कैसे प्रेम भाव बढ़े पड़ोसी पड़ोसी में?
1: सर देखिए, इसके लिए ये करना चाहिए सर, एक दूसरे से मोहब्बत करना चाहिए सर,
0: अच्छा
1: उसके दुख सुख में सर हाथ बढ़ाना चाहिए सर।
0: अच्छा बिल्कुल सही बात है, सुख दुख में शरीक होना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए, मौके पे खड़े होना चाहिए, कभी
1: खड़े होने चाहिए सर।
0: कभी उसको इमरजेंसी पड़ेगी तो कभी आपको भी पड़ जाएगी, कभी किसी के यहाँ सिलेंडर खत्म हो जाएगा तो कभी आपके यहाँ सिलेंडर खत्म हो जाएगा,
1: बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना? तो ये सब मुरव्वत करनी पड़ेगी,
1: बिल्कुल करनी पड़ेगी सर।
0: तो तौफीक जी, आप फोन किया, कौन सा गाना सुनेंगे?
1: सर देखिए, फिल्म का नाम है गोपी किशन,
0: हाँ,
1: उसमें एक गाना है, न भूख लगे न प्यास लगे, कोई दर्द हो सह लेना, किसी को दिल नहीं देना। दोस्तों नाम ले दूंगा, जागो आप
0: फटाफट ले दीजिए गोली की तरह।
1: सर हमारे बड़े भाई शफीक मंसूरी, छोटे भाई लग मंसूरी, दर्पण कुमार सैनी, शेखावत मंसूरी सर, ये सब हैं सर।
0: बहुत टॉप क्लास, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: अरे बहुत बड़ा वाला नमस्कार। कौन से श्रोता बात कर रहे हैं हमारे से और कहां से फोन किया आपने?
1: मैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली, पुरानी मस्जिद बरेली से बोल रहा हूँ सर जी।
0: कैसे हैं लाल मोहम्मद जी?
1: बहुत बढ़िया है जी, आप सुनाइए, आप कैसे हो?
0: बहुत बढ़िया है लाल मोहम्मद भाई। आज का हमारा विषय है अजनबी होता पड़ोसी। क्या लगता है लाल मोहम्मद भाई आपको?
1: बहुत बहुत बढ़िया विषय है। और पहले मैं मुबारकबाद दूंगा आकाशवाणी बरेली को इतना अच्छा और खूबसूरत टॉपिक बनाने के लिए, क्योंकि आजकल जो हमारे पड़ोसी हैं
0: हाँ
1: वो ऐसे लगते हैं कि जैसे कि नए बसे आके किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता, किसी को किसी से दुआ सलाम नहीं, किसी
0: हाँ
1: की तरफ देखना भी इंसान पसंद नहीं करता है। और रहता पड़ोस में है मान लीजिए, तो ऐसे पड़ोसी से क्या फायदा। पहले जो पड़ोस हुआ करता था
0: छोटी छोटी चीजें जो बड़ा रोल प्ले करती थी।
1: जी सर, क्योंकि अपने कुछ दिनों पहले आप मतलब 8-10 साल पीछे जाइए तो मैंने अपनी आंखों से अपने पड़ोस में खुद ये देखा था कि जैसे मतलब एक माचिस जैसी चीज भी किसी के पास नहीं होती थी, तो जब देखते थे कि उसके यहाँ से धुआं निकलना शुरू हो गया यानी कि उसकी आग जल गई, तो एक कंधे पे उसके यहाँ से
0: आंच ले
1: आग
0: लेते।
1: हम पड़ोस
0: क्या बात है,
1: आता था,
0: क्या
1: इतनी
0: बात,
1: मोहब्बत थी हमारे
0: क्या
1: साथ।
0: बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात।
1: अब ये सारी चीजें लुप्त हो गई, ये गायब हो गई, लेकिन अब पड़ोसी से पड़ोसी को मतलब नहीं, मोहल्ले वाले से मोहल्ले वालों को मतलब नहीं।
0: नहीं देखिए ये हमेशा से देखिए लाल मोहम्मद जी, हम अगर हम अपनी बात करें प्रोग्राम में भी हम ये बात कहते हैं, कभी भी हमें कोई काम ये सोच के तो करना ही नहीं चाहिए कि दूसरा नहीं कर रहा तो हम क्यों, या हम करेंगे तो वो क्या करेगा। कुछ नहीं, हमारे पिताजी हमेशा ये बात कहते हैं कि आपको अपना हक करना है अपना। गीता में एक श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब आप कर्म करते रहिए अपना करिए।
1: तो मतलब सर बदलाव तो नहीं हो सकता ना? पहले
0: होगा,
1: सकता
0: जरूर होगा।
1: तो हो
0: ऐसा सोच के देखिए आप लाल मोहम्मद जी कि आप किसी को प्रेम मोहब्बत दें तो कोई आदमी आपको लगातार मतलब अपशब्द थोड़ी ना बोलेगा, कहीं ना कहीं कटुता खत्म होगी, कोई एक आदमी तो पाटेगा ना। तो शुरुआत जो है प्रेम मोहब्बत जो आपने कहा कि बांटनी चाहिए, एक आदमी शुरू करेगा दूसरा भी आएगा, धीरे धीरे आएगा, लोगों में परिवर्तन आएगा। भाई मान लीजिए बूढ़े में नहीं आया, बड़े बूढ़ों में आया, बच्चों में आएगा कि बताइए साहब वो हमसे इस तरह से व्यवहार करते हैं, पापा मम्मी आप लोग ऐसे व्यवहार करते हैं, बच्चे बच्चों में प्रेम बढ़ेगा, अगली पीढ़ी में ठीक होगा। क्या कहते हैं
1: जी? कोशिश करनी चाहिए और कोशिश करते भी हैं और आने वाले वक्त में भी कोशिश की जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: क्या था कि भेदभाव ना रहे और
0: तो,
1: हम जिस तरीके से पहले प्रेम मोहब्बत से रहते थे आज भी पड़ोसी उसी तरीके से रहे, पड़ोसी अनजान मन के ना रहे थे।
0: तो बिल्कुल बिल्कुल लाल मोहम्मद जी आपने बहुत अच्छी बातें की, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: देखिए गीत भी थोड़ा मिलता जुलता है कि सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं, ये दीवाना फिल्म का गाना है, ये गीत सुनवाते
0: हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: पास।
1: तो मेघा जी, कार्यक्रम में आज का विषय है हमारा अजनबी होता पड़ोसी। क्या लगता है आपको, नहीं लगता है कि पड़ोसियों में इन दिनों मोहब्बत कम हो गई है? लोग थोड़ा एक दूसरे को कम रिगार्ड देते हैं, कम बात करते हैं पड़ोसी पड़ोसी।
0: जी।
1: तो एक समय ऐसा भी था कि पास पड़ोस एक दूसरा परिवार माना जाता था, एक परिवार अपना परिवार और उसके बाद
0: पड़ोसी से, तो वही ये समझते हैं कि इन्हें हमसे कुछ लालच है, हमसे बात कर रही है या हमारे घर आ रही है इसीलिए।
1: अच्छा, तो आपको अगर ऐसा लगता है तो इस चीज को दूर करने का क्या उपाय है मेघा जी?
0: इसको दूर करने का तो कुछ उपाय नहीं है।
1: अच्छा,
0: और क्या, मेरे कुछ पड़ोसी हम जो घर में प्रॉब्लम होती है उसमें साथ देते हैं, और कुछ पड़ोसी ऐसे हैं जो मेरे घर में आते हैं।
1: अच्छा, तो खैर किसी के आने और ना आने से भी फर्क पड़ता है, जरूर पड़ता है, लेकिन हमें प्रेम भाव के साथ पास पड़ोस में रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी समस्या, कोई भी इमरजेंसी के वक्त सबसे पहले खड़ा होता है कौन? पड़ोसी। तो मेघा जी, आपने हमें फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगी?
0: मैं गीत सुनना चाहूंगी, वो एक गाना है, मुझे फिल्म का नाम तो नहीं मालूम है, मशहूर मेरे इश्क़ की कहानी हो गई, कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई।
1: बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, हमारी कौन सी श्रोता बात कर रही है और कहाँ से?
1: जी, मैं मेघा बात कर रही हूँ, बरेली से।
0: मेघा, क्या करती है मेघा?
1: जी मैं पढ़ाई करती हूँ। जी
0: किस क्लास में?
1: मैं फर्स्ट ईयर में मेरा एडमिशन होगा,
0: तो मेघा जी, कहाँ रहती हैं आप?
1: बरेली घंटा।

तो श्रोताओं, विषय है अजनबी होता पड़ोसी और सुन रहे हैं आप प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। अब हम ले लेते हैं जल्दी से कुछ कमेंट्स और आइए देखते हैं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमारी पोस्ट पर कमेंट किया है, लेकिन हमारी पोस्ट से संबंधित कमेंट्स को हम शामिल करेंगे। देखिए, शादुल सर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ कहते हैं कि आज का विषय बहुत अच्छा है, इस स्वार्थ भरी दुनिया में अजनबी होता पड़ोसी। बिल्कुल सही बात है, आजकल जो दूर है वो सिर्फ अपने स्वार्थ में सिमटा है। खासतौर पर शहरी क्षेत्र में पड़ोस अजनबी है, लेकिन ग्रामीण अंचल में आज भी पड़ोसियों में प्रेम देखने को मिलता है, अपनापन वैसे ही नजर आता है। जैसे छोटे शहरों और बड़े शहरों में काफी अंतर है, छोटे शहरों में आस पड़ोस में परिवार की तरह रहते हैं, ग्रामीण में भी क्षेत्र में भी आस पड़ोस प्रेम से रहता है। अच्छी बात कही आपने शादुल शहर से राम कुमार जी। आगे कह रहे हैं भेरूलाल बागतरिया धाकड़ उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से कि बहुत सही कहा गया, आज हम अपने पड़ोसियों को ही नहीं जानते, हमारे घर के पास हमारे मोहल्ले कॉलोनी फ्लैट में कौन रह रहा है होते हैं, किंतु शहरों में ऐसी बातें देखने को नहीं मिलती है। अच्छी बात कही आपने भेरूलाल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। और आगे राम सिंह जी हैं श्री गंगानगर राजस्थान से, अशोक बब्बर हैं, और आप कहते हैं कि रिश्तेदार बाद में पड़ोसी मुसीबत में सबसे पहले काम आता है, हालांकि अपवाद को छोड़ दें तो आज भी ये बात सभी पर लागू होती है जी। और आगे बढ़ रहे हैं तो ये बात हमसे की है बुलंदशहर से उमेश कुमार गौड़ रानीगौड़, और आप कहते हैं कि रिश्तेदार बाद में पड़ोसी पहले मुसीबत में काम आता है, और भाई हमें खुद से भी गौर करना चाहिए दूसरे में कमी निकालने से। पाल सिंह चौहान और आपके परिवार के सभी साथी है, और आप कहते हैं कि एक अच्छा विषय है श्रोताओं के साथ रखने का, आपका धन्यवाद से काम नहीं चलेगा कृष्णपाल जी, तो आपको अपनी बात भी करनी चाहिए। फिलहाल हमारे नियमित श्रोता और अच्छा कमेंट सदैव दिल से करने वाले कमेंट करते हैं आप, और अपने पास से शब्दों को लिखते हैं ना कि कॉपी पेस्ट करते हैं। और आप हैं प्रवीण चौहान, कहते हैं आजकल लोग अपने कार्यों में बहुत व्यस्त हैं, इसलिए वे अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में किसी पड़ोसी से बात नहीं कर पाते, जिसके कारण पास होकर भी दूरियां बनी रहती हैं। बहुत सुंदर इंपॉर्टेंट बात कही आपने प्रवीण चौहान जी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर दास जी की ये पंक्तियां बिल्कुल प्रासंगिक है आज की डेट में, कि लाख आप पढ़ लिख लीजिए, लाख बड़ी बड़ी नौकरी

0: या कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आपने ढाई अक्षर प्रेम का नहीं पढ़ा है तो आप प्रताड़ विद्वान ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। तो प्रेम सदैव चहुं ओर फैलाइए, प्रकृति के साथ प्रेम करिए, पड़ोसियों के साथ प्रेम व्यवहार करिए, उनसे मधुर भाषा में बात कीजिए, बच्चों से, समाज में, रिश्तेदारों से, और आज का हमारा विषय भी यही कहता है कि अजनबी होता पड़ोसी तो उन्हें बचा लीजिए।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में 4:45 हो रहे हैं और आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम बरेली राउंड अप।

0: बरेली राउंड अप कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र कुमार मिश्र का सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस अंक में है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के महोत्सव के क्रम में पूरे भारत वर्ष के आकाशवाणी केंद्रों में आयोजित की गई वाकाथन पैदल दौड़ और आकाशवाणी बरेली ने मनाया अपना 34वां स्थापना दिवस। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के महोत्सव के क्रम में पूरे भारत वर्ष के आकाशवाणी केंद्रों में आयोजित की गई वाकाथन के क्रम में स्थापना दिवस के अवसर पर सुबह 6 बजे योग शिक्षक ऋतु चौधरी और कनिका चौधरी ने योगाभ्यास करवाया। इसके साथ ही योग सत्र का शुभारंभ हुआ। उसके बाद वाकाथन सामूहिक पैदल दौड़ ITBP तक और वापस आकाशवाणी बरेली परिसर तक आयोजित की गई। इसमें अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता, डॉक्टर, श्रोताओं और आम जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। श्रोताओं, पथ संचालन में यातायात पुलिस से TSI कपिल राघव, प्रीतम सिंह, रविंद्र चौहान, शहाबुद्दीन, अर्जुन सिंह, चंद्रवीर का योगदान रहा। इस अवसर पर स्थानीय केंद्राध्यक्ष आकाशवाणी बरेली श्री मिथिली श्रीवास्तव ने कहा,
1: भारत माता के भारत माता के भारत माता के भले ही हम संख्या में इतने कम हो, लेकिन हमारी आवाज आसमान तक जानी चाहिए। भले ही संख्या में हम कम हो, भले ही संसाधन हमारे पास कुछ कम हो, लेकिन हम होंगे नंबर वन। बुलंद आवाज, आप सभी श्रोताओं का इतना प्यार है कि हमारी आवाज इतनी बुलंद हो सकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने का, खासतौर पे प्रदीप पाल आपका। आप जो है बहुत कई सालों से आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं और लगातार रेडियो सुन रहे हैं। और ओखेलाल मौर्य जी, आप जो है पूरे शहर में मिठास बांटते हैं और साथ ही साथ आप जो है अपने ठेले पे आकाशवाणी बरेली भी चलाते हैं, जो लोगों के कानों में मिश्री घोलती है जी। और साथ में राम प्रसाद शर्मा जी, बहुत पुराने श्रोता हैं। शर्मा जी, आप हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि कोई प्रोग्राम में कोई त्रुटि तो नहीं हो गई, और उसके लिए आपने एक रजिस्टर बना रखा है जहाँ तक मुझे पता है। और रजिस्टर में एंट्री होती है कितने बजे कौन सा प्रोग्राम गया, किसने पेश किया और कौन सा गाना शामिल हुआ, उसमें लेटर भी लिखते हैं, अनुरोध गीत है उसमें भी लिखते हैं। आपकी फरमाइश पे भी आप सभी श्रोताओं के कमेंट्स आते हैं। और लाल मोहम्मद अंसारी साहब करेली रहते हैं, पूरा करेली इन्हें जानता है। रेडियो नाम लिया जाए तो सबसे पहले लोगों के जहन में किसका नाम आएगा, लाल मोहम्मद अंसारी जी। हाँ, और इन्होंने क्लब भी बनाया हुआ है वहाँ करेली में, जितने रेडियो के श्रोता हैं उनके आकाशवाणी के शुभचिंतक हैं, एक क्लब बना हुआ है और उस क्लब में आप सभी लोग साथ मिलके आकाशवाणी बरेली सुनते हैं। और सबसे अच्छे से जो हमारा सबसे अच्छी बात है, आप सभी श्रोताओं में समालोचक बड़े अच्छे अच्छे सबसे अच्छे समालोचक

0: मैं कहूंगा लाल मोहम्मद अंसारी हैं हमारे बीच, एक बार तालियां हो जाए उनके लिए। तो जब कभी भी वैसे ही हम आकाशवाणी के आप सभी परिवार के लोग हैं, आप लोग हमारा इतना ख्याल रखते हैं, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया है, धन्यवाद है आप सबका।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अधिशासी आकाशवाणी बरेली श्री गौरव सक्सेना जी को, जिन्होंने सबका आभार प्रकट किया और धन्यवाद देते हुए कहा।
0: श्री मिथिलेश जी जो हमारे यहाँ खेल प्रमुख भी हैं, उनके निर्देशन में ये कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरती से संपन्न हुआ और इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारी तकनीकी टीम का भी, जिन्होंने अपने तकनीकी सहयोग के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न होने में अपनी महती भूमिका निभाई। शुक्रिया बहुत बहुत यातायात पुलिस का भी, जिन्होंने अपने सहयोग के माध्यम से न केवल यातायात को सुचारू रूप से चलाए रखा, वरन हमारी जो वाकाथन थी इसको भी सरलता से, मतलब सभी श्रोताओं का भी आभार जो यहाँ पर नहीं आ सके लेकिन लगातार रेडियो सेट्स के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो इसी तरह से जिस तरह से आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, इसी तरह चलते रहिए, हमारी जो प्रतिबद्धता स्वच्छ मनोरंजन के लिए लगातार बनी रहेगी और हमारी कोशिश में लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: विगत 17 जून 2026 को आकाशवाणी बरेली का स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर केंद्र अध्यक्ष आकाशवाणी बरेली श्री मिथिलेश श्रीवास्तव, कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी बरेली श्री गौरव सक्सेना, वरिष्ठ अभियांत्रिकी प्रमुख श्री अतुल सक्सेना, श्री अशोक कुमार, श्री अशोक झा, श्री सुधीर विल्सन जी और अन्य उद्घोषकों और कंपेयर के द्वारा केक भी काटा गया। साथ ही साथ एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी बरेली की स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मशहूर फिल्म अभिनेता श्री संजय मिश्रा जी ने अपने दिल से आकाशवाणी बरेली के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा,
1: ये आकाशवाणी, अब आप संजय मिश्रा से दिल का हाल सुन। दिल का हाल ये है कि आकाशवाणी बरेली का स्थापना दिवस और मैं आकाशवाणी की तरफ से, अपनी तरफ से उन तमाम आकाशवाणी सुनने वालों को धन्यवाद। थैंक यू, सुनते रहिए, आकाशवाणी हमारा है, हमको इसे बताना है। थैंक यू बरेली।
0: 100.4 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का बरेली केंद्र। जी हाँ, अब आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी बरेली के केंद्राध्यक्ष श्री मिथिलेश श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने अपने अनाउंसर, कंपेयर और अपने श्रोताओं को अथाह सम्मान दिया है।
2: आप सभी हमारे दिल के करीब सभी साथी और आप सभी हमारे बीच जो श्रोता हैं, वो हमारे आकाशवाणी के दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि जो हमें सुनता है आकाशवाणी बरेली, जो सुनता है वही हमारे, अगर देखा जाए, हम लोग बेचते हैं प्रसारण, मनोरंजन जानकारियां देते हैं, तो जो उसके ग्राहक हैं, जो सुनना चाहते हैं, जो सुन के रिस्पॉन्स करते हैं, वही हमारे असली कस्टमर हैं। और उनमें से ऐसे बहुत सारे श्रोता पूरे शहर में, गांव गांव में फैले हुए हैं। बहुत सारे लोग, कई बार होता है कि आप लोगों के पास पोस्टकार्ड, पहले तो अनोखे लाल जी जो है पोस्टकार्ड की फोटो खींच के उसको मेल करते हैं और ये उन्होंने सीखा है। तो ये सब जो टेक्निक आई है, बदलते दौर में हमारे श्रोता भी अपने आप को धीरे धीरे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और रामप्रसाद शर्मा जी हैं, आप भी पहले लेटर लिखते थे और अभी भी वो ईमेल पे स्विच नहीं कर पाए हैं, लेकिन हाँ, आपके, हाँ, किसी दूसरे से कमेंट करवाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे आप सभी श्रोताओं से, आपके माध्यम से हम बरेली, आकाशवाणी बरेली के सभी श्रोताओं तक ये हमारा संदेश पहुंचाइएगा कि बदलते वक्त के साथ हमें बदलना होगा। बीते जमाने की बातें बहुत हो गई हैं, हमें आगे बढ़ना है और हमारे साथ जो कंपटीशन है, बीता जमाना ऐसा था पूरे देश में भी केवल आकाशवाणी ही था और अब वो वक्त है कि केवल आकाशवाणी नहीं है, बहुत सारे कंपटीटर्स हैं और ऐसे में हमें आगे कैसे रहना है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आगे ही नहीं, आने वाले वक्त में, जैसा कि मैं बता दूं, अभिनेता जो संजय मिश्रा जी का जो वीडियो आया है, आखिरी पंक्ति

0: कि क्या है, अगर गौर करें आप लोग, बचाना है। उस बचाना है में बहुत कुछ छुपा हुआ है। हमारे सामने बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं, इसलिए हमें फोकस होके काम करना होगा, सीरियस होके काम करना होगा। और मुझे लगता है आकाशवाणी के किसी भी केंद्र से, किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति जुड़ा है तो वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं जुड़ा है। यहाँ हम आकाशवाणी से जुड़े हैं तो कुछ खास मकसद से जुड़े हैं, सम्मान के लिए जुड़े हैं, लोग आपको पहचानेंगे।
1: आकाशवाणी परिसर में आए हुए सभी अतिथियों को आकाशवाणी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर स्थापना दिवस का उद्देश्य बताते हुए कार्यक्रम अधिशासी आकाशवाणी बरेली श्री गौरव सक्सेना जी,
0: स्थापना दिवस का एक उद्देश्य ये भी होता है कि जो पिछला जो भी किया गया है 33 सालों में जहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं उसमें किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता, बहुत सारे बहुत छोटे छोटे प्रयासों का, बहुत बड़े प्रयासों का, हमारे अधिकारी कर्मचारी या हर व्यक्ति जिसने एक ईंट भी यहाँ पर रखी है उसका योगदान को याद करना और उनसे प्रेरणा लेना भी होता है। और वैसे भी अभी 33 साल का हुआ है, अभी जवानी आई है आकाशवाणी की और अभी बेस्ट आना इसका बाकी है, इसके लिए हम लोग निश्चित तौर पर आगे और बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इस अवसर पर गौरव सक्सेना जी ने ये पंक्तियां सुना करके सभी का मन मोह लिया।

0: होगा।
1: इस अवसर पर नारी संसार की कंपेयर श्रीमती भावना कंचन ने कहा,
2: और स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आकाशवाणी की बात करें तो 33 वर्ष हो चुके हैं और 34वां लग चुका है, और इसी श्रेणी में यहाँ से जुड़े हुए मुझे 21 वर्ष हो गए और 22वां लग चुका है। अगर मैं बात करूं उस समय की, जिस समय मैं उद्घोषक के रूप में यहाँ पर कार्यरत थी, तो काफी कुछ मुझे सीखने को मिला। सबसे बड़ी चीज जो सीखने को मिली वो थी पंचुअलिटी, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, एक एक सेकंड का हिसाब रखना। दूसरा, अपने शब्दों पर संयम किस तरीके से रखना चाहिए, ये चीज समझ में आई। हमारे मन में, मस्तिष्क में हजारों तरीके के विचार चलते रहते हैं, लेकिन हमें अपने मुख से किस तरीके के विचार निकालने हैं, क्या क्या बोलना है जो इफेक्टिव हो और पॉजिटिविटी दे, वो सबसे ज्यादा सीखने को मिला। कि घर में कुछ भी हो रहा हो, किसी भी टेंशन में हो, लेकिन जब हम माइक के सामने हैं तो हम अपने श्रोताओं के लिए समर्पित हैं।
1: बहनों भाइयों, छोटा सा नाम देवेंद्र रावत, लेकिन इनका नाम है देवेंद्र प्रताप सिंह रावत। इनकी आवाज को आप पहचानते होंगे, तो सुनिए क्या कहते हैं।
3: आकाशवाणी के स्थापना दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामना। रेडियो से हमारा परिचय हुआ था, हमारे पिताजी की जब शादी हुई थी तो एक मर्फी का रेडियो मिला था, तो बचपन से उसको देखते आए हैं और तभी से उस आवाज की ओर खिंचाव सा महसूस करा, उससे जुड़े। और बरेली के लिए एक बहुमूल्य तोहफा है आकाशवाणी बरेली।
1: श्रोताओं, ये है आकाशवाणी बरेली से प्यार करने वाले अनोखे लाल मौर्य जी, जो अच्छे श्रोता हैं, बड़े मन से दिल से सुनते हैं आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम।
4: मैं 1993 से आकाशवाणी बरेली से जुड़ा हुआ हूँ। मैं हर साल आकाशवाणी बरेली को शुभकामनाएं देने आता हूँ। मैंने इससे सब कुछ सीखा है और अपना परिवार मानता हूँ मैं इसे। आज मुझे बड़ा खुशी हुई मुझे बात करने की, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी बरेली के लिए 17 जून की। नमस्कार।
1: और अब आज का ये कार्यक्रम बरेली राउंड अप यहीं पर समाप्त करने के लिए रविंद्र

अभी आप सुन रहे थे राउंड अप, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज रहे हैं और आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी देते हैं हमारे आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोताओं, अब से कुछ देर बाद यानी कि शाम को 5:05 से आप सुनेंगे भजन संध्या। कार्यक्रम मन भावन लेकर हाजिर होंगे शाम को 5:30 पर। 5:45 पर सुनवाएंगे कार्यक्रम जय जवान, जिसमें आज हमारे मेहमान हैं कैप्टन शेर सिंह बिष्ट। शाम को 6:00 वैभव मिश्रा के साथ सुनिए प्रोग्राम युवाणी, जिसमें होगा आज का सवाल कुछ खास है आज और हेलो फ्रेंड सेगमेंट। श्रोताओं, शाम को 6:30 पर सुन सकेंगे आप आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले मैच का ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण जिस तरह रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से शाम को 6:30 पर। तो श्रोताओं, ये तो था विवरण हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों का। अब आइए जानते हैं कल की सभा में कौन कौन से कार्यक्रम प्रसारित होंगे। सुबह 8:15 पर लेकर हाजिर होंगे प्रोग्राम नमस्ते बरेली, संजय मठ के साथ। 8:45 पर सुनेंगे कार्यक्रम लोक गीतों का। सुबह 9:00 से रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। प्रायोजित कार्यक्रम का समय रहेगा 9:30 पर। सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का प्रोग्राम आपकी पसंद सुन सकेंगे आप सुबह 10:00 से। कार्यक्रम सबरंग लेकर हाजिर होंगे 11:00। 11:30 पर रिले करेंगे FM रेनबो के प्रोग्राम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। श्रोताओं, सुनना न भूलिएगा आपके फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का प्रोग्राम अनुरोध गीत रोजाना की तरह 1:00 से सुनिए इस पूरा कार्यक्रम को। कार्यक्रम रसरंग का समय रहेगा 2:00 से। 3:30 पर लेकर हाजिर होंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। आपकी बात आकाशवाणी के साथ, जी हाँ, इस कार्यक्रम को सुनेंगे आप शाम को 4:00 से। 5:05 पर लेकर हाजिर होंगे भजन संध्या। कार्यक्रम नारी संसार सुनवाएंगे आपको शाम को 5:30 पर, जिसमें होगी चर्चा वार्ता ब्यूटी टिप्स और सेगमेंट होगा इनसे मिलिए। जो कल वार्ता होगी उसका विषय है शिक्षा ही एक नींव, वार्ताकार है सविता रानी आर्य। प्रज्ञा पाठक के साथ सुनिए प्रोग्राम युवाणी शाम को 6:00 से, जिसमें होगा आज का सवाल कुछ खास है आज और सेगमेंट धूमधड़ा का। 6:30 पर सुनवाएंगे कार्यक्रम ग्राम जगत, जिसमें होगी चर्चा, विषय है मिलकर चलें। प्रोग्राम में ही होगी एक वार्ता जिसका विषय है वृक्षारोपण आज की आवश्यकता। अलका कन्नौजिया है वार्ताकार और सुनेंगे आप लोग गीतों को। शाम को 7:00 समय रहेगा कार्यक्रम अक्षयवट का और 7:31 पर सुन सकेंगे अपना पसंदीदा फिल्म संगीत का कार्यक्रम अनुरोध गीत। रात्रि 8:00 से रिले करेंगे आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। तो श्रोताओं, ये तो था विवरण हमारी कल की सभा में प्रसारित और रिले होने वाले प्रोग्राम्स का।

0: तेरा।
1: आप सुन रहे हैं भजन संध्या
0: हकीकत में,
1: निखिल विनय की आवाज में लेकर आ रहे हैं ये मधुर भजन।
0: दर तो हकीकत में

सुधीर व्यास की मधुर आवाज में लेकर आ रहे हैं आपके लिए ये भजन, ये चमक ये दमक, सब कुछ सरकार तुम ही से है।

भजन संध्या सुन रहे हैं आप ट्यून के 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। प्रोग्राम में हूँ मैं आपके साथ ब्रजेश तिवारी। स्वाति मिश्रा के मधुर स्वर में लेकर आ रहे हैं ये देवी गीत।

प्रेम भूषण जी महाराज के गाए इसी भजन के साथ कार्यक्रम भजन संध्या अब यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो रहे हैं और समय हो गया है, जी हाँ, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल समझ गए ना, हाँ, मनभावन का। जी हाँ, प्रोग्राम मनभावन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम हमेशा से ही ये बात कहते हैं कि भाई, जो भी प्रोग्राम है, जो भी मनोभाव है, वो हम शामिल तो करते ही हैं आपके, बस थोड़ी सी एक जिम्मेदारी हमारी तरफ भी आपकी ये बनती है कि प्रोग्राम्स जो हमारे नियमित रूप से आपके लिए संचालित

समझ गए ना? हाँ, मनभावन का। जी हाँ, प्रोग्राम मनभावन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम हमेशा से ही ये बात कहते हैं कि भाई, जो भी प्रोग्राम है, जो भी मनोभाव है, वो हम शामिल तो करते ही हैं आपके। बस थोड़ी सी एक जिम्मेदारी हमारी तरफ भी आपकी ये बनती है कि प्रोग्राम्स जो हमारे नियमित रूप से आपके लिए संचालित हो रहे हैं, उसमें अपनी प्रतिभागिता जरूर दिखाएं। प्रतिभागिता जिस भी माध्यम से मांगी जा रही है, उस माध्यम से, जैसे कि पत्र हैं तो पत्र भी भेजिए, और अगर हम लोग डिजिटल माध्यम से मांग रहे हैं तो डिजिटल माध्यम से भी दीजिए। जैसे कि मनभावन को अगर डिजिटल पोस्टर से माध्यम से मांग रहे हैं तो वहाँ पर अपनी बातें लिखिए, और लेटर्स हैं तो लेटर के तो क्या ही कहने। हालांकि हमारे पास ये प्यारे प्यारे जो पत्र हैं, ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि हमारे और आपके बीच का ये जो प्रेम है, ये निश्चित रूप से प्रगाढ़, और समय के साथ और प्रगाढ़ और प्रगाढ़ और प्रगाढ़ होता ही जाएगा और होता ही रहा है। फिलहाल हमारे नियमित श्रोता हैं आप, और आप हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी और आपके सभी साथी। आप कहते हैं मन भावन में मनो के भाव को लिखते हुए, कहते हैं ये जो बादल है ना, ये हमारे जीवन से मिली जुली बातें करते हैं। अच्छा, आपके शब्द जरूर थोड़े से समझने में तकल्लुफ है, लेकिन इसकी बातों के पीछे का अर्थ बड़ा ही गहरा और बड़ा मजेदार है। आप सभी श्रोताओं को बहुत मजा आएगा। कहते हैं कि बादल को अगर आप जीवन से जोड़कर देखिए, तो जैसे कभी धूप, कभी छांव, कभी तेज गर्मी, कभी एकदम बादल, कभी, तो ये हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी घोर दुख तो कभी घोर सुख। ऐसा लगता है कि बस जीवन यहीं संपन्न हो जाए। मतलब कितनी गहरी बात कही है आपने रियासत भाई, और आपका हम इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरह पत्र लिखते रहिए। आपने सुनना चाहा है अपनी पसंद का गीत, तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओ, आपने ट्यून किया है 100.4 FM, सुन रहे हैं प्रोग्राम मनभावन। और प्रोग्राम के मनभावन की प्रोग्राम में ये जो अगली प्रस्तुति है, यानी जो अगला पत्र हम पढ़ रहे हैं, ये हमें बरेली जंक्शन से लिखा है प्रदीप पाल नमन और बड़े गरीब भाई ने। और आप लोग कहते हैं, वैसे ये हमेशा पर बड़े पते और ज्ञान की बात कहते हैं, ऐसे में आपका कहना है कि इन दिनों हम सब आपस में महसूस कर रहे हैं कि गर्मी बहुत हो रही है। और ये सिर्फ महसूस करने वाली बात नहीं है, हम सबको अपनी जिम्मेदारी लेने वाली बात है, पानी के बचत की बात है, जल को पूजने की बात है। क्योंकि आपने यहाँ बड़ी सुंदर एक बात ये भी लिखी है कि अभी इन दिनों हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे देशों में युद्ध हो रहा है तेल को लेकर के, है ना। वेनेजुएला की बात करें, चाहे इसराइल, चाहे अमेरिका ईरान युद्ध की बात करें, इस तरीके की, मतलब देखा जाए तो वो सारी चीज़ों की लड़ाई आप देखेंगे तो कुछ चुनिंदा चीज़ों की है। लेकिन आप कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब अगला जो संकट आएगा वो जल के ऊपर है, और आ चुका है बहुत सारी जगह पे। तो हम सबको अपने मनोभाव मनभावन के अंतर्गत लिखते हैं कि हम सबको जल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए जल का दोहन बिल्कुल नहीं करना है, जल का संरक्षण करना है और बड़े ही हिसाब से उन्हें खर्च करना है। जो काम एक बाल्टी में हो सकता है, उस काम के लिए 1,000 लीटर बर्बाद कर देना पानी, ये कहाँ की समझदारी है। बहुत सुंदर बात कही है प्रदीप पाल आपने और गरीब भाई आपने, और आप लोगों ने सुनना चाहा है ये राम भजन। आइए सुनवाते हैं आप सभी की पसंद पर ये भजन।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मन भावन और प्रोग्राम के अंत में ये जो लेटर हम पढ़ रहे हैं हमारे नियमित श्रोता उल्ला जागीर से, इसे लिखा है फजरुद्दीन और आपके सभी साथियों ने। मन भावन की बात कर रहे हैं ये तो आपने बड़े ही कच्चे शब्दों में अपनी बात कही, बड़े ही देशी अंदाज में अपनी बात कही कि नेकी करना हमेशा जो है आपके जीवन में आपका मार्ग प्रशस्त करता है। एक बार इन्होंने कभी किसी रात के अंधेरे में बताते हैं कि मैंने अपने किसी राहगीर की मदद की थी और जब रास्ता चलते मेरी एक बार तबीयत खराब हुई तो न जाने उस सुनसान रास्ते पे पता नहीं कौन कहाँ से आया और उन्होंने मुझे पानी पिला के मेरी मदद की। तो नेकी हमेशा साथ देती है और साथ देना के लिए हमें नेकी करनी भी होगी। बड़ी अच्छी बात कही आपने फजरुद्दीन जी, आप हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, अपने पत्र भेजते रहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुनना चाहा है अपनी पसंद का ये गीत, तो सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

फिल्म रागिनी MMS 2 के इसी सॉन्ग के साथ प्रोग्राम मनभावन अब यहीं संपन्न होता है। प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी मनुभाव को लिखते रहिए, प्रोग्रामों में पत्र आपके आते रहने चाहिए और आप कार्यक्रम से जुड़े रहिए। तो प्रोग्राम अब यहीं संपन्न करने की मुझे यानी ब्रजेश को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार, और बज रहे हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:45 और आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम।

0: जय जवान, जिसमें आज के हमारे मेहमान हैं हमारे फौजी भाई कैप्टन शेर सिंह बिष्ट जी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जय जवान।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है ये कार्यक्रम जवानों को समर्पित है। समय समय पे हम सेना के जवानों को बुलाते हैं और उन्होंने किस तरह से सेना को ज्वाइन किया, वहाँ क्या क्या काम किया और इस समय क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें हम उनसे पूछते हैं, उनसे रूबरू होते हैं और उससे हमारे आप सुनने वाले लाभान्वित होते हैं। इसी क्रम में हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है कैप्टन शेर सिंह बिष्ट जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
2: धन्यवाद सर।
1: सबसे पहले तो हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आप मेडिकल कोर में रहे हैं और उसके बाद हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आर्मी ज्वाइन करने का ख्याल आपको कैसे आया और किस उम्र में आया, कैसे प्रेरणा मिली आपको कि हाँ सेना को ज्वाइन करना चाहिए।
2: सर मैं जब अपना स्कूलिंग में जब मैं एनसीसी के कैडेट भी रहा हूँ
1: जी
2: तो उसमें जो हमारे एनसीसी कैंप रखते थे तो कैंप के दौरान जो हमारे जो वहाँ पर इंस्ट्रक्टर होते थे जो भी हमको ले जाते थे अपने मिलिट्री एरिया में ले जाते थे, हम लोग उसमें रानीखेत में गए थे।
1: अच्छा,
2: तो अब रानीखेत में हमने भव्य परेड देखी वहाँ की जवानों की, तो उनकी उनका डिसिप्लिन उनका यूनिफॉर्म देख के प्रेरणा मिली कि यार हमें भी जो है एक दिन फौज में जाना चाहिए। तो तभी से हमें दिल में ख्याल आया कि हम भी आर्मी ज्वाइन करेंगे। तो हमें तब से जो अपना शारीरिक जो है अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया और उसके बाद मेहनत की तो दौड़ भाग किया तो फिर आर्मी में भर्ती हो गए।
1: लेकिन अब इसमें बात आई होगी कि आर्मी ज्वाइन तो करना है लेकिन कैसे करें, कौन सा एग्जाम होता है या फिर कहाँ से ट्रेनिंग लें, तो इसके लिए आपने क्या किया?
2: उसके लिए सर हमारा जो बीआरओ अल्मोड़ा से भर्ती हुआ तो हमारे जो पहले हमसे जो हमारे जो बड़े जो एल्डर होते थे वो जाते थे भर्ती के लिए, तो उनसे पूछते थे कैसे जाते हैं क्या जाते हैं
1: जी।
2: या जो हमारे आर्मी के जवान जो पहले छुट्टी आते थे उनसे पूछते थे सर आप कैसे अप्लाई किया क्या किया। उसमें क्या होता था कि आजकल ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता था, उसमें सीधे जाते थे बीआरओ में जाते थे, वहां पर जो सूचना लिखी रहती होती थी कि इतनी तारीख को भर्ती है और अपना सर्टिफिकेट लेके आप लोग 10वीं का मार्कशीट या सर्टिफिकेट लेके आइए, तो सीधे लाइन में खड़े होते थे अपना सीधे वहाँ पर अपना नाप तोल होती थी और अपना हाइट मेजरमेंट वेट का सब नापा। उसके बाद जो है मेडिकल हुआ तो टेस्ट के लिए डेट देते थे वो लोग, टेस्ट में निकलने बाद घर में फिर पोस्टमैन जो है कॉल लेटर लेके आता था और तब जाके हम सेंटर में रिपोर्ट करते थे।
1: तो पहली बार में आप सिलेक्ट हो गए?
2: मैं पहली बार में हो गया था सर।
1: अच्छा,
2: मैं सन 1987 में भर्ती हुआ था तो उसी समय मैं 27 अक्टूबर को भर्ती हुआ था।
1: 27 अक्टूबर को
2: 1987
1: ऐसे। फिटनेस में क्या क्या देखा गया आपका?
2: फिटनेस में होता है सबसे पहले से रनिंग होती सर,
1: रनिंग होती
2: रनिंग करती है उसमें 1.6 किलोमीटर रनिंग होती है, उसके बाद बीम खिंचवाते हैं।
1: अच्छा,
2: उसके बाद जो गड्ढा पार कराते हैं तो उसमें सब उसका स्टैंडर्ड बना हुआ है एक्सीलेंट गुड करके होता है तो उस हिसाब से वो पूरा करना पड़ता है।
1: तो इसके लिए आपने जो फिजिकल फिटनेस के लिए आपने तैयारी की होगी तो खुद से की या कहीं ज्वाइन किया था?
2: खुद से सर,
1: खुद से।
2: क्या था सर, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई होते नहीं थे। उसमें क्या थे, हम लोग स्कूल पढ़ते थे सुबह 4 बजे उठ जाते थे और सुबह पहले गाँव में क्या होता है, गांव में जो है बच्चों में एक कॉम्पिटिशन होता है तो गांव के सुबह उठेंगे अपना सुबह अपना फ्रेश होके अपना सुबह गए दौड़ने के लिए 4-5 चक्कर मारे और जो बीम वीम खींचे अपना लकड़ी का ऐसे बांध के रंबरेली तो उसमें आदमी फिट रहता था।
1: और तो उसके बाद एएमसी आपको मिल गया। अच्छा, आप बात करते हैं आपके आर्मी में जो आपने काम किया उसकी बात करते हैं, किस तरह के आपके अनुभव थे अपने करियर के काम के दौरान आर्मी में जो भी आपका रहा, कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही?
2: हाँ सर।
1: और कोई ऐसा अनुभव जो आप बताना चाहें?
2: आर्मी में सर मैं पहले तो हम मेडिकल प्रोफेशन में आते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, हमारा काम लड़ाई का भी काम है, दो लड़ाई होती है हमारे हमेशा, लड़ाई काम और दूसरा जवानों के साथ जो घायल हो जाते हैं उनको बचाने का काम
1: जी,
2: तो हाँ उनका इलाज। जो हम कहीं भी ट्रेनिंग होती है, पहले हमारी बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, हॉस्पिटल में ट्रेनिंग भी होती है, मरीज के साथ जो है प्रैक्टिकल भी होते हैं और बहुत काम करना पड़ता है तो काफी इतना आदमी को मतलब इतना ट्रेनिंग देते हैं कि आदमी फुली मतलब क्वालिफाइड हो जाता है। तो उसके बाद फिर हम लोग फिर आगे फिर जाते हैं सर, पूरे ट्रेनर हो जाते हैं सोल्जर, तो फिर हम जाते हैं अपने आगे बॉर्डर एरिया में फील्ड एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारी भी इन्फेंट्री बटालियन होती है जो लड़ाई की जो फौजें होती हैं
1: जी,
2: तो उनके साथ हमको फिर पोस्टेड किया जाता है। जैसे एक बटालियन है तो उसके साथ 2 मेडिकल के होंगे, 1 डॉक्टर होगा, तो उनके साथ हम पूरा अपना तैयार के साथ उनके साथ 3-4 साल ऐसे उनके साथ रहते हैं पोस्टिंग, तो उन जवानों के साथ फिर हम वहाँ जाके उनके साथ उनके माहौल में ढल जाते हैं। जैसे कोई कुमाऊं रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है या कोई सिग्नल यूनिट है तो इनके साथ जो है फिर उनके कोई जाट रेजिमेंट है तो उनके साथ फिर पूरा 3-4 साल रहते हैं। तो जवान के साथ कोई जवान कहीं हमने कहीं लड़ाई में जा रहे हैं, कहीं बॉर्डर एरिया में

0: पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं या कहीं मिलिटेंट्री के जो आर आर बटालियन है उनमें मिलिटेंट के साथ इंटरकाउंटर के लिए जा रहे हैं, तो उसमें हमारा एक मतलब एक नर्सेंट है जो एम्स का बंदा जो होगा वो पक्का जाएगा,
1: पक्का जाएगा।
0: और उसका क्या होता है, डबल काम हो जाता है उसका। हमारे पास पूरा सामान है सर, हमारे पास राइफल भी है, एमिनेशन भी है, और अपना ब्रेडपुर जैकेट वगैरह मतलब पूरी तैयारी है, वो सबके पास है। ये हमारे पास एडिशनल क्या था, हमारा मेडिकल प्रोफेशन का सामान होता है पूरा।
1: जी जी, मतलब आप डॉक्टर भी हैं और
0: सैनिक भी हैं,
1: बिल्कुल डबल आपका प्रोफाइल।
0: उसमें क्या होता है, जैसे अभी साथ में हम जवान के साथ जाते हैं तो उनको हिम्मत रहती है, एक प्रकार मैंने देखा, मैंने तुझे देखा क्या लड़ाई लड़ते हैं यार, हमारे साथ तो ये बिस्टे सर है या एएमसी के बंदे हैं, हमारे कुछ नहीं होगा, तो कॉन्फिडेंस होता है सर। एक बचाते गोली तो ये नहीं सोती कि बंदा एएमसी का है या कोई जो जवान इन्फेंट्री का है, गोली तो जहाँ जाएगी जो छोड़ेगी नहीं, तो उनके साथ इतना घुलमिल जाते हैं हम लोग, उनको विश्वास था कि मेरे साथ जो है डॉक्टर साहब हैं या मेरे साथ नर्स असिस्टेंट हैं,
1: कुछ भी होगा कुछ तो डॉक्टर साहब
0: बचा लेंगे,
1: बचा लेंगे।
0: तो ऐसे जो फिर एक बार हमारा कोई लेक्चर चल रहा था तो हम लेक्चर भी लेते हैं उनको, जैसे जवानों को फर्स्ट एड के बारे में सिखाते हैं, अपना शरीर हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है, हाइजीन सैनिटेशन ये बारी चीजें उनको मेंटेन करते हैं। दूसरा भी हमारा एक्सपीरियंस रहा, फिर मैंने एएमसी का एक सोल्जर होने के नाते फिर मैंने पैरा कोर्स भी किया सर।
1: अच्छा,
0: पैरा कोर्सिंग किया, पैरा जो ड्रॉपिंग करते हैं तो पैरा के साथ मैं मेरी फर्स्ट पैरा में रहा पहले, फिर 21 पैरा एसएफ जो कमांडो है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक किया था उनके साथ में हम रहे।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो उसमें मैं जो कारगिल की लड़ाई हुई थी उसमें मेरा बहुत बड़ा एक अचीवमेंट मैं लाइफ का सोचता हूँ अपना,
1: उस लड़ाई में थे
0: उस लड़ाई में एकदम एक्टिव रूप से मैं था, उसमें 21 पैरा एसएफ जो कमांडो यूनिट है उसमें पोस्टेड था। उसमें जब हम लड़ाई में गए तो मुझे वहां पर पहली बार लड़ाई देखी थी।
1: अच्छा,
0: जो लड़ाई होती है दूसरे देश के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो वहां पर जो है जाते थे, जैसे अपना टाइगर हिल जो कैप्चर किया था, कुछ पहाड़ियां और थी, मास्को वैली है, टोलोइन है, 24/7 ऐसे पहाड़ियों के नाम है, तो वहां पर जनजीवन कुछ है नहीं, पेड़ पौधे कुछ है नहीं,
1: बिल्कुल।
0: तो पहाड़ियां में सिर्फ गोली मार मार के पहाड़ियों को मतलब ऐसे लाल कर रखा है, तो वहां पर काफी उस समय काफी कजोल्ड भी हुआ और लोगों में उत्साह भी था, डर भी था, तो इस टाइप से वहां पर हमारे को भी मतलब बहुत जगह जाने का टाइम मिला। तो उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर होते थे हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो भी वहां आए थे, उनसे भी मिलने का सौभाग्य मिला। तो लड़ाई वहां पर ऐसी थी कि जवानों के साथ जाते थे तो उनको हौसला रहता था कि हमारे साथ जो है मेडिकल के डॉक्टर साहब हैं, तो हम लोग डॉक्टर साहब ही बोलते सबको, तो उनके साथ रहते थे और अपना भी ध्यान देते थे। तो जब वहां पर कम से कम 2-3 दिन के लिए जाते थे कि हमको इस पहाड़ी को कैप्चर करना है, तो पहाड़ी को कैप्चर कर लिया, जैसे उसमें कमांडो वाले यूनिट भी गई, इन्फेंट्री भी गई, जॉइंट ऑपरेशन बोलते हैं उसको, तो बहुत सारे होते हैं जो हमारे बड़े कमांडर होते हैं उनके अंडर में होता है सर काम। तो वहां पर क्या होता है, सबसे बड़ा अनुभव लगा कि मुझे, जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं कि यार मैं तो जाट का हूँ, वो सिग्नल का हूँ या मैं दूसरी यूनिट का हूँ, वहां पर क्या होता है, हम पूरा एक फैमिली एक फौज के हैं। हमारा मकसद है कि हमारा देश है हिंदुस्तान,
1: बिल्कुल है भी
0: उसको बचाना है,
1: बिल्कुल है भी।
0: वहां पर ये नहीं था सर कि मैंने आपके उधर से आपके लंगर से क्या खा लिया, अब उनके लंगर से क्या खा लिया, कुछ नहीं बोला सर, इतना होता सर अपना सब, हर एक आदमी बोलता सर आप कहाँ के रहने वाले हो, कौन से नोट के हो, सर अपना ध्यान देना और हिम्मत रखना,
1: हिम्मत
0: एक दूसरे को, जब खासे हमारे जो जूनियर आते थे बच्चे, जोश बहुत होता उनमें, थोड़ा उनको जब मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। जहाँ जो हम जैसे ऑपरेशन बोलते हैं हमारे जो मिलिट्री ऑपरेशन जो होते हैं, ऑपरेशन करके आए थे तो शाम के टाइम फिर वहां से 2-3 दिन जब ऑपरेशन करते हैं तो फिर 2-3 दिन उनको 1-2 दिन रेस्ट देते हैं, फिर उनको दूसरी बहुत चढ़ाते हैं जैसे कि अपना अगले टास्क के लिए तैयार हो सके बंदा
1: जी।
0: तो ऐसे हम लोग रेस्ट में थे 1-2 दिन के लिए, तो हमारा एक वहां पर मंदिर प्रोग्राम होता था, तो मंदिर में सभी लोग करीब करीब आते थे, चढ़ाई का माहौल था, सभी भगवान से प्रार्थना करते थे कि हम लोग जीते हैं और हमारे जो पहाड़ियां जो उन्हें कब्जे करेंगे दुश्मन वो हमको मिले और हम ठीठा अपने यूनिट के साथ अपने बच्चों के साथ जाएं,
1: बिल्कुल
0: ये सबको रहता था। तो उसमें हमारे पर सर एक वहां से 3-4 गोले पड़े पाकिस्तान के।
1: अच्छा,
0: हमारे कैंप के ऊपर, तो उसमें 22 कैजुअल्टी हुआ था।
1: अच्छा,
0: 22 में से 7 ऑन द स्पॉट वही ढेर हो गए थे, ऐसे जो हमारी गाड़ी होती फौज की वहां जाके कहीं दूर जगह ले गए जहाँ फायर नहीं आता, तो वहां लेके उनको सबको एवैक्यूएट किया, सबको टेस्टिंग किया, कम से कम उसमें से सर 5 बंदों की जान तो बचाने का अवसर मिला।
1: अच्छा,
0: जो एट ए टाइम जो हम उनको सही ट्रीटमेंट दे दिया,
1: बहुत बड़ी बात है,
0: बड़ा संतोष मिलता है।
1: वाकई तो बड़ा काम है ही।
0: जो हम इनोट में जब वापस आए, जब अपने पटन वापस आए, तो उसमें हमारे पटन थी वहाँ आसाम में, वहां से आए थे हम लोग भाई यार, तो जब वो बच्चे जो 4-5 जो जवान थे हमारे, वो ठीक होके जब आए तो अपने बच्चों को लेके आए वहाँ, तो वो बोलते हैं कि हमको जो है इस साथ में बचाया, तो मैंने कहा मैंने बचाया यार, परवाल ने बचाया, लेकिन हमको बहुत बड़ा दिल की इतनी आनंद की अनुभूति हुई, इतना संतोष।

0: बड़ा तेरे में, तो ये बहुत बड़ा अभिषेक मिला था हमारा कारगिल का। जब कारगिल लड़ाई करके आए तो दिल में एक वो जैसा हुआ कि हमने जो कसम खाई थी और जो हमने ट्रेनिंग किया, जो हमको सरकार ने इतना सब कुछ सुविधा दी, उसका मतलब थोड़ा सा हमने आज चुका दिया। ये लगा सर
1: जी। वाकई फक्र की बात थी कि आपने, आपको जो ट्रेनिंग मिली, आपकी जो कैपेबिलिटी थी वो आपने अच्छी तरह से किया, और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा इस समय आप क्या कर रहे हैं?
0: इस समय सर मैं अपना ये सैनिक कॉलोनी चैनडा में रहता हूँ।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो मैंने वहाँ पर एक बीइंग जो मेडिकल प्रोफेशनल है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, हेल्थ केयर सेंटर खोल रखा है।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो उसमें मैं मैक्सिमम मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की मदद करता हूँ सर।
1: क्या बात है।
0: जैसे हमारे जवान है या गरीब तबके के बंदे हैं, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी को शुगर है, लोगों को पता नहीं है, गाँव में है वो, तो उनको जब मोटिवेट करता हूँ आपको बीपी है या शुगर है या इस तरह से खान पान ठीक करो, तो हिसाब से जो भी आता है बंदे को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क, तो मतलब ये समाज सेवा बोलिए या मेरा दायित्व समझिए, जो गरीब लोग हैं जिसके पास कोई ज्यादा फाइनेंशियली वो नहीं है, उनको भी मैं कम से कम मैं जितना हो सकता है अपने से पूरा उनको मैं लुक आफ्टर करने की कोशिश करता हूँ सर। ये अपना बहुत बड़ा पुण्य समझता हूँ।
1: बिल्कुल, वाकई ये पुण्य का काम है ही, और पूरा देश जो है आराम से सो पाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी की वजह से, क्योंकि सरहद पे कोई ना कोई तैनात है हमारी सुरक्षा के लिए।
0: बहुत जरूरी सर।
1: सर आपको सैल्यूट है, और आर्मी के सभी जवानों को जो उससे जुड़े हुए हैं उन सबको सैल्यूट है। सर आप हमारे स्टूडियो में आए और इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते हम आपकी पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे।
0: कोई भी गाना, देशभक्ति का गाना।
1: देशभक्ति का कोई भी। बिल्कुल भी। तो इस कार्यक्रम में आने के लिए और अपने जीवन की अनुभव उनसे साझा करने के लिए, सभी श्रोताओं से साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम जय जवान, जिसमें आज हमारे मेहमान थे कैप्टन शेर सिंह बिष्ट जी, जिनसे बातचीत कर रहे थे मिथिलेश श्रीवास्तव। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज रहे हैं और आइए सुनते हैं प्रोग्राम युववाणी वैभव के साथ।

0: एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने लाते हैं। हेलो एंड नमस्ते, सत श्री अकाल आदाब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में। 100.4 एफएम आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बरेली को, और मैं हूं आपका दोस्त, आज के कार्यक्रम का होस्ट वैभव। श्रोताओं, और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, जून का महीना अब अपने आखिरी दिनों में है। बरेली की तपती दोपहरी गर्म हवाओं के थपेड़े और शाम ढलते ही चलने वाली हल्की सी ठंडी हवा, ये मौसम भी क्या कमाल का होता है ना। लेकिन दिन भर सूरज अपनी ताकत दिखाता है श्रोताओं, लेकिन शाम होते होते आसमान में हल्की सी आहट आने लगती है और हल्का सा सुकून सा दिखने लगता है। कहते हैं ना कि हर तपती दोपहर के बाद एक ठंडी शाम जरूर आती है, ठीक वैसे ही जिंदगी की मुश्किलों के बाद भी राहत का मौसम भी जरूर आता है। और बरेली की तो बात ही निराली है श्रोताओं, यहाँ के सुबह की चाय और शाम की रौनक, अपनेपन से भरी गलियां और दिल जीत लेने वाली मुस्कानें, यही तो इस शहर की पहचान है। तो चाहे आप घर पर हों, सफर में हों या अपने काम में व्यस्त हों, अगले आधे घंटे तक हमारा साथ बनाए रखिए, क्योंकि यहाँ होगी बात आपकी, सोच आपकी होगी, आवाज भी आपकी ही होगी। क्योंकि आवाज क्यों होगी आपकी, पता है क्यों? क्योंकि आज है कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स, जिसमें हमारे श्रोता हमें कॉल करते हैं, बड़ी बेसब्री से हम उनका इंतजार करते हैं। तो आज किन किन श्रोताओं ने हमें कॉल किया है वो तो हम जानेंगे ही, और सबसे पहले चलते हैं कि कौन से श्रोता है। लेकिन उससे पहले एक पंक्तियां मुझे याद आ रही है, कहते हैं जो इंसान मौसम की तरह बदलती परिस्थितियों में भी मुस्कुराना सीख लेता है, वही जीवन का असली विजेता बनता है। तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप सुन रहे हैं ये वाणी कार्यक्रम।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं को पता है कि प्रतिदिन हम आपको एक युवा से रूबरू कराते हैं, उनसे बातें करते हैं, क्योंकि कार्यक्रम युववाणी है और युववाणी में जब युवाओं से बातें होती हैं तो बातें अलग होती है। तो आज भी हमारे एक श्रोता इस समय कनेक्ट हो चुके हैं और ये रेडियो सुनते भी हैं, लेकिन पढ़ाई में क्या कर रहे हैं इनसे हम जानते हैं। तो अपना नाम बताइए।
6: नमस्कार सर, मैं जिला बदायूं ग्राम दूसरे नगर से संगम सिंह बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा संगम जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले बताइए।
6: बस बढ़िया हूँ।
0: तो थोड़ा सा बताइए अपने साथियों के बारे में, आप क्या करते हैं अपने बारे में?
6: सर मैंने अभी मैथ से BSc किया हुआ है और उसके बाद मैं MSc की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें एडमिशन ले चुका हूँ मैं बरेली से, और इस समय मैं गवर्नमेंट एग्जाम SSC की तैयारी कर रहा हूँ जिसका पेपर अगस्त बीच में है।
0: अच्छा, तो अभी तो वैकेंसी आई भी थी, कुछ शायद वैकेंसी, उसमें फॉर्म आपने भर दिया होगा?
6: हाँ फॉर्म भर दिया, जिसका पेपर अगस्त सितंबर के बीच में है।
0: तो संगम ये बताइए कि मैथ क्यों आपने डिसीजन लिया, मैथ क्यों लिया आपने? क्योंकि बहुत से लोग तो इसके अलावा भी सेक्टर में जाते हैं, आपका मैथ के और कैसे रुझान रहा?
6: क्योंकि गवर्नमेंट जो भी एग्जाम होते हैं उन सब में मैथ भी है, और मैथ मुझे अच्छा भी सब्जेक्ट लगता है, पढ़ने में अच्छा है। जैसे आगे मैंने मैथ को कंटिन्यू किया था 10th 12th एंड BSc, तो उसके बाद मुझे जो भी हेल्प हुई वो अपने गवर्नमेंट एग्जाम में।

0: काफी हेल्प हुई मैथ्स, क्योंकि उसमें लगभग सभी एग्जाम्स में मैथ्स होती है,
1: ये
0: इसीलिए
1: तो
0: मैंने
1: है,
0: मैथ्स किया था।
1: ये तो है। मैथ तो अब देखिए हर किसी में लागू होती है और मैथ जरूरी भी है, लेकिन क्या शुरू से आपकी मैथ तो सही थी या बाद में जाके आपने?
0: नहीं सर, मेरी मैथ शुरू से ही ठीक थी, बाद में ऐसा नया नहीं हुआ, शुरू से ही जैसी थी वैसी ही है अब तक भी।
1: तो जैसे बहुत से बच्चे क्या होते हैं मैथ से डरते भी हैं, और मतलब उन्हें हमेशा डर रहता है कि कहीं मैथ में, वैसे तो नंबर, मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स भी ला सकते हो, है ना, पर कहीं ना कहीं तो मैथ लोगों को डर भी लगता, तो ऐसा क्यों लगता है, क्या आप थोड़ा सा बता सकते हो?
0: सर क्योंकि ऐसा मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से तो आप आगे तक पढ़ने का और ज्यादा मन करता है, और ज्यादा सवाल करते चले जाते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाते हैं। लेकिन अगर एक दो क्वेश्चन में अगर आप फंसते हैं तो फिर दोबारा बुक उठाने का मन नहीं करता, ऐसा सभी के साथ होता है। और कुछ लोग होते हैं वो दोबारा बुक सच में ही नहीं उठाते एक हफ्ते तक, तो फिर उनका वीक होता चला जाता है। लेकिन हमें हर सब्जेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ना चाहिए, सभी सब्जेक्ट इक्वल है, सभी सब्जेक्ट अच्छे समझ में आते हैं अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं रोजाना।
1: तो जैसे जिन लोगों को मैथ बड़ी कठिन लगती है और उनसे क्वेश्चंस करने में थोड़ी परेशानी होती है, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं?
0: सर चैप्टर रिवाइज करना चाहिए बार बार, और प्रीवियस ईयर थोड़े उससे शॉर्ट क्वेश्चन करने चाहिए, ज्यादा हार्ड की तरफ ना जाए, शॉर्ट क्वेश्चन करने चाहिए, थोड़े उससे स्मॉल क्वेश्चन करो जिससे होने लगे, धीरे धीरे पकड़ बन जाती है फिर बड़े क्वेश्चन पे भी जो हार्ड होते हैं।
1: तो चलिए बहुत अच्छा लगा जान के। तो अभी आपने भविष्य में क्या अपने लिए प्लान कर रखा है? चलिए गवर्नमेंट की तो और तैयारी कर ही रहे हैं, और भी क्या कुछ और प्लान कर रखा है आपने?
0: सर अभी तो मैं कर ही रहा हूँ एसएससी की तैयारी, बट आगे देखता हूँ, पेपर दूंगा पता चलेगा तब।
1: हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने जो प्लान बना रखे हैं उसमें आप सफल हो, है ना। और चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगे आप?
0: जी सबसे बस यही कहना चाहेंगे कि अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए जो भी युवा है अभी, क्योंकि उनकी एक एज टाइम तक ही होती है, तभी तक पढ़ाई करनी चाहिए अच्छे से, जो समय मिला है अभी उसका अच्छे से उपयोग करें, पढ़ाई करें बस।
1: चलिए अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने हमसे बात करी संगम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं कार्यक्रम में स्वागत है, और आपकी बिल्कुल कॉले हमें आने लगी हैं। देखो प्यारे प्यारे श्रोता इस समय फोन लाइन पर मौजूद है, और देखते हैं पहली कॉल किन श्रोता की आई है। अपना नाम बताइए, कौन बात कर रहे हैं?
2: ये बंटू भाई प्रजापति बोल रहे हैं, ग्राम तकरा को।
1: बंटू भाई कैसे हो बताइए?
2: बढ़िया है, आप कैसे हो?
1: मैं ठीक हूँ, आपसे बात हो रही तो मैं और ठीक हो गया हूँ। और क्या कर रहे हैं आप आजकल?
2: आजकल बस यही हो रहा है, दुकान चला रहे हैं और क्या, खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं।
1: अच्छा, और तो खेती बाड़ी में क्या धान बो रहे हैं? गन्ना की तैयारी क्या कर लिया आपने?
2: गन्ना तो लगा ही दिया है, अब धान की तैयारी हो रही है।
1: तो बरसात का इंतजार कर रहे होंगे फिर आप?
2: हाँ, सभी लोग बरसात का इंतजार ही कर रहे हैं।
1: चलिए हम कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे कि भाई बंटू भाई क्या जल्दी से बारिश हो, है ना। और बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज कॉल लगी है तो?
2: जी सुनवा दीजिए, सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं, धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई।
1: जी बिल्कुल, लीजिए सुनिए गीत कॉल करने के लिए, धन्यवाद।

0: श्रोताओं, इस प्यारे से गीत को सुना आपने और अब हमारे एक प्यारे से श्रोता फोन लाइन पर आ चुके हैं। अपना नाम बताइए, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं चिरमिरी कुरासिया कालवी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान जी, बहुत बहुत स्वागत है। कौन सा जिला कोरिया बताया आपने?
1: जी, जिला कोरिया छत्तीसगढ़।
0: अच्छा, तो ये अपने जिले के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या

0: कैसा है जिले, क्या फेमस है वहाँ पर?
1: सर यहाँ तो सर ये जिया जो है मतलब की ये जगह सर जो है ये मतलब की ये सब व्यवसाय क्षेत्र है, कृषक लोग यहाँ पर रहते हैं सर। और इसके बाद ये जगह जो पर्यटन स्थल है, यहाँ पर बांध देखने लायक है सर, और ये मेन रोड है, यहाँ पर पूरा आवागमन का आने जाने का लोगों का ये रहता है सर। ये बहुत ही अच्छा जगह है, यहाँ आ सकते हैं सर, देखिएगा, बहुत अच्छा जगह है। और यहाँ पर जो सूरजपुर जिला में कुशलगढ़ का वो चीज है, वहाँ का पहाड़ है सर, मंदिर है, तो यहाँ मेला लगता है वो रामनवमी के दिन में, वैसे बाकी लोग भी दर्शन करते हैं यहाँ बहुत ही। इसके बाद सरगुजा में रामगढ़ का पहाड़ है और अंबिकापुर में महामाया मंदिर है, मतलब की दार्शनिक स्थल है, पर्यटन स्थल है। चिरमिरी में कोयला का खदान है, वहाँ मतलब की जगन्नाथ मंदिर है।
0: अच्छा, मतलब बहुत बहुत चीजें हैं आपके पास घूमने के लिए। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा। तो आज कॉल लगी है, कौन सा गीत आपको रेडियो सेट पर भेजे हम?
1: फिल्म का नाम है मेरे महबूब, नई वाली फिल्म है, वो गाना है ना थमके बरस आप तो मुझे साजन के पास जाना, गायिका अलका याग्निक। सबसे पहले गीत आपको भारत राज की श्रोता को, आकाशवाणी बरेली में सभी लोगों को, आपके परिवारजन के रिश्तेदारों को, दोस्तों को।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी को आ रहा है रेडियो सेट पर।

0: कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। ये है आपका अपना कार्यक्रम युवाणी सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स है। श्रोताओं हमें कॉल कर रहे हैं, अगली कॉल कहाँ से जुड़ी है अपना नाम बताइए।
1: मैं जिला बदायूं कस्बा दातागंज से मोहम्मद आसिफ खान बात कर रहा हूँ।
0: आसिफ जी कैसे हैं आप और क्या करते हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: सर मैं बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, बाकी पढ़ाई कर रहा हूँ और गर्मी का आनंद उठा रहा हूँ।
0: अच्छा तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप?
1: स्कूल में पढ़ता हूँ सर।
0: स्कूल में पढ़ रहे हैं, चलो बढ़िया है
1: जी।
0: तो और गर्मी खूब पड़ रही है तो कैसा ध्यान रख रहे हो आप अपना?
1: इसमें गर्मी में ये खान पीन का अच्छा ध्यान रखना चाहिए, धूप में नहीं निकलना चाहिए, जरूरत पड़े तभी निकले वरना नहीं निकलना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता
0: जी। तो बताइए कौन सा गीत आप सुनेंगे आज कॉल करिए तो?
1: मैं सुनूंगा कल चले हम फिदा जान वतन साथी और तुम्हारे हवाले वतन साथी।
0: ठीक है सुनिए ये प्यारा सा गीत, आपने कॉल किया इसका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कर चले हम फिदा जान वतन।

0: साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
1: हम जिला बदायूं ग्राम दुगने नगर से ठाकुर मन्ना सिंह कठेरिया बोल रहे हैं सर।
2: जी बहुत बहुत स्वागत है ठाकुर साहब कार्यक्रम में। कैसे हैं और क्या चल रहा है आजकल आपकी जिंदगी में, थोड़ा सा बताइए।
1: अब तो भाई ये खेती किसानी का ही काम हो रहा है वैसे तो खेतों पर।
2: अच्छा तो खेती किसानी का काम सही चल रहा है क्या? धान की बोलिया होगा, धान की तैयारी हो गई होगी?
1: हाँ धान की सही तैयारी हो गई है, रुपाई होने वाली है। ये बरसात हुई, रुपाई करा दी।
2: हाँ तो अभी बरसात का इंतजार हो रहा है।

0: श्रोताओं, देखिए कार्यक्रम में समय नहीं रहा, लेकिन हमारे जो एक और श्रोता है वो इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं कौन कहां से बात कर रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: जी मैं अनोखे लाल मौर्य बोल रहा हूँ, कटाचांगा पुराना
0: जी। अनोखे लाल जी, सबसे पहले बताइए आप कैसे हैं?
1: बढ़िया है सर, आप कैसे हैं सर?
0: मैं ठीक हूँ। और अभी आजकल खूब गर्मी पड़ रही होगी, आप तो देख ही रहे हैं।
1: गर्मी बहुत पड़ रही है, छाते के नीचे रहना पड़ता है, खेला चलता रहता है हल्का हल्का।
0: तो अभी आप क्या कर रहे थे, क्या लगा रखा है आपने?
1: अभी नारियल चल रहा है सर।
0: हाँ, गर्मी में तो नारियल चल रहा है जी। अक्सर हम जाड़ों में आपके देखते हैं, गुड़ रहता है आपके पास
1: जी, जी, जी।
0: तो चलिए, तो ठीक है, आप बताइए आज कॉल लगी, कौन सा गीत सुनेंगे
1: जी? अपने पसंद को

श्रोताओं, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपके हमें इंतजार रहेगा आपको फीडबैक का। अब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए कार्यक्रम युववाणी। अब मिलेंगे आपसे फिर अगले कार्यक्रम में कुछ नया और नयाब लेकर। अब अपने दोस्त वैभव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम युवाणी। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। और श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे ICC वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले मैच की ऑफ ट्यूब कॉमेंट्री का प्रसारण, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको बता दें आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम संध्या रंजन। 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता। इसमें सुनिए विविध भारती के खजाने से गायक पंडित सी आर

व्यास से बातचीत, विशेष जयमाला में आज आप सुनेंगे सैनिकों की शौर्य गाथा शाम 7 बजे। आज आप सुनेंगे महावीर चक्र से सम्मानित सूबेदार बिशन सिंह की शौर्य गाथा। सात बजकर 45 मिनट पर इंद्रधनुष में सुनिए साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे वैन शिपले का इलेक्ट्रिक गिटार। रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी लड़ी नजरिया लड़ी, लेखक राजेश भदौरिया, निर्देशन गुरमीत रामल मीत का। चित्रलोक का समय रहेगा रात्रि 8 बजकर 15 मिनट पर। रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए आज के फनकार। आप सुनेंगे रात्रि 9 बजकर 30 मिनट पर। कार्यक्रम केंद्रित है निर्माता निर्देशक आनंद एल राय पर, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। रात्रि 10 बजे सुनिए।

9 बजे सुनिए आपके लिए आज के फनकार। आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है निर्माता निर्देशक आनंद एल राय पर, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। रात्रि 10 बजे सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेन नेगी। रात्रि 10:30 पर ढलती जाए रात और रात 11 बजे सुनिए विविधा। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल सुबह 6:05 पर सुनिए वंदनवार, सुबह 6:30 और शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम विवरण झरोखा में। रामचरित मानस आप सुनेंगे 6:35 पर। कल प्रसारित होगा भाग 234। सुबह 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता, इस पर सुनिए विविध भारती के खजाने से गायिका विदुषी डॉक्टर प्रभा आत्रे से बातचीत। इस कार्यक्रम को आप फिर से सुन सकते हैं शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7 बजे, 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 और दोपहर 2 बजे सुनिए त्रिवेणी, लेखक यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। आज के फनकार का समय रहेगा 9:30। कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए उजाले उनकी यादों के, इसमें सुनिए रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। रंग तरंग आप सुनेंगे सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे। यादों की महफिल सजेगी दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1 बजे होगा कार्यक्रम सुरीला सफर, सदाबहार नगमे आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम होगा सखी सहेली, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। दोपहर 4 बजे सेहतनामा में सुनिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग, संपादन सहयोग रीमा जोशी का, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छाया गीत आप सुनेंगे शाम 5 बजे, 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन। जयमाला का प्रसारण होगा शाम 7 बजे, 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से, कल की फिल्म है उलझन। हवामहल का समय रहेगा रात्रि 8 बजे। कल हवामहल में सुनिए झलकी ब्लैक एंड व्हाइट, लेखक महावीर सिंगल, निर्देशन आनंद किशोर माथुर का। चित्रलोक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए, रात्रि 9:30 पर सुनिए आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर। छाया गीत का समय रहेगा रात्रि 10 बजे, आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर का, प्रस्तुतकर्ता राघवेन नेगी। और रात्रि 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात। ये थी रूपरेखा आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत।

अभी आपने पी के फिल्म का गाना सुना, सोनू निगम की आवाज में। गीत लिखा था सोनन किरकिरे ने, संगीत शांतनु मोइत्रा का था। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में 20 साल बाद फिल्म का गाना। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: सरिता।
1: मित्रों नमस्कार, आप सुधी श्रोताओं के लिए आज हम चुन लाए हैं एक प्रख्यात गायक कलाकार से की गई भेंट वार्ता, आइए सुनते हैं।
2: संगीत सरिता के श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध गायक पंडित सी आर व्यास। व्यास जी नमस्कार।
3: नमस्कार
2: व्यास जी, आपके षष्ठी पूर्ति समारोह में श्री पीएल देशपांडे ने बड़ा रोचक और बड़ा ही सुंदर भाषण देते हुए कहा था कि कलाकार कभी रिटायर्ड नहीं होता, और उनमें से आप एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। इस बारे में आपके क्या ख्याल है?
3: हाँ, वो तो

0: बात सच है, क्योंकि कलाकार जब अपने कला में मग्न रहता है और पूरा टाइम उनको देके अपनी साधना करता है, वो कहते हैं कि कलाकार ये सोच में कितना साल गुजरे उनको खुद को मालूम नहीं होता है, वो तो विचार में अपने हमेशा के लिए वो तरुण नहीं रहता है।
1: बहुत सुंदर व्यास जी, आपने संगीत की शुरू की तालीम प्रारंभिक कब शुरू की?
0: 10 साल से शुरू किया,
1: 10 वर्ष की आयु से।
0: 10 वर्ष की आयु से, लेकिन पहले जो मैं गाता था वो तो हल्का फुल्का गाना गाता था। जब मैं 14-15 साल का हो गया तब किराना घराने में
1: जी
0: मेरे पहले गुरु जी थे पंडित गोविंदराव भातंबरेकर।
1: अच्छा,
0: उससे मैं तालीम पाया 6-7 साल उनके पास सीखता था मैं
1: जी।
0: उसी गाँव करके जो हाँ वहाँ जहाँ रहते थे वो
1: जी,
0: वो तो वहाँ मैं तालीम पाया और वो खुद को कहते थे कि वो किराना घराने के गायक है।
1: अच्छा, लेकिन जैसे कि सब लोग जानते हैं कि आप ग्वालियर घराने के गायक हैं।
0: हाँ, ये भी ठीक है, क्योंकि मेरा जब स्कूल एजुकेशन थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए मैं सोचता था तब मेरा गाने का बहुत मैं आगे जा चुका था, लेकिन मेरा खुद का विचार ऐसा नहीं था। मैं मेरे को ऐसी जगह चाहिए, ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ मुझे अच्छी तालीम मिलेगी। जब मैं बम्बई आया मेरा उम्र था 18 साल की
1: जी,
0: और तब मैंने ग्वालियर
1: घराने के
0: राजा रामबा पराडकर जो थे मेरे गुरु जो कैलाशवासी पंडित राजा रामबा पराडकर से तालीम शुरू किया।
1: ग्वालियर घराने के बारे में कहा जाता है कि ग्वालियर घराने की गायकी अपने आप में एक समृद्ध गायकी है।
0: उस घराने की पहली एक स्पेशलिटी यानी मतलब था कि भाई जो गायक एक राग में
1: जी
0: अनेक ख्याल गा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: कोई गायक ग्वालियर घराने में ऐसा रहते थे कि भाई एक यमन राग लिया है उसमें एक ही ख्याल आता है, एक द्रुत ख्याल आता है, एक बड़ा ख्याल आता है, उसे वो तो 15-15, 20-20 ख्याल एक एक रागों में बहुत आसानी से गाते याद करते थे।
1: ग्वालियर घराने का उपजंग के बारे में भी
0: ये
1: सुना कि बहुत
0: उपजंग तो हर घराने में रहती है।
1: अच्छा,
0: कलाकार में होना चाहिए, लेकिन उपजंग क्या होता है वो समझना बड़ा
1: जिसके जरा हमें समझाते हुए
0: इसको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा।
1: वैसे
0: तो मैं थोड़ा बताता हूँ कि अभी एक समझो एक राग है जैसा केदार है।
1: अच्छा,
0: तो अभी आलाप में

0: ऐसा वो ले रे लगाने को जो तरीका है ना
1: जी,
0: ये उपजांग ही समझा जाता है कि वो हर एक अलाप में वो अलाप बढ़ाते बढ़ाते वो रे ऐसा ही लगाना चाहिए। अतः ये एक सुर का हो गया। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई उपज का एक सुरों का पुंज होता है
1: जी,
0: जैसा केदार में लेंगे मम रेसा रेसा रे रेसा सा
1: जी,
0: मम रे सारे सारे रे सा सा। अभी ये छोटा हो गया ना, इसमें ले में गा में जब उसकी तान बनती है ना, मम रे सारे सारे रे सा सा, मम रे सारे रे सा सा रे रे सा सा, पापा मम रे सारे रे सा सा रे रे सा सा, दादा पादा पापा मामा पापा मम रे सारे सारे रे सा सा। ये जो उपज है ना वो हमेशा के लिए ऐसा एक रूल था, यानी नियम था वो घराने में कि जब एक उपज चालू हो गया तो उपज की पूर्तता वो आखिर में वही चीज आना चाहिए
1: जी,
0: तब उपज की पूर्तता हो गया।
1: तो ग्वालियर घराने में भी आलाप और
0: ये सब बातें थी, आलाप बोल आलाप, पहले बोल आलाप फिर बोलांकित कुछ ताने,
1: कुछ ख्याल पर ज्यादा उनका ध्यान रहता था। ख्याल
0: ख्याल हाँ, ख्याल तो याद करना बड़ा, ख्याल तो पहले अगर ग्वालियर घराने में पहले ये नियम था कि जब कलाकार अपने स्टेज पे बैठ के प्रोग्राम देता था तो पहले वो ख्याल की बंदिश उसकी स्थाई दो दफे गा के लेगा, बाद में अंतर दो दफे गाएंगे, फिर उसके बोल आलाप जो भी कुछ गाने का ढंग होता है उस ढंग से चले गए। बिना ख्याल पूरा गा के कभी वो गाना चालू नहीं करते थे। अगर ऐसा किया तो कुछ कलाकार ऐसे मानते थे कि उसको तालीम अच्छी नहीं है।
1: व्यास जी, ग्वालियर घराने के साथ साथ आपने आगरा घराने के सुप्रसिद्ध गायक पंडित जगन्नाथ बुआ पुरोहित से भी तालीम हासिल की।
0: हाँ, बहुत।
1: तो अपने गायन में आपने आगरा घराने की गायन शैली के किन अंगों को अपनाया है?
0: राम सिंह साहब, एक बात है कि एक बात बताना पड़ेगा मुझे। जगन्नाथ बुआ पुरोहित जिसको जिनको जिनका गाने में नाम था गुनीदास
1: जी, हाँ,
0: तो आगरा घराने में तो तालीम पाया
1: जी,
0: खासा है बुलाते विलायत हुसैन खां साहब के पास बहुत सालों सीखते थे
1: जी।
0: लेकिन मैं जब बुआ साहब के पास गया तो इस सोच में नहीं गया था कि मैं आगरा घराने की गायकी सीखना चाहिए। लेकिन मैं उनके पास गया एक बात में कि भाई वो बहुत भावनिक गाते थे।
1: अच्छा,
0: खुद बुआ साहब
1: जी।
0: तो ये सुन के मुझे ऐसा लगा कि मेरे गाने में ये

0: बात आना चाहिए। अभी इसको बहुत लोग ऐसे बोले थे कि क्या भावनिक गाना का क्या होता है अभी, और ये ग्वालियर में नहीं था, आगरा में नहीं था, तो ये तो बताने की बात है। हम बोलेंगे वही ग्वालियर में क्या होता है,
1: जमेली बोली जो बागोला बैगोंदेला ओरे वाले निया जमेली बोली जो,
0: ये ग्वालियर का पेटा नहीं है ऐसा है, वो सब गायकी ऐसी जाएंगे, थोड़ा सा इस तरीके से आगरा की जाएंगे, पहले ख्याल गाएंगे फिर ऐसे ही गाते जाएंगे, लेकिन उसमें भाव नहीं प्रकट होता है। जैसा भाव अगर वो जगन्नाथ बाबा जब गाना सुनेगा ना, तो वो एक भाव प्रकट होता था कि भाई कैसा भाव है।

0: सुर लगाने का तरीका और उसमें भाव प्रकट करना, यानी आप खुद कलाकार कुछ ऑडियंस को कहने को चाहता है ऐसा लगता है। तो इस बात को मैंने ध्यान देके और ये अपना चाहिए, इसके लिए भी बुआ साहब के पास।
1: आप जैसे कलाकारों ने तो अपने जीवन में वर्षों की सतत साधना की और तब जाकर किसी एक मकाम पर पहुंचे हैं। आज की जो तरुण पीढ़ी है वे संगीत को आज पूरा समय अर्पित नहीं कर सकते, मतलब जीवन यापन भी जरूरी है और साथ साथ ये भी आशा रखते हैं कि वो जल्दी से जल्दी सीख भी जाए, प्रसिद्धि भी पाए।
0: वो तो एक बड़ा ऐसा सवाल आप पूछा है, यानी बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि आज के जो तरुण कलाकार है वो बड़े अच्छे हैं,
1: अच्छा
0: बड़े अच्छे गाने वाले हैं और बड़े टैलेंटेड है
1: जी।
0: लेकिन तालीम कहाँ से पाना चाहिए, कैसी पाना चाहिए और जो तालीम मिलती है वो अच्छी है या नहीं, ये जानने की कोशिश करना चाहिए। अगर वो जानकर वो जाएंगे और तालीम हासिल करेंगे कहाँ से, तो बड़े अच्छे गायक बन जाएंगे और अपना गुजारा भी उनके ऊपर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कोई यंगर टैलेंट्स है मेरे अच्छा। सामने
1: और बड़े आशावादी हैं कि भविष्य बड़ा उज्जवल है, हमारा देश
0: बहुत अच्छे अच्छे अच्छे यंगर जनरेशन में मैंने देखा है, बॉयज है गर्ल्स है, बहुत अच्छे गाते हैं
1: सीख रहे हैं।
0: लेकिन इतना ही बात है कि जैसे पुराने जमाने में तालीम एक बात होती है, वो तालीम नहीं पा सकते वो, और वो तालीम अच्छी तरह से पाना चाहिए, उसने देखना चाहिए कि भाई हम जो करते हैं वो ठीक तरह से करते हैं कि नहीं।
1: आपकी बातचीत में मैं इन बातों का पता चला कि एक तो निष्ठा की बड़ी आवश्यकता है, एकाग्रता और साधना,
0: ये सब बातों पे ही निर्भर है ये कला। अगर कोई निष्ठा नहीं रखेंगे, अपने गुरु से सीखते हैं लेकिन गुरु से निष्ठा नहीं रखते हैं, तो ये तो बात चलेगी नहीं।
1: व्यास जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। नमस्कार
0: भी आपका। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे पंडित C.R. व्यास से की गई भेंटवार्ता। भेंटवार्ता कर रहे राम सिंह पवार। ये भेंटवार्ता वर्ष 1985 में विविध भारती से पहली बार प्रसारित हुई थी। प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। आज पंडित C.R. व्यास हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनके विचार हैं जो हमने उनसे की गई भेंटवार्ता में सुने और उनका गायन भी हम सुनेंगे। लीजिए सुनते हैं पंडित C.R. व्यास का गाया राग बिहाग। बंदिश के बोल हैं ले जा रे जा पथिकवा। हारमोनियम संगत अनंत राणे की, तबला संगत विभव नागेशकर। राग बिहाग, गायक पंडित C.R. व्यास।

पंडित सीआर व्यास का गाया हुआ राग बिहाग आपने सुना। श्रोताओ, आज हमने पंडित सीआर व्यास से की गई भेंट वार्ता सुनाई है। इसके साथ ही अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।

सवा लाख ते एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की इस शौर्य गाथा की कड़ी में हम रुख करते हैं सदा सर्वदा विजयी भारत भूमि के एक ऐसे प्रांत की तरफ, जहां गुरु गोविंद सिंह की ये वाणी दुश्मनों की धमनियों में रक्त जमा देती थी। ये बुलंद आवाज दुश्मनों के प्रति हुंकार ही नहीं थी, अपितु ये भारत के वीरों की परंपरा और विरासत है। मातृभूमि के रक्षकों और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों की ये भूमि है पंजाब, जहां गुरु गोविंद सिंह, माता गुजरी और उनके बेटों की वीरता, देशभक्ति और उनकी कुर्बानियां इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं। शेर पंजाब की ये वो पावन धरा जहां महाराजा रणजीत सिंह, महारानी जिंद कौर जैसे सच्चे देशभक्त हुए, जिन्होंने दुश्मनों को नाकों चने चबवाए। शहीद आजम भगत सिंह के नाम की कस्में आज भी खाई जाती हैं। अमर शहीदों की इस धरती में जन्मे श्री सदगुरु राम सिंह, लाला लाजपत रॉय, भाई परमानंद, वीर उधम सिंह, सुखदेव थापर, बलवंत सिंह, बंता सिंह धामिया और भाई वतन सिंह जैसे देशभक्त, जिन्होंने वतन की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। पंजाब की बसंती हवाओं में आज भी सुरूर इनका है। हर फूल की मुस्कुराहट इनकी कर्जदार है, जो आज आजाद वतन की फिजाओं में सांस लेती है। फौजी साथियों, आज के शौर्य गाथा की इस कड़ी में हम सलाम करते हैं महावीर चक्र से सम्मानित भारत भूमि की इसी पावन धरा पंजाब के लुधियाना शहर के शिरदिल सिपाही सूबेदार बिशन सिंह को।

हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो हे हम सारे हैं भारतवासी सब है भारत।

किशन सिंह औरों से जरा हटकर थे, जितने खुश मिजाज उतने ही संजीदा। उनका कर्तव्य बोध, उनके देश के प्रति निष्ठा और उनकी मेहनत रंग लाई। फौज में उनके जाने का सपना साकार हुआ और महज 16 साल की उम्र में सन 1933 में उन्होंने सिख रेजिमेंट ज्वाइन की। बिशन सिंह इसे अपनी खुशकिस्मती मानते थे कि उन्हें देश सेवा का अवसर मिला। अपने कॉल के पक्के, दिल में देशभक्ति का जज्बा और जुनून, अनवरत आगे बढ़ने की चाह, वक्त के पाबंद, फरमा बरदार और जुनून की हद तक देश सेवा की भावना ने उन्हें फौज का एक जाना माना चेहरा बना दिया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में देश विदेश में होते बदलाव का असर सभी पर व्यापक था। इस समय काल में जंगें भी बहुत लड़ी गईं, जिनमें भारतीय सेना ने बरतानिया हुकूमत के ध्वज तले कई युद्ध लड़े, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध भी था। इस युद्ध में बिशन सिंह हर उस मोर्चे पर भी सफल रहे जिसकी अगुवाई उन्होंने की और कभी शिकस्त न खाई। उन्हें सरदार बहादुर और कई और खिताबों से तत्कालीन अंग्रेज हुकूमत ने नवाजा। फिर वो घड़ी भी आई जब देश आजाद हुआ। आनंद के एहसास से दिल भर भी न पाया था कि युगों युगों से एक संग रहती भारत भूमि के मानचित्र पर लकीर खींचकर इसके दो भाग कर दिए गए। ये दर्द ऐसा था कि जिसकी टीस हर एक ने महसूस की। घर उजड़े, मकान छूटे, दिल टूटे, परिवार बिखरे, वतन छूटा और यहाँ तक कि मवेशी भी अपनी पनाहगाह तलाशने लगे। मुझे

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मैच खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। स्टूडियो की घड़ी में 7:18 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में 548 करोड़ रुपए लागत की 143 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। आगरा में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या में मातृशक्ति कॉन्क्लेव में कहा, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक। और प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, कल से घर घर जाकर बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी चर्चा की, जिसे 21 जून को दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। वहीं जल संरक्षण के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में जरा भी ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। प्रदेश भर में आज प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा पदाधिकारियों और नेताओं के साथ ही आम जनता ने सुना और सराहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर देश की मिट्टी से निर्मित भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को अपनाने तथा स्थानीय कुम्हारों और शिल्पकारों द्वारा निर्मित प्रतिमाओं को प्राथमिकता देने की अपील कर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जन जन से जोड़ने का कार्य किया है। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ सुना। श्री पाठक ने प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेख किए गए सकारात्मक कार्यों से प्रेरणा लेने की बात कही।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के कार्यक्रम में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो विभिन्न गांवों में, शहरों में नवाचार है, अलग अलग ढंग से लोग काम कर रहे हैं, विशेष रूप से चर्चा जिसमें जो वैश्विक संकट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है, हम लोग कार पूल करके चले। इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया एक वैवाहिक समारोह में किस ढंग से अतिथियों को उपहार के रूप में सामूहिक दुर्घटना बीमा का लाभ हर अतिथि को दिया गया। ये ऐसे आयोजन है, ऐसे कार्यक्रम है जिससे आदमी

0: जुड़ा महसूस करता है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हाथरस जनपद में 548 करोड़ रुपए लागत की 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर लाभार्थियों को आवास की चाबी, स्मार्टफोन और चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज अयोध्या त्रेतायुग की स्मृतियों को साकार करती दिखाई दे रही है। राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से अयोध्या विश्व भर के श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की खुशहाली के लिए कई प्रभावकारी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि हाथरस में जल्द ही प्रोसेसिंग सेंटर बन जाएगा, जिसका लाभ यहां के आलू उत्पादक किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी और व्यापारियों के लिए सुरक्षित माहौल है।
2: अब हमारा हाथरस भी विकास से वंचित नहीं होगा, बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ अब उद्यम यहां पर आ रहे हैं। यहां पे रोजगार के नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना, प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे। हमारा अन्नदाता किसान जो आलू उत्पादन करता है, उसके कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा। कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा।
1: इसके बाद मुख्यमंत्री ने आगरा में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जनता से जुड़े कार्यों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अयोध्या दौरे के दूसरे दिन आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आयोजित मातृशक्ति कॉन्क्लेव अयोध्या 2026 में शामिल हुई। कार्यक्रम में मां बेटी संवाद के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विषयों पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में मातृशक्ति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 200 बालिकाओं को SPV वैक्सीन लगाई गई और 10 बच्चों को पल्स पोलियो खुराक भी पिलाई गई। अयोध्या में श्री राम मंदिर दान मामले में आज पुलिस तथा प्रशासन की टीम ने गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों के घरों पर छापेमारी कर तलाशी ली और उनके परिजनों से पूछताछ की गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की। कल पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में फिर से पेश करेगी। इससे पहले कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज ने कल ये जानकारी दी। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। आज से शुरू हुए राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रदेश के सभी जनपदों में बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है। इसके बाद कल 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसी क्रम में अमरोहा में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत CMO डॉक्टर रमाकांत सागर ने एक समारोह में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर की। देवरिया जिले के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5,68,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं हापुड़, कौशाम्बी और महोबा सहित विभिन्न जिलों में भी अभियान के तहत बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। प्रदेश में आगामी 7 दिनों में पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कई जिलों में बिजली गिरने के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में 548 करोड़ रुपए लागत की 143 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। आगरा में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या में मातृ शक्ति कॉन्क्लेव में कहा 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक। और प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, कल से घर घर जाकर बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 7:31 हो रहे हैं और आइए सुनते हैं आईसीसी वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जा रहे भारत बनाम

फौजी साथियों, भारत से अलग हुए पड़ोसी देश के साथ सन 1947 में लड़ी गई इस जंग में पहले सिख रेजिमेंट के होनहार और बहादुर सिपाही सूबेदार बिशन सिंह को सेना के सफल संचालन, उनकी सूझबूझ, कर्तव्य निष्ठा और असाधारण पराक्रम, उनके बलिदान, वीरता, अदम्य साहस के लिए इस जंग में शत्रुओं को नेस्त नाबूद करने

और फतेह का तिरंगा लहराने के लिए भारत सरकार ने सूबेदार बिशन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया। हम सूबेदार बिशन सिंह को सलाम करते हैं।

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित सूबेदार बिशन सिंह की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, जय हिंद।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे वैन शिपले का इलेक्ट्रिक गिटार। आज की फिल्में हैं हावड़ा ब्रिज और

0: अभी आप सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में। गीत कंवर जलालाबादी का था, संगीत ओपी नैयर का।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला।

शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

दोस्तों हवामहल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राजेश भदौरिया की लिखी झलकी लड़ी नजरिया लड़ी। निर्देशक हैं गुरुमीत रामलमीत।

0: अरे लड़ी नजरिया लड़ी।
1: आज तो बड़े बाबू भाई, वाह क्या कहने। अरे किसका कत्ल करके चले आ रहे हैं,
2: देखो चौबे, औकात में रहो।
1: क्या बात है, आज आपके होठों पर आशिकी नगमा।
2: गुनगुना क्या दिया, लग गया सबको चरपरा। और जब पिद्दी से लौंडे आजकल तरह तरह के गाने गाते फिरते हैं, तो हमने जरा सा गुनगुना दिया, इसमें कौन सा धधकता हुआ ज्वालामुखी ब्लास्ट हो गया।
1: आप तो खामखा आग बबूला हो गए बड़े बाबू।
2: और नहीं तो क्या, गुलगुला हो जाऊं।
1: देखिए बड़े बाबू, मैंने ऐसा कुछ नहीं कह दिया कि आप राशन पानी लेकर ऊपर चढ़ बैठे।
2: और कैसे कहा जाता है, जो कहना था वो सब तो कह दिया, बहुत है इज्जतदार के लिए इतना।
1: भाई क्या कह दिया, जरा मैं भी तो सुनूं।
2: आशिकी नगमा, कत्ल करके आए हो। अरे मैं कहता हूं, और क्या कह सकते हो।
1: भाई बड़े बाबू, रोज आपके मुंह में पान और होठों पर महंगाई का रोना, या तो फिर दूसरों को कोसना, या इसकी शिकायत उसकी शिकायत, लेकिन आज
3: वाह वाह क्या बात है, किसकी तरफ से आने वाले हैं गर्मा गर्म समोसे।
2: लो एक और आ गए,

0: हे सवेरे घर में चाय तक ना नसीब हुई हो, लेकिन कार्यालय में बात करेंगे तो गर्मा गर्म समोसे से नीचे नहीं, जैसे नवाब जादे समोसे खाते खाते ही पैदा हुए थे।
1: हाँ, ये बात तो है। नहीं खजूरी साहब, ये बात नहीं, आज तो बड़े बाबू।
2: अच्छा अच्छा, आज तो बड़े बाबू की तरफ से है। बधाई हो बड़े बाबू, बधाई हो।
0: अरे कौन सी ढोलक बजी है हमारे घर में, किस बात की बधाई?
2: बात बाद में, पहले तो हो जाए। हाँ
0: हो जाए। हाँ, यहाँ मुफ्त में बंट रही है, जब जी चाहे हो जाए। हाँ
1: खजूरी, बात दरअसल ये है कि आज बड़े बाबू पर किसी हसीना का चक्कर चल गया है।
2: अच्छा, चक्कर? हसीना का चक्कर? तो ये बात है। अमा भाई, आप तो छिपे रुस्तम निकले, आखिर खिजाब ने कमाल दिखा ही दिया।
0: ओफो,
2: इसीलिए मैं सोच रहा था कि इंटीमेट कहाँ महक रहा है।
0: अरे अरे, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। इंटीमेट किस भकुए ने लगाया है? यहाँ तो मिट्टी के तेल की खुशबू के अलावा दूसरी कोई सुगंध ही नहीं पहचानते।
1: मजाक छोड़िए बड़े बाबू, बता भी दीजिए कब बज रही है ढोलक।
0: अरे खजूरी, तुम ही बताओ, जब कोई बात हो तभी तो बताए, है कि नहीं भला?
2: थोड़ा सा बड़े बाबू, लंच करवाना पड़ेगा। हाँ
0: देखो देखो, दूर से बात करो। हाँ दूर से बात करो, मुझे गुदगुदी बहुत लगती है। हाँ, गुदगुदी लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए?
2: अरे हम किसी से कहने थोड़े ही जा रहे हैं, आपकी कसम, हम ही तो आपके चाहने वाले हैं।
0: क्यों नहीं क्यों नहीं, आपकी चाहत की वजह से ही तो ये हो रहा है।
1: छोड़ो यार खजूरी, नहीं बताना चाहते हैं बड़े बाबू तो न बताएं, जब पेट में दर्द होगा तो खुद ही कहेंगे।
3: सुन लो आकर मेरी बात,
1: देख लेना हम भी नहीं सुनेंगे तब।
0: हाँ, हाँ। जब दर्द होगा तब देखेंगे।
2: अच्छा चोबे, ये तो बताओ तुम्हें कैसे पता चला चक्कर का?
1: आज सवेरे सवेरे बड़े बाबू गाना गा रहे थे, लड़ी नजरिया लड़ी।
2: अच्छा तो ये बात है, बता दीजिए बड़े बाबू, भगवान कसम अब नहीं रहा जाता।
0: अब तुम ही सोचो खजूरी, हमें तुमसे कोई पर्दा है क्या?
2: नहीं तो?
0: और फिर पर्दा ही करना होता तो मैडम सरिता से करते।
2: हाँ हाँ, और क्या,
0: मैं भला तुमसे क्यों छुपाऊंगा? अगर कोई बात होती तो मैं तुम्हें ना बताता।
2: लेकिन लड़ी नजरिया लड़ी वाली खबर?
0: अरे ये सब चोंचले हैं चौबे के, मैंने तो बस यूं ही गुनगुना दिया था जरा।
2: जब आप गाना गा रहे थे?
0: गा नहीं, गुनगुना रहे थे।
2: हाँ हाँ, वही, जब आप गुनगुना रहे थे तो आपके दिल में कुछ ऐसा कुछ वैसा, मेरा मतलब कुछ कुछ
0: कुछ नहीं हो रहा था खजूरी, मैं सच कहता हूँ कुछ नहीं हो रहा था।
2: सोच लीजिए बड़े बाबू, ऐसे वैसे गाने कोई यूं ही नहीं गाता, जब भीतर कुछ कुछ होता है तभी ऐसे गाने मुंह पर आते हैं।
0: ओफो, गाना ना हुआ पानी हो गया, जो जब मन हुआ मुंह में आ गया। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा था मेरे अंदर।
2: तो फिर आपने देशभक्ति का गीत क्यों नहीं गाया, जबकि जरूरत है आजकल देशभक्ति के गानों की।
0: ओफो,
2: देखिए देखिए, परेशान मत होइए, चोबे गया है बाहर, तब तक मुझे बता डालिए।
0: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
2: मान लिया, लेकिन अपना भी ये दावा है कि देखकर जान लेते हैं भीतर का हाल, उठ रहा है कहां कितना उबाल।
0: मारे गए बेमौत, अब साहब क्यों बुला रहे हैं, इसी वक्त बुलाना था इनको भी।
2: कहीं साहब तक तो बात नहीं पहुंच गई, संभल कर बड़े बाबू।
0: आपने मुझे बुलाया साहब?
4: हाँ बुलाया है, बैठो बैठो, डोंट वरी, तुम्हारे जैसे मेहनती और चरित्रवान आदमी पर ऑफिस को गर्व है।
0: धन्यवाद साहब।
4: इधर तुम्हारा काम धंधा, मेरा मतलब ऑफिस का काम कैसा चल रहा है?
0: ठीक ही चल रहा है आपकी मेहरबानी से।
4: तुम्हारी उम्र कितनी है बड़े बाबू?
0: साहब मैं समझा नहीं, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं?
4: यू ही फॉर जनरल नॉलेज।
0: साहब बस ये समझ लीजिए, पुराना खाया पिया है। इसलिए अब की फागुन में 40

0: 48 वर्ष।
1: आपके बच्चे भी काफी बड़े बड़े होंगे
0: जी। आपकी मेहरबानी से
1: इस उम्र में आपके इश्क के चर्चे बहुत खराब बात है, बहुत खराब बात है।
0: जी मैं कुछ समझा नहीं।
1: देखो बड़े बाबू, आज ऑफिस में सवेरे से आपके इश्क की चर्चा है, जिधर देखिए उधर बस एक ही खबर। माजरा क्या है जरा मुझे भी तो बताइए।
0: साहब ये आप क्या कह रहे हैं, भला सोचिए मैं इश्क कैसे कर सकता हूँ। आज तक साहब मैंने किसी लड़की की तरफ तो क्या बीवी की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखा है।
1: होता है, अक्सर ऐसा होता है, लोग नहीं देखते हैं आंख उठाकर, लेकिन इंसान का काबू अपने जज्बात पर नहीं होता, कब क्या हो जाए किसी को खबर नहीं होती। डोंट वरी बताओ भी।
0: अब तो कुछ ना कुछ बताना ही पड़ेगा। अब साहब आपसे क्या छिपाना, यूं ही पता नहीं क्यों मन में आज पुरानी यादें किलोले करने लगी।
1: फिर क्या हुआ?
0: फिर मन में उमंगे
1: पतंगे
0: नहीं साहब, उमंगे उठने लगी, गिरने लगी, अंगड़ाइयां लेने लगी।
1: फिर
0: कुछ नहीं साहब।
1: ओहो नॉनसेंस, वेयर इज क्लाइमेक्स, आगे क्या हुआ?
0: साहब फिर मुझे लगा मेरी रगों में सपरेटा नहीं प्योर खून बह रहा है। मुझे भी अपने सांसों में बदबू नहीं खुशबू महसूस होने लगी।
1: क्या हुआ बड़े बाबू, फिर क्या हुआ? ठीक से बैठिए ना।
0: हाँ ठीक है।
1: नहीं पैर कुर्सी के नीचे।
0: सॉरी सर, बाबू हूं ना, इसी से आदत है।
1: कैरी ऑन।
0: फिर मुझे ऐसा लगा मैं आकाश में किसी
1: ओहो बताइए ना,
0: किसी परी के साथ उड़ रहा हूँ, सारी दुनिया से बेखबर उससे बातें कर रहा हूँ।
1: क्या बातें कर रहे हो?
0: मैं उसे कल की सब्जी के भाव बता रहा था, परमल 8 रुपए किलो, कद्दू 4 रुपए, लौकी।
1: ओहो आप भी किस मौके पर कहाँ की बात ले बैठे, कहाँ गया है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड?
0: साहब अब की वो मुझे मिल गई तो मैं उससे कहूंगा प्रिय हम तुम इसी अवस्था में सदियों तक विचरण करते रहे।
1: बड़े बाबू मेरा हाथ छोड़िए।
0: ओह सॉरी सर।
1: और वो गाना?
0: साहब वही गाना मैं गुनगुनाता हुआ चला आ रहा था, लड़ी नजरिया लड़ी।
2: अरे उठो भी, क्या सोते हुए लड़ी नजरिया लड़ी गाते जा रहे हो? 4 लौंडों के बाप हो गए, नजरियों की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। अरे मैं कहती हूँ दुनिया में लड़ाइयों के खत्म होने के ऐलान हो रहे हैं, एक आप हैं, नजरियों की लड़ाई लड़े जा रहे हैं।
0: बात यह है मुन्ने की अम्मा, मैं सोते में एक बहुत प्यारा चटपटा सपना देख रहा था।
2: सोते में सपने तो देखोगे ही, जागते में तो मैं भूतनी बनी खड़ी रहती हूँ तुम्हारे आगे। जरा मैं भी तो सुनू किससे नजरिया लड़ा रहे हैं।
0: तुम तो जानती ही हो मैं भला किससे नजरिया लड़ा सकता हूँ।
2: हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारे चोंचले।
0: मेरा विश्वास करो भाग्यवान, मैंने किसी से नजरें नहीं लड़ाई।
2: तो फिर लड़ी नजरिया लड़ी?
0: वो तो सपने में जवानी की पुरानी यादें तरोताजा करने के लिए, कसम से।

लड़ी नजरिया लड़ी। अभी आप सुन रहे थे राजेश भदौरिया की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे गुरुमीत रामल मीत। ये थी आकाशवाणी शिमला की प्रस्तुति।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी

0: अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी
1: हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
0: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म हेट स्टोरी 4 से। इसे गाया है जुबिन नौटियाल और नीति मोहन ने। गीत मनोज मुंतशिर और संजय गुप्ता का है, संगीत आरको का।

अंतराल के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं बागी 2 फिल्म का गाना, अंकित तिवारी और श्रुति पाठक की आवाजों में। गीत कुमार का है, संगीत गौरव रोशन का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व, विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट आवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से

0: ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,00,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायतें, एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
3: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूव्र संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और

0: दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और आशा भोसले के गाए कस्मे वादे फिल्म के इस गाने से। गीत गुलशन बावरा ने लिखा है, संगीत आरडी बर्मन का है।

0: उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं काश फिल्म का गाना। किशोर कुमार और अनुपमा देशपांडे की आवाजों में, गीत फारूक कैसर का है, संगीत राजेश रोशन का।

0: भजन की बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल

अब सुनते हैं कुदरत का कानून फिल्म का गाना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

इस गाने के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की प्रीति शर्मा को दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

पीछे रहकर पूरी टीम का मार्गदर्शन करता है, कलाकारों के अभिनय को आकार देता है। निर्देशक की सोच, दृष्टि और सृजनात्मकता ही किसी भी फिल्म की आत्मा होती है। आज हम ऐसे ही प्रतिभाशाली निर्माता निर्देशक के जीवन कार्य और योगदान पर बातें करेंगे, जिन्होंने अपने अनोखे दृष्टिकोण और सृजनात्मकता से सिनेमा की दुनिया में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। साथियों, हिंदी सिनेमा में जहां एक ओर बड़े बजट की भव्य फिल्में दर्शकों को आकर्षित करती हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ निर्देशक अपनी सादगी भरी कहानियों और मानवीय भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत करके दर्शकों का दिल जीत लेते हैं।

से सिनेमा की दुनिया में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। साथियों, हिंदी सिनेमा में जहां एक ओर बड़े बजट की भव्य फिल्में दर्शकों को आकर्षित करती हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ निर्देशक अपनी सादगी भरी कहानियों और मानवीय भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत करके दर्शकों का दिल जीत लेते हैं।

0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के फनकार, वेरी टैलेंटेड निर्माता निर्देशक आनंद एल राय की, जिन्होंने साधारण मिडिल क्लास लोगों की कहानियों को रुपहले पर्दे पर नया नजरिया दिया है।
1: I am

0: अपना पहचान आंखों से उतार किया फोटो से व्यापार किया प्रेम बढ़ा दिए
1: साला गर्दा उड़ा दिया गर्दा उड़ा दिए बेटा गर्दा उड़ा दिया।

28 जून साल 1971, दिल्ली में जन्मे आनंद एल राय, इनका परिवार भारत पाक विभाजन के दौरान सीमा पर खिंची दीवार के बाद सिंध छोड़कर देहरादून चला आया और कुछ समय बाद आनंद राय के पिता ने दिल्ली में अपना आशियाना बना लिया। आनंद राय का पालन पोषण दिल्ली में हुआ। वहां से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर वे नौकरी करने लगे। साथियों, यूं तो आनंद की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ कमी सी महसूस होती रही। दरअसल उनका झुकाव तो रचनात्मक क्षेत्र की ओर था।

आनंद अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए। श्रोताओ, बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग का फील्ड छोड़कर फिल्मी दुनिया में करियर बनाया है। आनंद एल राय भी उनमें से एक हैं। मुंबई आकर आनंद राय ने अपने बड़े भाई रवि राय, जो कि उस समय टीवी धारावाहिकों का निर्देशन कर रहे थे, उन्हें असिस्ट करना शुरू कर दिया। पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने के बाद आनंद ने अपने निर्देशन की शुरुआत की। ये यूं कहिए कि आनंद ने बतौर निर्देशक अपना डेब्यू किया साल 2007 में साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म स्ट्रेंजर्स के साथ। यहाँ आपको बताते चलें कि फिल्म स्ट्रेंजर्स अल्फ्रेड हिचकॉक के स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन पर बेस्ड थी, लेकिन आनंद राय की ये डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह लुढ़क गई, जिसमें जिमी शेरगिल, के मेनन, नंदना सेन, सोनाली कुलकर्णी जैसे कलाकार थे।

साल 2008 में जैकी श्रॉफ और परमीत सेठी अभिनीत आनंद राय की अगली फिल्म आई थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं चला पाई और दर्शकों ने भी इस फिल्म को नकार दिया।

बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म देने वाले आनंद एल राय, इनके साथ अब कोई निर्माता काम करने को तैयार नहीं था। लगातार फेलियर होने पर आनंद राय ने हार तो नहीं मानी, लेकिन हाँ, 3 साल का ब्रेक जरूर ले लिया। इन 3 सालों के ब्रेक के बाद आनंद राय के करियर का टर्निंग पॉइंट आया साल 2011 में, जब उन्होंने तनु वेड्स मनु फिल्म के निर्देशन के साथ अपनी ग्रैंड वापसी की और हर किसी को अपने डायरेक्शन का दीवाना बना दिया।

आर माधवन और कंगना रनौत अभिनीत ये फिल्म आनंद राय की पहली कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में जबरदस्त कमाई की। दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत पसंद

आनंद राय बॉलीवुड के उन गिने चुने डायरेक्टर्स में से हैं जो रीमेक के दौर में नई और असल कहानियों पर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। वो खुद भी बड़े सिंपल अंदाज में जीवन जीते हैं। साथियों, उनका कहना है कि अगर वो साधारण जिंदगी नहीं जिएंगे तो अपने अंदाज में फिल्में नहीं बना पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं साल 2013 की। इस साल आनंद राय ने अपने निर्देशन में दूसरी कमर्शियली हिट फिल्म दी रांझणा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इस फिल्म के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के ऑपोजिट साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार धनुष ने बॉलीवुड में अपनी एंट्री की, जिन्हें दर्शकों ने तहे दिल से स्वीकार किया और इस फिल्म में अभिनेता धनुष के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा हुई।

0: कैसी है।
1: आपको बता दें कि फिल्म रांझणा दुनिया भर में करोड़ों की कमाई करने वाली साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाऊ हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म के लेखन और निर्देशन की बहुत सराहना हुई और फिल्म रांझणा ने फिल्म फेयर अवार्ड के लिए आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया।

संगीत सुनने के शौकीन बॉलीवुड प्रोड्यूसर डायरेक्टर आनंद एल राय हिंदी सिनेमा में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। साल 2015 में आपने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का निर्देशन किया, जो फिल्म तनु वेड्स मनु का सीक्वल था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। दर्शकों से इस फिल्म को भरपूर प्यार और सराहना मिली। ये फिल्म साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में करोड़ों में जबरदस्त कमाई की। खास बात ये रही साथियों कि अपनी रिलीज के समय भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये महिला प्रधान फिल्म थी। आनंद राय की इस तीसरी जबरदस्त सफल फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में अपना दूसरा नामांकन दिलाया।

आनंद एल राय को सफलता काफी उतार चढ़ाव के बाद मिली। भारतीय सिनेमा में कई निर्देशक हैं, लेकिन चर्चा में कुछ ही रहते हैं जिनमें आनंद एल राय का नाम भी शामिल है। तनु वेट्स मनु, रांझणा, तनु वेट्स मनु रिटर्न्स जैसी हिट फिल्म्स के निर्देशक आनंद एल राय बॉलीवुड के मशहूर निर्देशकों में से एक हैं।

आपने साल 2018 में शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ जैसे ए लिस्ट स्टार कास्ट के साथ फिल्म बनाई जीरो। और साथियों, आनंद राय की पिछली सफल फिल्मों के कारण रिलीज से पहले हाई प्रमोशन के बावजूद आनंद राय की ये फिल्म कुछ खास नहीं चल सकी।

श्रोताओं, आनंद राय न केवल निर्देशक हैं, बल्कि वो एक सफल निर्माता भी हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस कलर येलो प्रोडक्शंस के बैनर तले नील बटे सन्नाटा, हैप्पी भाग जाएगी, मन मर्जियां, तुम बाट, अतरंगी रे, रक्षाबंधन, शुभ मंगल सावधान जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया है। फिल्म अतरंगी रे की बात की जाए तो ये फिल्म साल 2021 में आई, जो एक रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी थी। आनंद राय निर्देशित इस फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म को कोविड के दौरान लॉकडाउन के कारण सिनेमाघरों में रिलीज किए बिना डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों की, आलोचकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया और समीक्षा मिली।

साल 2022 में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को लेकर आनंद एल राय ने फैमिली कॉमेडी फिल्म रक्षाबंधन निर्देशित की।

और अब साल 2025 में आने वाली फिल्म तेरे इश्क में, जो सीक्वल है फिल्म रांझणा का और जिसके निर्माण और निर्देशन का दारोमदार है आनंद एल राय पर, देखना ये होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाती है। तो हमें इंतजार है आनंद एल राय की आने वाली फिल्मों का। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता निर्देशक आनंद एल राय पर। शोध, आलेख और स्वर शेफाली कपूर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। पंचम के गानों का अपना एक संसार है, कुछ चुलबुले गाने, कुछ उदास जो आंसुओं की नमी से भीगे हैं, कुछ ऐसे गाने जिनमें जोश छलक छलक पड़ता है, कुछ ऐसे गाने जिनके कंधों पर सर रखकर आप अपने डूबे हुए दिल को सहारा दे सकते हैं। पंचम गानों के जादूगर थे। आज के छाया गीत में पंचम के कुछ ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आप पंचम को खूब मिस करेंगे, बेकरार होकर याद करेंगे और नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे ईश्वर का जिसने हमें दिया ऐसा विरला संगीतकार जिसके हैं ऐसे महकते नगमे।

यूं तो बीतते जाते हैं पल, कैलेंडर के पन्ने बदलते चले जाते हैं। जाने क्यों कुछ पल कभी बीतते नहीं, वो मन के आकाश पर ठहर जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं कुछ लम्हे। वो न कभी अतीत बनते हैं न कभी यादों में तब्दील होते हैं, वो लम्हे बस मन के कैनवस पर धड़कते चले जाते हैं।

आंखों में सपने भी होते हैं और आंसू भी। दुनिया भर के दुख, धोखे, तकलीफें, अफसोस जमा होते रहते हैं मन के किसी कोने में। समझ में नहीं आता कि कब कैसे ये सारा दुख घुलेगा। फिर किसी दिन बहता है जीवन का सारा दुख आंखों से। आंखों में सपने भी होते हैं और जीवन का ये खारापन आंखों में ही छिपा होता है।

होती चली जाती है। कभी कभी ये इंतजार खत्म ही नहीं होता। दिन बोझिल होते चले जाते हैं, शामें उदास हो जाती हैं और रातें एकदम सुनसान। जिसका है इंतजार, जब वो मिल जाए तो खिल उठता है दिल, चमक जाते हैं लम्हे और महक उठते हैं।

गानों का अपना नशा होता है। जरूरी नहीं है कि ये गाने हमें बार बार सुनाई ही पड़ें। कई गाने सुने बरसों हो जाते हैं, फिर अचानक किसी गाने की कोई लाइन कहीं सुनाई पड़ जाती है और अटक जाता है मन। गानों के साथ जाने कैसा रिश्ता होता है हमारा, जैसे कोई भूला हुआ ठिकाना, जैसे भूली बिसरी कोई खुशबू, जैसे कोई भूली

जब निकले अपने घर से तो एक अलग ही तरंग होती है मन की। घर से निकलते ही मन सारी उलझनों से बाहर निकल आता है, फिर हम गुनगुनाना शुरू करते हैं। सफर में हूँ तो अलग ही गाने जुबां पर आते हैं।

0: उसकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप रविवार से अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनएस कल्याण रामन द्वारा प्रस्तुत मृदंगम पर लाइव विन्यासम सुना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी विजयवाड़ा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है। अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: You have been listening to Laya Vinyasam on Mridangam by Sri N.S. Kalyanuraman in the Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. This program was recorded in the studios of Akashvani Vijayawada and this broadcast came to you from the studios of Akashvani Delhi.
2: मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट

0: करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 11 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी।